सुप्रभात। एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948, ज्येष्ठ मास की 13वीं तिथि, तदनुसार 3 जून ईस्वी सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58 हो रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति एक माह के भीतर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। बोर्ड ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज आज से 4 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कल नई दिल्ली में बताया कि उनके साथ उनके मंत्रिमंडल के प्रमुख मंत्री भी होंगे और वे इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगी।
1: विजिट ऑफ द एक्टिंग प्रेसिडेंट।
2: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। इन वार्ताओं में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की खोज पर भी चर्चा होगी।
1: ट्रांसपोर्टेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी।
0: भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह की भूमिका को खारिज कर दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने लंबित सीमा विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद है।
1: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी

0: द्विपक्षीय मामले हैं, उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
1: जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों के आपसी संपर्क और संबंधों को मजबूती मिलेगी। जम्मू कश्मीर में पंचायत और जिला विकास परिषद चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की दो दिवसीय उच्च स्तरीय बैठक आज से शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त शांतमनु करेंगे। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। यह आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत हो रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार आज अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इसका औपचारिक उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री के संबोधन के तुरंत बाद लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। प्रत्येक ब्लॉक नगर पालिका और कोलकाता नगर निगम क्षेत्र में चयनित 100 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। तीसरे और अंतिम महिला T20 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के टोंटन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड ने 18 ओवर और 3 गेंद में 4 विकेट पर 184 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश के तटवर्ती इलाकों गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, सिक्किम में भी वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय सुभद्रा रामचंद्रन। Acting President of Venezuela, Delcy Rodriguez, will be on a 4-day visit to India beginning today. She will be accompanied by a high-level delegation, including Ministers of Foreign Affairs, Economy and Finance, and Science and Technology. Briefing media in New Delhi, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said Ms. Rodriguez will hold bilateral discussions with Prime Minister Narendra Modi during her visit. The discussions will be focused on exploring avenues of cooperation in the areas of trade, investment, energy, renewable energy, healthcare, and pharmaceutical. External Affairs Ministry said that the Indian PSUs have made significant investment in Venezuela in the energy sector, and they are keen to explore opportunities for further enhancing their presence. It said that the visit is expected to further strengthen bilateral ties and deepen engagement between the two countries across diverse sectors. Senior Congress leader D.K. Shivakumar will be sworn in as the Chief Minister of Karnataka today. Governor Thavar Chand Gehlot will administer him the oath of office and secrecy at Lok Bhavan in Bengaluru at 4 p.m. Mr. Shivakumar's appointment comes days after Mr. Siddaramaiah stepped down as Chief Minister, paving the way for his deputy to take over the top post. The development marks the culmination of a prolonged power tussle within the Karnataka Congress, with Mr. Shivakumar long seen as a contender for the top post since the party's victory in the 2023 assembly polls. Meanwhile, Congress has appointed senior Karnataka leader Siddaramaiah to its highest decision-making body, the Congress Working Committee CWC. The appointment is being seen as a significant organizational decision by the party leadership as it seeks to ensure stability and coordination within its Karnataka unit during a key political transition. West Bengal government will launch a major social welfare initiative, Annapurna Yojana, today. Chief Minister Subhendu Adhikari will formally inaugurate the scheme. The launch will be a massive synchronized event spanning the entire state. While the Chief Minister leads the central inauguration, beneficiaries of the Annapurna Yojana will participate virtually across all blocks, municipalities and municipal corporations. To ensure local participation, MLAs have been invited to attend the localized events, and the Chief Minister's main program will be broadcast via video conferencing directly to all block and municipal headquarters. Bangladesh's Foreign Minister Khalilur Rahman has been elected President of the 81st session of the UN General Assembly, UNGA. Dr. Rahman emerged victorious in a closely contested election held in UN General Assembly, garnering 99 votes against Cyprus's Special Envoy for Multilateralism, Andrias Kokkoris, who got 91 votes. His one-year tenure as head of the Chief Deliberative Policymaking and Representative Organ of the United Nations will commence in September. In accordance with the established regional rotation, the president of the 81st session was to be elected from the Asia-Pacific group. UNGA President-elect Dr. Rahman said that he will uphold the world body's work on human rights and engage all member states during his tenure. External Affairs Minister S. Jaishankar has congratulated Dr. Rahman on his election as UNGA President. In a social media post, Dr. Jaishankar said that he is looking forward to working closely with Dr. Rahman to advance the shared priorities of India and Bangladesh and strengthen multilateral cooperation. Indian nationals will no longer require an airport transit visa when travelling to a third country through German airports beginning today. German Embassy in India announced that the exemption will simplify travel for Indian citizens transiting through Germany on their way to other international destinations. The embassy described the decision as a reflection of the growing partnership between the two countries. It said the move underlines the German government's commitment to deepening ties between the two countries, facilitating the movement of people. In women's cricket, England sailed to a 6-wicket win over India in the third and final T20 international to clinch the series 2-1 at the County Ground, Taunton in England last night. India felt confident after taking 3 early wickets, but a commanding partnership helped them with ease. And that is the end of this news bulletin.

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आइए सुनवाते हैं खेती की बातें। इस कार्यक्रम में श्रोताओं, आज आप जानकारी प्राप्त करेंगे खरीफ फसलों की बुआई से पहले खेत की तैयारी कैसे की जाए। इस विषय पर जानकारी दे रही हैं कृष्णा कावेरी।

खेती की बातें सुनने वाले आप सभी किसान भाई बहनों को मेरा प्यार भरा जोहार। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे खरीफ फसलों की बुआई से पहले खेती की तैयारी के विषय में। श्रोताओं, खरीफ फसलों की अच्छी पैदावार के लिए मानसून से पहले खेतों की उचित तैयारी बेहद जरूरी है। इसके तहत खेत की गहरी जुताई कर धूप दिखाना, खेत की मिट्टी में जैविक खाद मिलाना, खेत को समतल करना और जल निकासी का उचित प्रबंध करना आदि आवश्यक कार्य हैं। किसान भाइयों, खरीफ फसलों जैसे धान, मक्का, सोयाबीन आदि की बुआई के लिए चरणबद्ध तरीके से खेत इस प्रकार से तैयार करें। मानसून आने से पहले मिट्टी पलटने वाले हल से खेत की गहरी जुताई करें। ऐसा करने से गर्मी की तेज धूप से मिट्टी के अंदर

अंदर मौजूद हानिकारक कीट, फफूंद और खरपतवार के बीज नष्ट हो जाते हैं। किसान भाइयों, जुताई हमेशा ढलान की विपरीत दिशा में करें ताकि बारिश का पानी मिट्टी में गहराई तक समा सके। बुआई से 15 से 20 दिन पहले 4 से 5 टन सड़ी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट प्रति एकड़ के हिसाब से खेत की मिट्टी में अच्छे से मिला दें। किसान भाइयों, यदि धान या अन्य मुख्य फसल लगाना हो तो हरी खाद के लिए खेत में ढेंचा या मूंग की बुआई करें और 40 से 50 दिन बाद रोटावेटर की मदद से खेत की ही मिट्टी में अच्छे से मिला दें। श्रोताओं, ऐसा करने से मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता बढ़ती है। खाद मिलाने के बाद खेत में पाटा यानी समतल करने वाला यंत्र अवश्य चलाएं। एक समान और समतल खेत में पानी का भराव ठीक से होता है, खरपतवार कम उगते हैं और बीज का अंकुरण एक सार होता है। और यदि अधिक बारिश हो जाए तो खेत से अतिरिक्त पानी निकालने के लिए जल निकासी की भी उचित व्यवस्था अवश्य करें। किसान भाइयों, मेड़ों की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें ताकि कीटों और चूहों का प्रकोप कम हो। यदि आपने पिछले 2 से 3 सालों में मिट्टी की जांच नहीं करवाई है तो बुआई से पहले मिट्टी का परीक्षण जरूर करा लें। इससे खेत में मौजूद पोषक तत्वों जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और जिंक या सल्फर की मात्रा का सही से पता चलता है। किसान भाइयों, अब बात आती है बीजों का चयन और बीजोपचार की। तो हमेशा अपने क्षेत्र की जलवायु और मिट्टी के अनुकूल अधिक उपज देने वाली उन्नत किस्म के बीजों का ही चयन करें। बुआई से पहले बीजों को फफूंदनाशक कार्बेंडाजिम और कीटनाशक इमिडाक्लोप्रिड के घोल से अच्छे से उपचारित करें। इससे फसल में लगने वाले रोगों और दीमक आदि से सुरक्षा होती है। बीजों को बोने से पहले बीजों का अंकुरण परीक्षण कर लें ताकि बीज की दर का सही अनुमान लग सके। किसान भाई बहनों, इसके साथ ही खेती की बातें अब यहीं संपन्न होती है। अपनी रेडियो सखी कृष्णा कावेरी को दीजिए अनुमति। जोहार।

आज का चिंतन गौतम बुद्ध के अनुसार क्रोध में हजारों शब्दों को गलत बोलने से अच्छा मौन वह एक शब्द है जो जीवन में शांति लाता है।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय सुबह के 6:16 हो रहे हैं। अब आइए सुनवाते हैं कार्यक्रम वंदना। प्रथम प्रस्तुति है देशभक्ति गीत की।

बार सभा में बैठे हुए महाबली रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। राक्षसों की संख्या और जातियों को तो गिन ही कौन सकता था। सभी राक्षस माया जानते थे और मनमाना रूप बना सकते थे। वे देवताओं को अपना शत्रु मानते थे। रावण ने सोचा, चूंकि ऋषि मुनि तथा देवगण ऐसे शत्रु हैं जो सामने आकर युद्ध नहीं करते और शत्रु को देखते ही भाग खड़े होते हैं, अतः उन्हें मारने का एक ही उपाय है और वो है ब्राह्मण भोजन, जिससे उन्हें बल मिलता है, यज्ञ, हवन, तप, श्राद्ध आदि में बाधा डालना। उसने अपने बेटे मेघनाथ को आदेश दिया कि वो रण में धीर और बलवान सिद्ध देवताओं को युद्ध में जीतकर बांध लाए। वो स्वयं भी गदा लेकर निकल पड़ा, जिससे समस्त पृथ्वी डगमगाने लगी। सभी दिक्पाल अपना अपना स्थान छोड़कर भाग निकले। रण के मद में मतवाला रावण अपनी जोड़ी का योद्धा जगत भर में दौड़ता खोजता फिरा, किंतु उसे वैसा योद्धा कहीं नहीं मिला। वो सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल, यमराज जैसे अधिकारियों तथा किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, नाग आदि जीवधारियों के हठपूर्वक पीछे पड़ गया। सृष्टि में जहां तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी उसके अधीन हो गए। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याओं तथा अन्य सुंदरी स्त्रियों को जीतकर उनसे विवाह कर लिया। कहीं भी शुभ आचरण नहीं होने पाता था। यज्ञ, तप, ज्ञान आदि सभी के मार्ग बंद हो गए। राक्षसों का ऐसा अत्याचार फैला जिसका वर्णन कठिन है। इस प्रकार धर्म के प्रति अतिशय ग्लानि और अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत और व्याकुल हो गई।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज आज से 4 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। यात्रा के दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। दोनों पक्ष व्यापार, निवेश, ऊर्जा, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों ने वेनेजुएला के ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण निवेश किया है। इस यात्रा से भारत और वेनेजुएला के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। ये आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत किया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विवाहित बेटियों को अनुकंपा नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि परिवार की परिभाषा से विवाहित बेटियों को बाहर रखना स्पष्ट रूप से अनुचित और संवैधानिक रूप से गलत है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द करते हुए ये टिप्पणी की। पश्चिम बंगाल सरकार आज अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इसका औपचारिक उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री के संबोधन के तुरंत बाद लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। प्रत्येक ब्लॉक, नगरपालिका और कोलकाता नगर निगम क्षेत्र में चयनित 100 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र दिए जाएंगे। जम्मू कश्मीर में पंचायत और जिला विकास परिषद चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की 2 दिवसीय उच्च स्तरीय बैठक आज से शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त शांतमनु करेंगे। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने असम के मूगा रेशम के लिए मिशन स्नेहजोरी का शुभारंभ किया। ये पहल असम के विशिष्ट मूगा रेशम उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। सूरत के बारडोली कस्बे के पास कल महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन की 2 बसों की टक्कर में 8 लोगों की मौत और 15 से अधिक लोग घायल हो गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। साथ ही प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजन को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि दे

ने की घोषणा की गई है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्हें 99 वोट मिले। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देश कल 2027-28 कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्यों का भी चुनाव करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने अध्यक्ष निर्वाचित होने पर डॉ खलीलुर रहमान को बधाई दी है। डॉ जयशंकर ने कहा कि वे भारत और बांग्लादेश की साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने तथा बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए डॉ रहमान के साथ मिलकर काम करने के इच्छुक हैं। जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों के आपसी संपर्क और संबंधों को मजबूती मिलेगी। इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच इस वर्ष जनवरी में भारत यात्रा के दौरान घोषणा की गई थी। तीसरे और अंतिम महिला 2020 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा है। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के टॉन्टन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड ने 18 ओवर 3 गेंदों में 4 विकेट पर 184 रन बनाकर मैच जीत लिया। एलिस कैप्सी प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई, साथ ही प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब भी उन्हीं को मिला। मौसम विभाग ने तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उपहिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। अब आइए आपको जानकारी दे दें आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। अब से थोड़ी देर बाद यानी 7:10 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत। 7:20 का हमारा समय होगा लोक गीतों का और 7:35 पर श्रोताओं आप सुनते हैं कार्यक्रम सुरांजलि। 7:50 का समय होता है स्वास्थ्य चर्चा का। सुबह 8:00 हिंदी में समाचार, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज़ आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किए जाएंगे। 8:30 का समय होगा प्रादेशिक समाचार का, जो कि रिले किया जाता है आकाशवाणी के रांची केंद्र से। 8:45 पर आप आनंद लेते हैं फिल्म संगीत का। सुबह 9:00 हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया जाएगा। 9:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरंजना में एक ही फिल्म से गाने। 9:30 पर शास्त्रीय संगीत का प्रसारण होगा। सुबह 10:00 हिंदी में समाचार, 10:05 पर अंग्रेजी में समाचार और 10:10 पर विश्व दर्पण आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया जाएगा। 10:20 का हमारा समय होता है फिल्म संगीत का। सुबह 11:00 और दोपहर 12:00 श्रोता सुनते हैं हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से। 11:05 का समय होता है कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर का और दोपहर 12:05 पर आप सुनते हैं भावगीत। 12:30 पर शास्त्रीय संगीत प्रसारित किया जाता है। दोपहर के 1:00 हिंदी में समाचार, 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार और 1:10 पर प्रादेशिक समाचार का प्रसारण होगा। 1:20 और दोपहर 2:30 पर श्रोता सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। दोपहर के 2:00 मिड डे न्यूज़, 2:15 पर दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया जाएगा। 2:55 पर आप सुनते हैं प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रांची से। अपराह्न के 3:00 NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का प्रसारण होगा और अपराह्न 3:30 पर आप सुन सकते हैं सुगम संगीत। 3:45 पर श्रोताओं लोक गीतों का कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। संध्या 4:00 एवं 5:00 समाचार मुख्यांश आकाश

वाणी के राज्य केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। 4:02 पर आज के दिन आप सुनते हैं नाटक और 4:30 पर हम हाजिर होते हैं फिल्म संगीत लेकर। संध्या 5:02 का समय होता है युवा साथियों का, आप सुनते हैं कार्यक्रम युवाणी। 5:30 का समय होता है कल कारखाने का और संध्या 6:00 हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया जाता है। यहीं से आप सुनते हैं 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार और 6:20 पर संस्कृत में समाचार। 6:10 का समय होता है हमारा झारखंड के लोकगीत का। 6:30 पर श्रोताओं आज के दिन आप सुनते हैं कार्यक्रम घर गृहस्थी। संध्या 7:00 प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रांची से प्रसारित किया जाएगा और यहीं से आप सुनेंगे 7:10 पर जिले में आजकल। 7:15 का हमारा समय होता है बांग्ला कार्यक्रम का। 7:45 पर आज के दिन आप सुनते हैं कार्यक्रम जिज्ञासा। रात्रि 8:00 फिल्म संगीत का प्रसारण होगा। 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या आकाशवाणी दिल्ली से। यहीं से आप सुन सकते हैं रात्रि 9:00 न्यूज़ एट नाइट और 9:15 पर स्पॉटलाइट। रात्रि 10:00 कार्यक्रम स्वर्ण रेखा की प्रस्तुति होगी। 10:30 पर आप आनंद ले सकते हैं शास्त्रीय संगीत का। रात्रि 11:00 हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किए जाएंगे और हमारी आज की सभा संपन्न होगी रात्रि 11:10 पर।

श्रोताओं, अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 MHz पर।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र और सुन रहे हैं लोक गीतों का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं प्रेमलता तिवारी और साथियों का गाया मैथिली गीत।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: श्रोताओं, लोकगीतों के कार्यक्रम में आपने सुना मैथिली गीत प्रेमलता तिवारी और साथियों से।
1: मन की बात प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
2: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
1: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें। मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
2: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय 7:35 हो रहे हैं। अब आइए सुनवाते हैं कार्यक्रम सूरांजलि। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे आधुनिक गान नचिकेता चक्रवर्ती सिंह।

अभी आप सुन रहे थे आधुनिक गान नचिकेता चक्रवर्ती से, और इसी गान के साथ हमारा आज का कार्यक्रम सुरांजलि अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM के 102.4 MHz पर।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। अब आइए सुनवाते हैं स्वास्थ्य चर्चा। स्वास्थ्य चर्चा के आज के इस अंक में श्रोताओं, आप सुनेंगे भेंटवार्ता, हृदय रोग एक जानकारी। भेंटवार्ताकार हैं डॉक्टर संजय लाल श्रीवास्तव, जिनसे बातें कर रहे हैं राजेश कुमार।

0: श्रोताओं, स्वास्थ्य चर्चा के अंतर्गत आज हम बातें करेंगे हृदय रोग के बारे में। हृदय रोग यानी कि दिल की बीमारी, ये बीमारी है क्या, किस तरह के लक्षण उभर कर आते हैं, इनसे जुड़ी और तमाम बातें करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर संजय लाल श्रीवास्तव। डॉक्टर साहब, हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: जी धन्यवाद।
0: डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को आप ये जानकारी दीजिए कि हृदय रोग हम कहते किसे हैं।
1: हृदय रोग एक जो है विशाल रूप है। सिर्फ हृदय रोग बोलने मतलब कभी कभी उसको हार्ट का प्रॉब्लम, वाल्व का प्रॉब्लम हो सकता है, या किसी आर्टरी का प्रॉब्लम हो सकता है, या उस मसल का प्रॉब्लम हो सकता है। हम लोग जो मीन करते हैं हृदय रोग के बारे में, वो हम बात करते हैं जो हार्ट ब्लॉक के बारे में, हार्ट अटैक वाले जो चेस्ट पेन जो होता है, छाती में जो दर्द होता है, मेन हम लोग उसकी बात चर्चा करते हैं।
0: आज के समय में दिन प्रतिदिन हृदय रोगियों की संख्या बढ़ते जा रही है, भारत में क्या स्थिति है हृदय रोग से संबंधित?
1: भारत में ये विशाल चिंता के विषय है। कारण है नहीं भी तो मोर देन करीब नहीं तो 40 लाख से ज्यादा पेशेंट जो है हृदय रोग से है भारत में। दुनिया में सबसे ज्यादा हार्ट अटैक भारत में होता है, और हमारे यहाँ डेथ जो मृत्यु भी हार्ट अटैक से मृत्यु की संख्या भी 2 से 3 गुना ज्यादा है वेस्टर्न कंट्री से।
0: जी,
1: डाटा है एवरी 33 सेकंड में 33 सेकंड में एक डेथ हो रहा है
0: हृदय रोग के कारण,
1: हृदय रोग के कारण भारत में।
0: तो लोगों को ये कैसे पता चले कि वह हृदय रोग के शिकार हैं, किस तरह के लक्षण उभर कर आते हैं?
1: सबसे पहले तो हम लोग देखे जो हृदय रोग इन लोगों में हो सकता है, रिस्क फैक्टर्स जिसको बोलते हैं ना, खासकर जो लोग को डायबिटीज है, शुगर की बीमारी है,
0: अच्छा उनमें होने की संभावना
1: ज्यादा है। नंबर 2 ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, जिन लोगों में हाई ब्लड प्रेशर है उन लोगों में हार्ट का बीमारी होने के चांस ज्यादा है। तीसरा बोलते हैं जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल वगैरह ज्यादा है तो उन लोगों में हार्ट की बीमारी ज्यादा है। जो लोग बहुत ओबीज हैं, मोटे हैं, उन लोगों में हार्ट की डिजीज का संभावना ज्यादा है। या फिर जो लोग स्मोकिंग करते हैं, धूम्रपान करते हैं, धूम्रपान सिर्फ स्मोकिंग ही नहीं, तंबाकू चबाते हैं या किसी भी रूप में अगर धूम करते हैं, उन लोगों में इंसिडेंस ज्यादा है। जो लाइफ स्टाइल जो है आजकल बैठे बैठे, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल जिसको बोलते हैं, बैठे बैठे हैं, चलना फिरना वॉकिंग,
0: फिजिकल
1: वर्क कम हो रहा है, उन लोगों में ये इंसिडेंस बहुत ही ज्यादा है।
0: तो कैसे लोग पहचाने वो हृदय रोग के शिकार हो रहे हैं?
1: जो सबसे कॉमन जो सिम्टम है इसका, छाती में दर्द होना, खासकर चलने फिरने से या ऊंचाई पर चढ़ने से,
0: अच्छा,
1: ये दर्द बढ़ता है, और रुकने से अगर ठीक हो जाए तो ये एक लक्षण है हार्ट में ब्लॉकेज होने का। दूसरा है बहुत लोगों को दर्द भी नहीं होता, 20-25% लोगों में बिना दर्द के भी हार्ट अटैक हो सकता है, खासकर जो लोग डायबिटीज है या बहुत ओबीज है या किडनी का प्रॉब्लम है, तो इन लोगों में जिसको बोलते हैं पेनलेस हार्ट अटैक बोलते हैं, बिना दर्द

0: के हार्ट अटैक हो गया हा? तो इन लोगों को सावधान रहना है। इन लोगों क्या होता है, दर्द नहीं होगा, सांस का तकलीफ होगा।
1: अच्छा।
0: अचानक सांस फूलने लग गया, पसीना होने लग गया, चक्कर आ गया, चक्कर आके गिर गए, इस तरह का सिम्टम उन लोगों में हो सकता है। यूजुअली आप देखिएगा 40-45 का एवरेज एज में ही हार्ट का प्रॉब्लम शुरू हो जा रहा है। इसका कारण ये भी हो सकता है कि हमारा जो लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है ना, हमारा जो लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो जा रहा है, खाने पीने का जो हेल्दी डाइट नहीं ले रहे हैं, ज्यादा जंक फूड ले रहे हैं, और अपना जो वेट कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, ओबीज हैं, और गलत आदत लाइक जो स्मोकिंग जैसे बोला, शराब पीना हुआ।
1: तो हृदय रोगियों को आप एक डॉक्टर होने के नाते क्या सलाह देना चाहेंगे?
0: हमारा सलाह यही रहेगा कि आप एक एज के बाद, 40 इयर्स के बाद एक रेगुलर चेकअप में रहे, खासकर अगर आपके फैमिली हिस्ट्री है, अगर फैमिली में किसी को है हार्ट का प्रॉब्लम, तो अगर माता पिता है, भाई बहन में है, तो आपको भी होने का चांस है। तो आप जागरूक रहिए, आप अपना जो चेकअप है निकटतम डॉक्टर के पास जाकर एटलीस्ट आफ्टर 40 साल के बाद अपना रेगुलर चेकअप कराइए, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाइए, उसके बाद अगर स्मोकिंग करते हैं या शराब पीते हैं तो उसको बंद करना है।
1: तो श्रोताओं, आपने सुना है कि हृदय रोग एक गंभीर बीमारी तो है, लेकिन अगर हम चाहें तो अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव लाकर इससे बच सकते हैं। डॉक्टर श्रीवास्तव ने जो जानकारी दी, उम्मीद है आप उस पर सोचेंगे और उस पर अमल करेंगे। डॉक्टर साहब, आपने काफी उपयोगी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

अभी आप सुन रहे थे भेंटवार्ता, हृदय रोग एक जानकारी विषय पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर संजय लाल श्रीवास्तव, जिनसे बातें कर रहे थे राजेश कुमार। श्रोताओं, इसी के साथ हमारा आज का स्वास्थ्य चर्चा का ये अंक अब यहीं संपन्न होता है।

0: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
1: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।

0: सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश, हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0657-296-0445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: मन की बात, प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
3: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी, संसद मार्ग, नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज़।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर
1: बिजली बिल जीरो करने का भी है?
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डी के शिव कुमार आज दोपहर कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल में आज से शुरू होगी अन्नपूर्णा योजना, पात्र महिलाओं को हर महीने मिलेगी 3,000 रुपए की सहायता। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी बधाई। जर्मनी ने हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त की। भारत ने कहा इससे दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ेगा। और महिला क्रिकेट में मेजबान इंग्लैंड ने तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत को 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 2-1 से अपने नाम की। अब समाचार विस्तार से। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। एक रिपोर्ट।
4: भारत और वेनेजुएला के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, विशेषकर ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा कई क्षेत्रों में सहयोग और गहरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के दौरान दोनों पक्ष आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश, दवाएं, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, दवा और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी सुविधाओं का करेगा। इस यात्रा का उद्देश्य सहयोग के अवसर को तलाशना और भारत की तकनीकी तथा औद्योगिक क्षमताओं के बारे में जानकारी हासिल करना है। दीपेंद्र और ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
3: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डी के शिव कुमार आज कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। 8 बार के विधायक डी के शिव कुमार बेंगलुरु के लोक भवन स्थित ग्लास हाउस में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ कुछ कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेंगे। 28 मई को सिद्धरमैया के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस विधायक दल ने 64 वर्षीय डी के शिव कुमार को अपना नेता चुना था। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला सहित कई प्रमुख नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल सरकार आज एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याणकारी पहल अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इस योजना का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: पहले चरण

0: में लाभार्थियों को बैंक खाते में आज से ही 3,000 रुपए भेजना शुरू होगा। इस योजना से लगभग 2 करोड़ महिला उपभोक्ताओं को लाभ मिलने की संभावनाएं है। नवन्न में दोपहर 12:30 बजे उद्घाटन समारोह में महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की मंत्री अग्निमित्रा पल उपस्थित रहेंगी। साथ ही राज्य की सभी ब्लॉक नगर पालिकाएं और कलकत्ता नगर निगम क्षेत्र में वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित होगा। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के प्रत्येक ब्लॉक और नगर पालिका से जुड़ा रहेगा। पूरे कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए जिला अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। उद्घाटन के बाद प्रत्येक ब्लॉक और नगर पालिका क्षेत्र में चुने गए 100 अन्नपूर्णा योजना लाभार्थियों को अनुमोदन पत्र प्रदान किया जाएगा। काशफिन नाहर, आकाशवाणी संवाद, कोलकाता।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत देश में पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल शुरू की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज चर्चा मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की।
2: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं GST ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाया है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत स्वीकृत 1,25,00,000 घरों में से 98,00,000 से अधिक घर बनकर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अभिषेक कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि इस योजना के जरिए गरीबों को अपना घर मिल रहा है और किराए के मकान से मुक्ति मिल रही है।
3: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित हो गया। स्कीम बहुत ही बढ़िया है जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं, सबको सहूलियत हो रही है।
2: वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही है जो बाजार से 50-80% सस्ती दरों पर उपलब्ध है। बिहार के रहने वाले ब्रह्मदेव ने बताया कि इन केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिलती है।
4: दवाई ले रहा हूँ, सस्ती दवाई मिलती है, डॉक्टर का विश्वास है कि जन औषधि से दवाई।
2: वहीं 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक लाभार्थियों को 40,00,000 रुपए के ऋण दिए जा चुके हैं। भारत के मध्यम वर्ग के लोगों की आय बढ़ने और नए अवसर मिलने के कारण अब वे देश की आर्थिक प्रगति, विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। सम्मेलन में 26 राज्यों और 4 केंद्रीय शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। ये आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत हो रहा है। राष्ट्रपति बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान के नैनो विज्ञान और इंजीनियरिंग केंद्र में प्रशिक्षण केंद्र का वर्चुअल रूप से उद्घाटन करेंगी। वे देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में स्थापित 75 अंतरिक्ष प्रयोगशालाओं का भी उद्घाटन करेंगी। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की पहली प्रत्यक्ष तकनीकी बैठक आज ओडिशा के पुरी में शुरू होगी। 3 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य और साझेदार देशों के प्रतिनिधि, नीति निर्माता और आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ भाग लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विवाहित बेटियों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि परिवार की

0: भाषा से विवाहित बेटियों को बाहर रखना स्पष्ट रूप से अनुचित और संवैधानिक रूप से गलत है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द करते हुए ये टिप्पणी की। जम्मू कश्मीर में पंचायत और जिला विकास परिषद चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य चुनाव आयोग की 2 दिन की उच्च स्तरीय बैठक आज से शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता राज्य चुनाव आयुक्त शांत मनु करेंगे। सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक WPI को धीरे धीरे समाप्त करने और उसकी जगह एक व्यापक उत्पादक मूल्य सूचकांक PPI प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। ये निर्णय देश की मुद्रास्फीति और मूल्य निर्धारण डेटा संरचना को आधुनिक बनाने और इसे वैश्विक सर्वोत्तम पद्धतियों के अनुरूप बनाने के लिए लिया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि WPI के आधार वर्ष को 2011-12 से संशोधित करके 2022-23 करने की मंजूरी दी गई है। संशोधित थोक मूल्य सूचकांक और नया उत्पादक मूल्य सूचकांक 15 जून को जारी किया जाएगा। सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि नामांकन केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्हें 99 वोट मिले। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देश कल 2027-28 कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्यों का भी चुनाव करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने डॉ खलीलुर रहमान को अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बधाई दी है। डॉ जयशंकर ने कहा है कि वे भारत और बांग्लादेश की साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने और बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए डॉ रहमान के साथ मिलकर काम करने के इच्छुक हैं। जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों के आपसी संपर्क बढ़ेंगे और संबंधों को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच इस वर्ष जनवरी में भारत यात्रा के दौरान इसकी घोषणा की गई थी। और बात खेलों की, तीसरे और अंतिम महिला 2020 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के टॉन्टन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड ने 18 ओवर 3 गेंदों में 4 विकेट पर 184 रन बनाकर मैच जीत लिया। एलिस कैप्सी प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई, साथ ही प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब भी उन्हीं को मिला। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में गरज चमक के साथ आंधी चलने की चेतावनी जारी की है। विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों तक केरलम और माहे में अत्यधिक वर्षा का अनुमान भी व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद विशाल। CBSE के ऑन स्क्रीन मार्किंग विवाद के बीच केंद्र सरकार की बड़ी कार्रवाई आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। अमर उजाला की सुर्खी है, CBSE चेयरमैन और सचिव हटाए गए, OSM टेंडर की जांच के लिए समिति गठित, 1 महीने में देगी रिपोर्ट। वहीं जनसत्ता ने लिखा है, पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर साइबर हमला, CBSE ने कहा सेवाओं को बाधित करने का प्रयास। नेपाल से सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की भूमिका का सवाल ही नहीं, विदेश मंत्रालय का ये बयान दैनिक जागरण में है। विवाद सुलझाने में चीन और ब्रिटेन को शामिल करने की नेपाल की मांग, भारत ने की खारिज। शिक्षा की शक्ति से आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करें युवा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये आह्वान वीर अर्जुन में है। एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने कहा, जब युवा शिक्षा और प्रौद्योगिकी की शक्ति के बल पर आगे बढ़ेंगे तो एक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस में टूट की आशंका को भी अखबारों ने प्रमुखता दी है। पंजाब केसरी ने लिखा है, तृणमूल के 50 विधायकों का बगावती रुख, विधानसभा अध्यक्ष को सौंप सकते हैं प्रस्ताव। इस खबर पर राजस्थान पत्रिका ने संपादकीय में लिखा है, राजनीतिक दलों से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं को आज आत्ममंथन की जरूरत है। सत्ता जाते ही उन्हें ना विचारधारा की चिंता रहती है और ना ही अनुशासन की। बीते 15 वर्ष में पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज रही तृणमूल कांग्रेस में अब जो कुछ हो रहा है वो खुली बगावत की तरह है। दुश्मन की वायु रक्षा को तबाह करेगी रुद्रम 2 मिसाइल। अमर उजाला के अनुसार रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और वायुसेना ने हवा से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार आज दोपहर बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल में आज से शुरू होगी अन्नपूर्णा योजना। पात्र महिलाओं को हर महीने मिलेगी 3,000 रुपए की सहायता। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी बधाई। और जर्मनी ने हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त की। भारत ने कहा, इससे दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ेगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। Venezuela's acting President Delcy Rodriguez to be on a 5-day visit to India beginning today. Senior Congress leader DK Shivkumar to be sworn in as Chief Minister of Karnataka this afternoon. West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari to launch Annapurna Yojana to provide 3,000 rupees every month to eligible women in the state today. Bangladesh Foreign Minister Khalilur Rahman, elected President of 81st Session of UN General Assembly, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar congratulates him. Germany removes airport transit visa requirement for Indian nationals beginning today. New Delhi says the move will further enhance people-to-people ties between India and Germany. And in women's cricket, hosts England beat India by 6 wickets in third and final T20 international to seal 3-match series 2-1. And now the news in detail. Acting President of Venezuela Delcy Rodriguez will be on a 5-day visit to India beginning today. She will be accompanied by a high-level delegation including Ministers of Foreign Affairs, Economy and Finance and Science and Technology. Briefing media in New Delhi, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said Ms. Rodriguez will hold bilateral discussions with Prime Minister Narendra Modi during her visit.
3: The discussions will involve full spectrum of India-Venezuela relations and explore avenues for further cooperation in the areas of energy, trade, investment, pharmaceuticals, healthcare, transportation and renewable energy. India is an important partner of Venezuela in the areas of energy and investment. Indian public sector undertakings have made significant investment in Venezuela in the energy sector and they are keen to explore more opportunities to further enhance their presence.
2: Our correspondent has filed this report.
4: India and Venezuela share friendly relations, particularly in the areas of energy and trade. The visit is expected to strengthen bilateral ties and deepen cooperation between the two countries across several sectors. The Venezuelan delegation will visit facilities related to the energy, pharmaceutical and automobile sectors. The visit aims to explore opportunities for collaboration and gain insights into India's technological and industrial capabilities. With Ishani and Dipendra, Tripti Srivastava, Akashwani News, Delhi.
2: Senior Congress leader DK Shivkumar will be sworn in as Chief Minister of Karnataka today. Governor Thawar Chand Gehlot will administer the oath of office and secrecy to Mr. Shivkumar and members of new cabinet at Lok Bhavan in Bengaluru at 4:05 p.m. More from our correspondent.
5: After Siddaramaiah stepped down as CM on May 28, the Congress Legislature Party had elected 64-year-old D.K. Shivakumar as its leader, paving the way for him to assume the office today. Congress leader Rahul Gandhi, National President Mallikarjun Kharge, Congress General Secretaries K.C. Venugopal and Randeep Singh Surjewala, and some Congress chief ministers, religious leaders, laborers, writers, actors, and prominent businessmen and industrialists have been invited for the swearing-in ceremony. The students of Doddalahalli Government School

नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 समारोह में पाकुड़ के झकरहाटी पूर्वी पंचायत को महिला हितैषी पंचायत के रूप में उत्कृष्ट कार्य के लिए किया जाएगा सम्मानित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा। जन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने और नए दाल भात केंद्र खोलने का दिया निर्देश। राजस्थान पुलिस ने अंतर्राज्यीय नकली नोट गिरोह का किया खुलासा। गढ़वा के युवक को दिल्ली से किया गिरफ्तार। राजधानी रांची सहित राज्यभर में अगले एक सप्ताह तक बदला रहेगा मौसम का मिजाज। और 15वीं झारखंड सीनियर स्विमिंग चैंपियनशिप में JSSPS के तैराकों का शानदार प्रदर्शन। प्रथमी सिंह सरदार ने जीते 5 पदक। और अब समाचार विस्तार से। पाकुड़ के झकरहाटी पूर्वी पंचायत को महिला हितैषी पंचायत के रूप में उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय की ओर से आज नई दिल्ली में आयोजित समारोह में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह देशभर की चयनित पंचायतों को ये पुरस्कार प्रदान करेंगे। इस वर्ष देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 42 पंचायतों का चयन किया गया है। झारखंड की झकरहाटी पूर्वी पंचायत का चयन महिलाओं के सशक्तिकरण और महिला हितैषी पल के लिए किया गया है। पंचायत को सम्मान के साथ 75 लाख रुपए की पुरस्कार राशि भी प्रदान की जाएगी। ये उपलब्धि राज्य की पंचायतों के लिए गौरव का विषय मानी जा रही है। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और परियोजनाओं को मजबूत बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन का उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। यह आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत हो रहा है। राष्ट्रपति बंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान के नैनो विज्ञान और इंजीनियरिंग केंद्र में प्रशिक्षण केंद्र का वर्चुअल रूप से उद्घाटन करेंगी। वे देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में स्थापित 75 अंतरिक्ष प्रयोगशालाओं का भी उद्घाटन करेंगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति और कार्य योजनाओं की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी व्यवस्था को और मजबूत बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने शहरी क्षेत्रों में श्रमिकों की सुविधा के लिए नए दाल भात केंद्र खोलने तथा मॉडल दाल भात केंद्र विकसित करने पर विशेष जोर दिया। बैठक में राशन कार्ड वितरण, खाद्यान्न आपूर्ति, PVTG, डाकिया योजना, धान अधिप्राप्ति और खाद्यान्न भंडारण के लिए गोदामों की स्थिति की भी विस्तृत समीक्षा की गई। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने रांची स्थित रिम्स का दौरा किया। रिम्स की वर्तमान स्थिति पर उन्होंने चिंता जाहिर की। उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों के हड़ताल

0: पर जाने को लेकर भी सवाल खड़े किए। साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से रिम्स का दौरा करने की अपील की।
1: कहीं देख ही रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ यहाँ पर खामियां का उजागर होते ही रहता है, तो इसको सुधार की जरूरत है। इसलिए इसको मुख्यमंत्री जी को कभी कभी समय मिलता है तो रिम्स है उसका व्यवस्था को देखने के लिए आना चाहिए। आज लोग हड़ताल में है, अगर स्वास्थ्य जैसे विभाग हड़ताल में चले जाएंगे तो मरीज को कौन देखेगा।
0: रांची नगर निगम ने मॉनसून से पहले शहर में अतिक्रमण, अवैध जल कनेक्शन, पार्किंग व्यवस्था और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर अभियान तेज कर दिया है। इसी क्रम में नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने हिंदपीढ़ी क्षेत्र में हरमू नदी का निरीक्षण किया। इस दौरान नगर आयुक्त ने अधिकारियों को पोकलेन और जेसीबी मशीनों की मदद से गाद निकालने का कार्य तेज करने तथा नदी की जल धारण क्षमता बढ़ाने के निर्देश दिए।
2: जो नदी के किनारे है अलग अलग तरीकों से उसका अतिक्रमण हुआ है, चाहे वो डायरेक्टली अगर कहें तो कंस्ट्रक्शन दिखता है, बट उस पर जो गंदगी फेंकने के अलग अलग तरीकों से लोग अपना फेंक रहे हैं और वो जो अवैध कंस्ट्रक्शन के माध्यम से हो रहा है, हर एक चीज वो भी एक तरह का अतिक्रमण है या एक तरह का वो नदी का जो है डिस्टर्बेंस का एक आयाम है।
0: IIM रांची में आज से दो दिवसीय टीचिंग विद केसेस सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। सेमिनार में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर विलिस एम एमंस शिक्षकों को केस आधारित शिक्षण पद्धति का प्रशिक्षण देंगे। इस सेमिनार का उद्देश्य प्रबंधन शिक्षा में केस आधारित और प्रतिभागी केंद्रित शिक्षण पद्धति को सशक्त बनाना है। कार्यक्रम के माध्यम से कक्षाओं में संवाद, चर्चा और व्यावहारिक सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाएगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सरायकेला नगर पंचायत के वार्ड संख्या 9 की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की लाभुक सेवती साहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया है। सेवती साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाली महत्वपूर्ण योजना साबित हुई है।
3: सेवती साहू हूँ, मैं वार्ड नंबर 9 तेली साय सारिकला की निवासी हूँ। मुझे उज्ज्वला गैस मिला है जिससे मैं नरेंद्र मोदी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे प्रधानमंत्री जो हमें धुएं से राहत दिला के आज उज्ज्वला गैस का उपयोग कर रहे हैं।
0: राजस्थान के दौसा जिले की पुलिस ने नकली नोट छापने और उनकी सप्लाई करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में पुलिस ने फरीदाबाद से गढ़वा जिले की खरौंदी निवासी विशाल उपाध्याय और अलीगढ़ निवासी संतोष सिंह वाल्मीकि को गिरफ्तार किया है। छापेमारी के दौरान उनके ठिकानों से प्रिंटिंग मशीनों के साथ 24,84,000 रूपये के नकली नोट बरामद किए गए हैं। राजधानी रांची की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए पुलिस अधीक्षक यातायात ने अल्बर्ट एक्का चौक से सुजाता चौक तक के दुकानदारों के साथ बैठक कर अवैध पार्किंग, अतिक्रमण और सड़क किनारे दुकान लगाने के मुद्दों पर चर्चा की। ट्रैफिक SP राकेश सिंह ने स्पष्ट किया कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
4: ये मार्केट और ये मेन रोड के जितने भी दुकान के दुकानदार हैं और जो फुटपाथ पे अपनी दुकान लगाते हैं उन सभी के साथ मीटिंग किया और सभी को समझाया गया है कि जो सड़क पे अपना सामान वो सड़क पे फैला के रख देते हैं और वहाँ उसकी वजह से जो जाम की समस्या होने लगती है, कि समझाया गया है कि अपना घर समझ के इसको व्यवस्थित करें।
0: मौसम, मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले एक सप्ताह तक मौसम में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। राजधानी रांची सहित कई क्षेत्रों में बारिश और ओलावृष्टि दर्ज की गई है, जबकि कुछ हिस्सों में गर्मी का असर बना हुआ है। 4 और 5 जून को राज्य के उत्तरी, पूर्वी और मध्य भागों में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। जमशेदपुर के जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित 15वीं झारखंड सीनियर स्विमिंग चैंपियनशिप 2026 में झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी JSSPS के तैराकों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। प्रतियोगिता में प्रथमी सिंह सरदार ने 1 स्वर्ण और 4 रजत पदक सहित कुल 5 पदक जीते। वहीं लखिंदर सिंह मुंडा ने 200 मीटर इंडिविजुअल मेडले स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने CBSE के चेयरमैन और सचिव के हटाए जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर और दैनिक भास्कर ने लिखा है, रांची के सार्थक ने बताई OSM की 15 कमियां, चेयरमैन और सचिव हटाए गए। हिंदुस्तान की सुर्खी है, XLRI निजी प्रबंधन संस्थान देश में दूसरे स्थान पर। दैनिक जागरण की सुर्खी है, लचर एम्बुलेंस सेवा की शिकायतों पर CM नाराज। और अब अंत में मुख्य समाचार। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 समारोह में पाकुड़ के झिकरहाटी पूर्वी पंचायत को महिला हितैषी पंचायत के रूप में उत्कृष्ट कार्य के लिए किया जाएगा सम्मानित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा। जन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने और नए दाल भात केंद्र खोलने का दिया निर्देश। राजस्थान पुलिस ने अंतर्राज्य नकली नोट गिरोह का किया खुलासा। गढ़वा के युवक को दिल्ली से किया गिरफ्तार। राजधानी रांची सहित राज्यभर में अगले एक सप्ताह तक बदला रहेगा मौसम का मिजाज। और 15वीं झारखंड सीनियर स्विमिंग चैंपियनशिप में JSSPS के तैराकों का शानदार प्रदर्शन। प्रथमी सिंह सरदार ने जीते 5 पदक। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित प्रादेशिक समाचार। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 MHz पर। थोड़ी ही देर में हम हाजिर होते हैं फिल्म संगीत लेकर।

सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश, हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 06572960445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर, और अब हम हाजिर हैं फिल्म संगीत लेकर।

दोस्तों, सुबह का सूरज जब उगता है तो अपने साथ ना जाने कितनी ऊर्जा इस पृथ्वी पर बिखेरता है, जिसमें नए जीवन की रोशनी है। मन नई स्फूर्ति और ताजगी से भरा होता है। हौसला इतना मजबूत होता है कि कठिन से कठिन काम भी आसान हो जाता है। दिन की शुरुआत अगर सकारात्मक हो तो शाम भी खुशनुमा, हंसी और गुनगुनाती मुस्कुराती सी होगी। तो आइए हम खुद के जीवन की शुरुआत करें

आक्रमण आपने सुना इस फिल्म का गाना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। आनंद बख्शी के रचे इस गीत को संगीतबद्ध किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। अब आइए सुनवाते हैं अगला गीत जमीर फिल्म से। किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ें हैं। साहिर लुधियानवी ने इस गीत को रचा है। धुन सपन चक्रवर्ती का है।

फिल्म जमीर के इस गाने के साथ ही श्रोताओं, हमारा आज का फिल्म संगीत का ये सफ़र अब यहीं पूरा होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। एक रिपोर्ट।
1: भारत और वेनेजुएला के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, विशेषकर ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा कई क्षेत्रों में सहयोग और गहरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के दौरान दोनों पक्ष आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश, दवाएं, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल है। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, दवा और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी सुविधाओं का करेगा। इस यात्रा का उद्देश्य सहयोग के अवसर को तलाशना और भारत की तकनीकी तथा औद्योगिक क्षमताओं के बारे में जानकारी हासिल करना है। दीपेंद्र और ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार आज कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। 8 बार के विधायक डीके शिवकुमार बेंगलुरु के लोक भवन स्थित ग्लास हाउस में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ कुछ कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जाएगी। 28 मई को सिद्धरमैया के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस विधायक दल ने 64 वर्षीय डीके शिवकुमार को अपना नेता चुना था। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला सहित कई प्रमुख नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल सरकार आज एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याणकारी पहल अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इस योजना का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। पहले चरण में लाभार्थियों के बैंक खाते में आज से ही 3,000 रुपए भेजना शुरू किया जाएगा। इस योजना से लगभग 2 करोड़ महिला उपभोक्ताओं को लाभ मिलने की संभावना है। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान के नैनो विज्ञान और इंजीनियरिंग केंद्र में प्रशिक्षण केंद्र का वर्चुअल रूप से उद्घाटन भी करेंगी। इस सम्मेलन में 26 राज्यों और 4 केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विवाहित बेटियों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि परिवार की परिभाषा से विवाहित बेटियों को बाहर रखना स्पष्ट रूप से अनुचित और संवैधानिक रूप से गलत है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द करते हुए ये टिप्पणी की। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्हें 99 वोट मिले। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देश कल 2027-28 कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्यों का भी चुनाव करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने डॉ खलीलुर रहमान को अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बधाई दी है। डॉ जयशंकर ने कहा कि वे भारत और बांग्लादेश की साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने तथा बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए डॉ रहमान के साथ मिलकर काम करने के इच्छुक हैं। जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों का आपसी संपर्क बढ़ेगा और संबंधों को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच इस वर्ष जनवरी में भारत यात्रा के दौरान इसकी घोषणा की गई थी। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यसमूह की पहली प्रत्यक्ष तकनीकी बैठक आज ओडिशा के पुरी में शुरू

तीन दिन की इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य और साझेदार देशों के प्रतिनिधि, नीति निर्माता और आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ भाग लेंगे। तीसरा और अंतिम महिला T20 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा है। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के टॉन्टन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड ने 18 ओवर 3 गेंद में 4 विकेट पर 184 रन बनाकर मैच जीत लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी ही देर में आपको सुनवाते हैं सुरंजना।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: नमस्कार जमशेदपुर, नमस्कार जमशेदपुर का एक अलग अंदाज,
2: ज्ञान विज्ञान
3: इतिहास के पन्नों से,
2: सेहत और बॉलीवुड की बातें,
1: मौसम का मिजाज,
2: अपने शहर की खबरें,
3: बातों मुलाकातों के साथ
1: सुरीला मनोरंजन
2: और भी बहुत कुछ।
1: आप सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में दिन के 11:05 से 12 तक
3: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।
1: नमस्कार जमशेदपुर।
4: हेलो मन भावन, आप सुनेंगे नए अंदाज में मेरे यानी निमिषा के साथ। प्रत्येक रविवार दिन के 11 आकाशवाणी जमशेदपुर के विविध भारती केंद्र से 100.8 MHz पर। आपके फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक बुधवार दोपहर 12 से 12:30 के बीच। हमारा टेलीफोन नंबर है 2960445 और कोड है 0657। तो आप भी जुड़ जाइए हेलो मनभावन कार्यक्रम से।
5: जलवायु और भूख, यह एक संदेश है यूनेस्को की तरफ से। जलवायु परिवर्तन दुनिया भर की खाद्य प्रणालियों को बाधित करता है, उत्पादन से लेकर उपलब्धता तक, और इससे भूख का खतरा बढ़ता है। कुछ इलाकों को शायद थोड़ा फायदा हो, लेकिन ज्यादातर जगह पर खराब मौसम, कम फसल और बढ़ती कीमतों के कारण खाद्य की कमी होने लगती है। सबसे ज्यादा असर पड़ता है गरीब लोगों पर। साथ ही अस्थिर खाद्य प्रणालियां खुद भी जलवायु परिवर्तन को बढ़ाती है। इसलिए अब हम जलवायु परिवर्तनों का सामना करने वाली खाद्य प्रणालियों पर ध्यान दे रहे हैं, ताकि भूख और जलवायु की समस्याओं से बचा जा सके। और इससे भी बड़ी बात, अशांत खाद्य प्रणालियां खुद भी जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देती है। इसलिए आज जरूरत है उन खाद्य प्रणालियों पर ध्यान देने की जो क्लाइमेट के बदलाव से जूझ सकती हैं, ताकि भूख और जलवायु दोनों संकट से निपटा जा सके। यह एक दिलचस्प तथ्य है, 2020 में दुनिया की लगभग

0: 10% आबादी को निरंतर कुपोषण का सामना करना पड़ा।
1: हेलो डॉक्टर,
2: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम।
1: हेलो डॉक्टर,
2: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-2960-445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-2960-445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
1: हेलो डॉक्टर।

0: सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश, हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फ़ोन नंबर है 0657-296-0445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर और अब हम हाजिर हैं सुरंजना लेकर।

दोस्तों, साल 1977 में यश राज फिल्म्स के बैनर तले एक ऐसी ही अनोखी और जज्बाती फिल्म आई थी जिसने रिश्तों के एक बेहद संवेदनशील पहलू को छुआ था। जी हाँ, ये फिल्म था निर्देशक रमेश तलवार की क्लासिक फिल्म दूसरा आदमी, और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरंजना में इसी फिल्म के गाने।

लता मंगेशकर, किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ें थी। इस फिल्म के गानों ने दिल के हर कोने को छुआ है, चाहे वो चल कहीं दूर कहीं निकल जाए हो या फिर अब सुनवाते हैं जो गीत आँखों में काजल है।

श्रोताओं, आज आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुरंजना में एक ही फिल्म के गाने, और आज की फिल्म थी दूसरा आदमी। गीतकार थे

0: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: मन की बात, प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
4: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
3: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें, मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
4: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। अब आइए सुनवाते हैं शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत के आज के इस कार्यक्रम में श्रोताओं आप सुनेंगे राग मिश्रा शिवरंजनी पर आधारित संतूर वादन पंडित शिव कुमार शर्मा से।

अभी आप सुन रहे थे राग मिश्र शिवरंजनी पर आधारित संतूर वादन पंडित शिव कुमार शर्मा से। इसी के साथ हमारा आज का शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हो

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा।
1: भारत और वेनेजुएला के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, विशेषकर ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा कई क्षेत्रों में सहयोग और गहरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के दौरान दोनों पक्ष आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश, दवाएं, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल है। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, दवा और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी सुविधाओं का करेगा। इस यात्रा का उद्देश्य सहयोग के अवसर को तलाशना और भारत की तकनीकी तथा औद्योगिक क्षमताओं के बारे में जानकारी हासिल करना है। दीपेंद्र और ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान के नैनो विज्ञान और इंजीनियरिंग केंद्र में प्रशिक्षण केंद्र का वर्चुअल रूप से उद्घाटन करेंगी। सम्मेलन में 26 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार आज एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याणकारी पहल अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इस योजना का औपचारिक रूप से उद्घाटन करेंगे। पहले चरण में लाभार्थियों के बैंक खाते में आज से ही 3,000 रुपए भेजना शुरू होगा। इस योजना से लगभग 2 करोड़ महिला उपभोक्ताओं को लाभ मिलने की संभावना है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार आज कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। 8 बार के विधायक डीके शिवकुमार बेंगलुरु के लोकभवन स्थित ग्लास हाउस में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ कुछ कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेंगे। 28 मई को सिद्धारमैया के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस विधायक दल ने 64 वर्षीय डीके शिवकुमार को अपना नेता चुना था। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला सहित कई प्रमुख नेता शामिल होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विवाहित बेटियों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि परिवार की परिभाषा से विवाहित बेटियों को बाहर रखना स्पष्ट रूप से अनुचित और संवैधानिक रूप से गलत है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द करते हुए ये टिप्पणी की। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत आपदा जोखिम न्यूनीकरण समूह की पहली प्रत्यक्ष तकनीकी बैठक आज ओडिशा के पुरी में शुरू होगी। 3 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य और साझेदार देशों के प्रतिनिधि, नीति निर्माता और आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ भाग लेंगे। जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों का आपसी संपर्क बढ़ेगा और संबंधों को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच इस वर्ष जनवरी में भारत यात्रा के दौरान इसकी घोषणा की गई थी। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। उन्हें 99 वोट मिले। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देश कल 2027-28 कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्यों का भी चुनाव करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने डॉ खलीलुर रहमान को बधाई दी है। तीसरे और अंतिम महिला 2020 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। एलिस कैप्सी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, साथ ही उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब भी मिला। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी बधाई। जर्मनी ने हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त की। भारत ने कहा, इससे दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ेगा। तिब्बत में चीन के नरसंहार या मानवता के खिलाफ अपराध के निर्धारण संबंधी विधेयक अमरीकी प्रतिनिधि सभा में पेश। और महिला क्रिकेट में मेजबान इंग्लैंड ने तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत को 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 2-1 से अपने नाम की। अब समाचार विस्तार से। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। एक रिपोर्ट।
1: भारत और वेनेजुएला के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, विशेषकर ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा कई क्षेत्रों में सहयोग और गहरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के दौरान दोनों पक्ष आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश, दवाएं, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, दवा और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी सुविधाओं का दौरा करेगा। इस यात्रा का उद्देश्य सहयोग के अवसर को तलाशना और भारत की तकनीकी तथा औद्योगिक क्षमताओं के बारे में जानकारी हासिल करना है। दीपेंद्र और ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्हें 99 वोट मिले। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देश कल 2027-28 कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्यों का भी चुनाव करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने डॉ खलीलुर रहमान को अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बधाई दी है। डॉ जयशंकर ने कहा कि वे भारत और बांग्लादेश की साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने और बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए डॉ रहमान के साथ मिलकर काम करने के इच्छुक हैं। जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ेगा और लोगों को संबंधों को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच इस वर्ष जनवरी में भारत यात्रा के दौरान इसकी घोषणा की गई थी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है कि चीन ने मौजूदा क्षेत्रीय संकट के दौरान ईरान को सैन्य सहायता दी है। उन्होंने कहा कि ईरान के पास चीन में बने कुछ सैन्य उपकरण जरूर हैं, लेकिन हाल के संघर्ष में चीन की किसी भी ऐसी कार्रवाई का पता नहीं चला है जिससे सैन्य संतुलन प्रभावित हुआ हो। श्री रूबियो ने चीन से अपील की कि वो संयुक्त राष्ट्र में अधिक रचनात्मक भूमिका निभाए, खासकर हॉर्मुज जलडमरू मध्य में समुद्री यातायात सुचारू रखने के प्रयासों में। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य नीति का मजबूती से बचाव किया है। उन्होंने कहा है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए पारंपरिक हथियारों की क्षमता को ढाल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था। श्री रूबियो ने दावा किया कि हाल के अमरीकी सैन्य अभियानों से ईरान की सैन्य क्षमता में काफी गिरावट आई है। ईरान की नौसेना अब काफी कमजोर हो चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि अमरीकी कार्रवाई में ईरान के ड्रोन उत्पादन ढांचे को भी निशाना बनाया गया, जिससे उसकी उत्पादन क्षमता प्रभावित हुई है। अमेरिका की सेना ने कहा है कि कुवैत और बहरीन की ओर दागी गई ईरान की मिसाइलें या तो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाईं या उन्हें बीच में ही रोक लिया गया। सेना ने यह भी कहा कि इसके बदले में अमेरिका ने ईरान के ठिकानों पर हमले किए। अमेरिकी सेंट्रल कमान के अनुसार ये हमले हॉर्मुज जलडमरू मध्य के निकट क्वेश्म द्वीप पर स्थित ईरानी सैन्य जमीनी नियंत्रण केंद्र को निशाना बनाकर किए गए। इस द्वीप पर एक डिसेलिनेशन संयंत्र भी है। एक रिपोर्ट।
2: अमरीकी सेना ने कहा कि कुवैत की ओर दागी गई दो मिसाइलें रास्ते में ही नष्ट हो गईं, जबकि बहरीन की ओर दागी गई मिसाइलों को अमरीका और बहरीन की सेनाओं ने बीच में ही रोक लिया। स्थानीय मीडिया खबरों के अनुसार ये घटनाक्रम तब सामने आए जब ईरान ने युद्ध विराम की अवधि बढ़ाने के संबंध में मध्यस्थों से बातचीत बंद कर दी। हालांकि अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस दावे का खंडन करते हुए कहा कि बातचीत जारी है। एक अन्य घटनाक्रम में अमरीका की सेना ने कहा कि उसने अमरीकी नाकाबंदी का उल्लंघन करते हुए ईरानी बंदरगाह तक पहुंचने की कोशिश कर रहे तेल टैंकर को रोकने के लिए एक मिसाइल दागी। सेना ने कहा कि नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश में रोका गया ये सातवां जहाज था। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मृगनयनी पांडे।
0: विश्व दर्पण आकाशवाणी से प्रसारित किया जा रहा है। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमरीकी प्रतिनिधि सभा के सांसदों ने एक विधेयक पेश किया है जिसके अंतर्गत विदेश विभाग को यह निर्धारित करना होगा कि क्या चीन ने तिब्बत के लोगों के खिलाफ नरसंहार या मानवता के विरुद्ध अपराध किए हैं। इससे मानवाधिकार रिकॉर्ड को लेकर चीन पर कांग्रेस का दबाव और बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
3: न्यूजर्सी के रिपब्लिकन सांसद क्रिस स्मिथ और न्यूयॉर्क के डेमोक्रेट सांसद टॉम स्वोजी ने कल तिब्बत अत्याचार निर्धारण अधिनियम पेश किया। इसके अंतर्गत विदेश मंत्री को अधिनियम लागू होने के एक वर्ष के भीतर तिब्बत में चीन की कार्रवाइयों का आकलन करते हुए कांग्रेस को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। इस विधेयक में तिब्बत के बौद्ध धर्म के चीन के अनुसार और तिब्बती भाषा और संस्कृति के दमन के उद्देश्य से चीन की सरकार की कार्रवाइयों की समीक्षा का भी प्रावधान है। रिपोर्ट में विदेश विभाग के निष्कर्षों और तीसरे पक्ष के विश्लेषणों का उपयोग किया जाएगा और प्रतिबंधों, वीजा प्रतिबंधों और राजनयिक उपायों सहित अमेरिका की संभावित प्रतिक्रियाओं की सिफारिश की जाएगी। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: भारत ने श्रीलंका के जाफना विश्वविद्यालय में आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्रों के लिए अपनी छात्रवृत्ति योजना का विस्तार किया है। श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त संतोष झा ने इस योजना के तहत छात्रवृत्तियां वितरित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित इस योजना के तहत अब प्रथम वर्ष के 100 विद्यार्थियों को प्रतिमाह 7,500 श्रीलंकाई रुपए की सहायता दी जाएगी। ये सहायता उनकी पूरी डिग्री अवधि तक जारी रहेगी। पाकिस्तान की सेना ने दावा किया है कि उसने बलूचिस्तान प्रांत में खुफिया सूचनाओं के आधार पर चलाए गए अभियानों में 17 आतंकवादियों को मार गिराया है। सेना के अनुसार पिछले महीने क्वेटा के निकट हुई ट्रेन बम विस्फोट की घटना के बाद मस्तुंग, नुश्की, जेहरी, खुजदार और केच जिलों में ये अभियान चलाए गए। इस विस्फोट की जिम्मेदारी प्रतिबंधित बलूच लिबरेशन आर्मी ने ली थी। आज विश्व साइकिल दिवस है। ये विशेष दिवस हर साल 3 जून को मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य साइकिल को एक सरल, किफायती, विश्वसनीय और पर्यावरण अनुकूल स्थायी परिवहन साधन के रूप में मान्यता देना है। ये पहल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस साल का विषय है हरित भविष्य के लिए साइकिल चलाना। तीसरे और अंतिम महिला T20 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के टोंटन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड ने 18 ओवर और 3 गेंदों में 4 विकेट पर 184 रन बनाकर मैच जीत लिया। एलिस कैप्सी प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई। प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब भी उन्हीं को मिला गया। SAAFF महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में आज भारत का सामना सेमीफाइनल में भूटान से होगा। ये मुकाबला गोवा के मडगांव स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में रात 8 बजे से खेला जाएगा। 5 बार की चैंपियन भारतीय टीम ग्रुप बी में सभी मैच जीतकर शीर्ष पर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी बधाई। जर्मनी ने हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त की। भारत ने कहा इससे दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ेगा। तिब्बत में चीन के नरसंहार या मानवता के खिलाफ अपराध के निर्धारण संबंधी विधेयक अमरीकी प्रतिनिधि सभा में पेश। और महिला क्रिकेट में मेजबान इंग्लैंड ने तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत को 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 2-1 से अपने नाम की। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित विश्व दर्पण। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी ही देर में हम हाजिर होते हैं फिल्म संगीत लेकर।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र और अब हम हाजिर हैं फिल्म संगीत लेकर। करते हैं कार्यक्रम का आगाज और सुनवाते हैं फिल्म नूरी का ये गीत।

0: तुमसे तो अच्छा, बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो, फायदा है जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
0: ओ, 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
2: मन की बात, प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
3: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
2: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें, मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
3: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
4: हेलो डॉक्टर,
5: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम
4: हेलो डॉक्टर।
5: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 MHz पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल

और अब लीजिए सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत अग्निपथ फिल्म से। सोनू निगम की आवाज़ है, बोल अमिताभ भट्टाचार्य के हैं और धुन अजय अतुल का है।

कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनवाते हैं फिल्म अमावस का ये गीत। गीतकार हैं अमिताभ भट्टाचार्य, माफ़ करेंगे, संदीप नाथ, और संगीतकार हैं संजीव दर्शन। आवाजें जुबिन नौटियाल और पलक मुछल की हैं।

0: फिल्म मामावस के इस गाने के साथ ही श्रोताओं, हमारा आज का फिल्म संगीत का ये सफर अब यहीं खत्म होता है।
1: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ, वाह दिल बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसा।

0: पैसे भेजने के लिए है।
1: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश, हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक FM के 102.4 MHz पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0657-296-0445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें।
4: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली OG कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
5: हमारा अगला कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर आप सुनेंगे इसी चैनल पर।
3: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार।

0: भारत और वेनेजुएला के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, विशेषकर ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा कई क्षेत्रों में सहयोग और गहरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के दौरान दोनों पक्ष आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश, दवाएं, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, दवा और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी सुविधाओं का दौरा करेगा। इस यात्रा का उद्देश्य सहयोग के अवसर को तलाशना और भारत की तकनीकी तथा औद्योगिक क्षमताओं के बारे में जानकारी हासिल करना है। दीपेंद्र और ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसी और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान के नैनो विज्ञान और इंजीनियरिंग केंद्र में प्रशिक्षण केंद्र का वर्चुअल रूप से उद्घाटन करेंगी। सम्मेलन में 26 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार आज एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याणकारी पहल अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इस योजना का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। पहले चरण में लाभार्थियों के बैंक खाते में आज से ही 3,000 रूपए भेजना शुरू करेंगे। इस योजना से लगभग 2 करोड़ महिला उपभोक्ताओं को लाभ मिलने की संभावना है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार आज कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। 8 बार के विधायक डीके शिवकुमार बेंगलुरु के लोकभवन स्थित ग्लास हाउस में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ कुछ कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेंगे। 28 मई को सिद्धरमैया के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस विधायक दल ने 64 वर्षीय डीके शिवकुमार को अपना नेता चुना था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विवाहित बेटियों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि परिवार की परिभाषा से विवाहित बेटियों को बाहर रखना स्पष्ट रूप से अनुचित और संवैधानिक रूप से गलत है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की पहली प्रत्यक्ष तकनीकी बैठक आज ओडिशा के पुरी में होगी। 3 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य साझेदार देशों के प्रतिनिधि, नीति निर्माता और आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ भाग लेंगे। जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों का आपसी संपर्क बढ़ेगा और संबंधों को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच इस वर्ष जनवरी में भारत यात्रा के दौरान इसकी घोषणा की गई थी। ईरान ने कल बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। ईरान के एक सैन्य ठिकाने पर अमरीकी सेना के हमले के बाद हुए इस घटनाक्रम से तनाव और बढ़ गया है। इससे क्षेत्रीय स्तर पर संघर्ष विराम को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। अमरीकी केंद्रीय कमान के अनुसार अमरीकी सेना द्वारा ईरानी बंदरगाहों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे एक तेल टैंकर को निष्क्रिय करने के बाद यह तनाव शुरू हुआ। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा कि अमरीका के निकेशन द्वीप के दक्षिण में स्थित उनके एक संचार केंद्र को निशाना बनाया था। जवाब में ईरान ने बहरीन में अमरीकी नौसेना के 5वें बेड़े के मुख्यालय और कुवैत में एक सैन्य हवाई अड्डे पर मिसाइल और ड्रोन दागे। हालिया तनाव के बढ़ने के बावजूद अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ संपर्क जारी है और कूटनीति के विफल होने की खबरों को खारिज कर दिया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं से साइकिल चलाने और एक स्वस्थ, तंदुरुस्त और हरित राष्ट्र के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने का आग्रह किया है। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर एक वीडियो संदेश साझा करते हुए उन्होंने ये बात कही। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के शुरुआती कारोबार में आज गिरावट दर्ज की गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

11:05 हुए हैं और आप इस समय हैं हमारे दिवाकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ। और अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर।

कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर सुनने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत हम कर रहे हैं आज के कार्यक्रम में। स्वीकार कीजिए गीता का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज कार्यक्रम में सबसे पहले बात एक ऐसे विषय पर जो न सिर्फ हमारे पर्यावरण को बचाता है बल्कि हमारे शरीर और मन को भी स्वस्थ रखता है। जी हाँ, आज यानी 3 जून का दिन बेहद खास है हमारे लिए क्योंकि आज हम मना रहे हैं विश्व साइकिल दिवस। 3 जून को मनाया जाने वाला ये दिन श्रोताओं हमें याद दिलाता है कि साइकिल सिर्फ एक साधन नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2018 में इस दिन को घोषित किया था ताकि लोगों को साइकिलिंग के महत्व पर जागरूक किया जा सके और पूरे देश में साइकिलिंग को बढ़ावा दिया जा सके।

मैं चली। और श्रोता, ये जो गाना आपने सुना ये पड़ोसन फिल्म का था और ये साइकिल पर ही फिल्माया गया था, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं विश्व साइकिल दिवस पर। और बता दें श्रोताओं कि लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाज़ों में ये गाना था। राजेंद्र कृष्ण ने गीत लिखा और धुन बनाई आरडी बर्मन ने। श्रोता, साइकिल चलाना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। आज की भागती दौड़ती जिंदगी में हम कार, बाइक या ऑटो पर निर्भर हो गए हैं, लेकिन हमें ये जानना जरूरी है कि अगर हम रोज थोड़ी दूरी साइकिल से तय करें तो न सिर्फ हमारे पैसे बचेंगे बल्कि हमारा शरीर भी फिट रहेगा। शारीरिक स्वास्थ्य की बात अगर हम करते हैं तो रोज 30 से 45 मिनट साइकिल चलाने से कैलोरी बर्न होती है और हमारा वजन भी नियंत्रित रहता है। साथ ही साइकिल चलाने से हार्ट की मांसपेशियां भी मजबूत होती हैं, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है और कोलेस्ट्रॉल का स्तर भी नियंत्रित रहता है। वहीं देखा जाए तो श्वास संबंधी स्वास्थ्य में भी सुधार होता है हमारे लिए। फेफड़े ज़्यादा ऑक्सीजन ले पाते हैं जिससे सांस लेने की क्षमता भी बढ़ती है। साथ ही मानसिक स्वास्थ्य की बात करें तो साइकिल चलाते समय बाहर की हवा, प्रकृति का नज़ारा, तनाव, चिंता और डिप्रेशन को भी कम किया जाता है। साथ ही इम्यूनिटी बढ़ाने में भी साइकिलिंग हमारी मदद करती है। श्रोताओं, विश्व साइकिल दिवस हमें इसी बात की प्रेरणा देता है कि हम रोज कम से कम 15 से 20 मिनट साइकिलिंग करें और इसके लिए अपने हाइट के अनुसार आप साइकिल का चुनाव कर सकते हैं। घर से ऑफिस या बाजार की छोटी छोटी दूरी साइकिल से तय करने की कोशिश करें। बच्चों को भी इसमें शामिल करें, इससे उनका शारीरिक विकास भी अच्छा होगा और वे मोबाइल से भी कुछ देर दूर दूरी बनाकर रहेंगे। और इस तरह से श्रोताओं, छोटे छोटे बदलाव से हम अपने स्वास्थ्य को, अपने शहर की हवा को और पूरे पर्यावरण को बेहतर बना सकते हैं।

भावी फिल्म का ये गाना था नितिन मुकेश और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में। हसरत जयपुरी ने गीत लिखा और धुन बनाई अनु मलिक ने।

सेहत की बात हो रही है श्रोताओं, तो आज का दिन एक और रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर साल जून महीने के पहले बुधवार को ग्लोबल रनिंग डे यानी वैश्विक दौड़ दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये दिन दुनिया भर के लोगों को दौड़ने के लिए प्रोत्साहित करने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के महत्व को समझने का अवसर हमें प्रदान करता है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को दौड़ने के लिए प्रेरित करना और स्वस्थ जीवन शैली के महत्व को समझना है। श्रोताओं, दौड़ना एक आसान और प्रभावी व्यायाम है जो सभी उम्र के लोगों के लिए फायदेमंद होता है। ये दिल की सेहत, मेंटल हेल्थ, बढ़ते वजन को कंट्रोल करने और मांसपेशियों की ताकत में सुधार करने में भी मदद करता है। वैसे दौड़ना कोई उम्र नहीं देखता, चाहे 10 साल का बच्चा हो या 70 साल का बुजुर्ग, हर कोई दौड़ सकता है। आज के व्यस्त जीवन में ग्लोबल रनिंग डे हमें याद दिलाता है श्रोताओं कि स्वास्थ्य ही हमारा सबसे बड़ा खजाना है। हमें चाहिए कि हम हर हफ्ते कम से कम एक बार ज़रूर दौड़ेंगे, क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है और स्वस्थ लोग ही मजबूत राष्ट्र बनाते हैं।

0: रब्बी शेरगिल के आवाज़ में जब तक है जान फिल्म का ये गाना था। गुलजार थे गीतकार और संगीतकार थे A.R. रहमान।
1: अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर।

0: नया भारत नया आकाशवाणी।
1: मन की बात प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
2: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
1: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें। मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
2: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।

और दोस्तों अब बात एक अनोखे और मज़ेदार दिन की, जी हाँ, आज ही के दिन यानी 3 जून को मनाया जा रहा है रिपीट डे, यानी आज का दिन हमें ये कहता है कि जो अच्छा लगे उसे दोहराओ, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि जितनी बार हमें मन करे। श्रोताओ, रिपीट डे ऐसा दिवस है जिसे दुनिया भर में मनाया जाता है। इस दिन का मकसद यही है कि उन चीज़ों को दोहराना जो हमें बेहद पसंद आता है, जैसे कि हम अपने दैनिक जीवन में करते भी हैं। जो पसंदीदा गाना है उसे हम बार बार सुनना पसंद करते हैं, पसंदीदा खाना, पसंदीदा फिल्म बार बार देखना हम पसंद करते हैं, पसंदीदा खाना खाना पसंद करते हैं, और कुछ मज़ेदार बातें होती हैं जिन्हें हम बार बार अपने दोस्तों के साथ दोहराते हैं। आज का दिन भी हमें यही सिखाता है कि जीवन में छोटी छोटी खुशियों को दोहराने में कोई हर्ज नहीं है। आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर नई नई चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन पुरानी अच्छी यादें और आदतों को दोहराना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके फ़ायदे भी हैं। पुरानी खुशियां ताज़ा हो जाती हैं, तनाव कम होता है, परिवार और दोस्तों के साथ बॉन्डिंग मजबूत होती है, या कुल मिलाकर कहें कि हम सबके लिए ये मज़ा दोगुना हो जाता है। तो आज से ही शुरू कीजिए, जो अच्छा लगे उसे बार बार दोहराइए और मुस्कुराते रहिए।

बाबुल सुप्रियो और महालक्ष्मी अय्यर की आवाज़ों में लागा चुनरे में दाग फिल्म का ये गाना अभी आपने सुना। स्वानंद किरकिरे ने गीत लिखा था और धुन बनाई थी शांतनु मोइत्रानी।

और अब कार्यक्रम में चर्चा आज के दिन के इतिहास की। आज ही के दिन साल 1818 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के बीच लंबे युद्धों का अंत हुआ और तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के समाप्त होने के साथ मराठा शक्ति का पतन हो गया और ब्रिटिश के भारत में सत्ता मजबूत हुई। ये घटना भारतीय इतिहास में ब्रिटिश विस्तारवाद की एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई। मराठों के वीर योद्धाओं ने सदियों तक मुगलों और फिर अंग्रेजों का सामना किया। उनकी बहादुरी आज भी हमें प्रेरित करती है। आज ही के दिन 3 जून 1915 को ब्रिटिश सरकार ने महान कवि, लेखक और नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि प्रदान की थी, लेकिन साल 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद टैगोर ने ये सम्मान वापस कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक अत्याचार जारी है वे इस उपाधि को स्वीकार नहीं कर सकते और ये घटना भारतीय बुद्धिजीवियों के स्वाभिमान और विरोध की मिसाल बन गई। आज ही के दिन साल 1972 को भारतीय नौसेना में INS नीलगिरी को शामिल किया गया था और ये ब्रिटिश डिजाइन पर आधारित पहला आधुनिक युद्धपोत था जिसे भारत में बनाया गया। ये भारतीय स्वदेशी रक्षा निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम था। आज के समय में हमारी नौसेना विश्व की मजबूत

मोहित चौहान की आवाज़ में कौशल किशोर का लिखा और विशाल मिश्रा का संगीतबद्ध किया गीत अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था नोटबुक।

वैसे दोस्तों जून का महीना चल रहा है और तापमान में अभी भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। वैसे देखा जाए तो कुछ दिनों में बारिश दस्तक देने वाली है और उसके बाद गर्मी से राहत हमें ज़रूर मिलेगी। तापमान में धीरे धीरे गिरावट होगी या कहें कि मौसम में बदलाव होगा और यही बदलाव हमें कई तरह की परेशानियों में डाल सकता है। लेकिन इस मौसम में हम अगर छोटी छोटी बातों को अच्छे से ख्याल रखें तो कई तरह की बीमारियों से बच सकते हैं और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस माह राष्ट्रीय मलेरिया रोधी माह 1 से 30 जून तक मनाया जाता है और इस माह का उद्देश्य है मलेरिया से बचाव, जागरूकता फैलाना और मच्छरों के प्रजनन को रोकना ताकि हम एक स्वस्थ और मलेरिया मुक्त भारत बना सकें। श्रोताओं, मलेरिया एक मच्छर जनित बीमारी है जो एनिफिलीज मच्छर के काटने से फैलती है। बुखार, ठंड लगना, सिर दर्द, उल्टी और थकान इसके मुख्य लक्षण होते हैं। साथ ही ध्यान दें कि अपने घर के आसपास पानी जमा न होने दें। गमलों, टायरों, बाल्टियों, कूलर और छत पर जमा पानी को हर हफ्ते खाली करते रहें। सोते समय मच्छरदानी का इस्तेमाल ज़रूर करें। घर के दरवाजे, खिड़कियाँ पर जाली आप ज़रूर लगवाएं। साथ ही लंबी बाजू के कपड़े पहनें और मच्छर भगाने वाली क्रीम का प्रयोग करें। बुखार आने पर तुरंत नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर मलेरिया टेस्ट अवश्य करवाएं। याद रखें श्रोताओं, अगर हम सब मिलकर अपने आसपास साफ सफाई रखेंगे तो मलेरिया को ज़रूर हरा सकते हैं।

और शताब बात एक ऐसी अभिनेत्री की जिन्होंने बचपन से ही सिनेमा की दुनिया में कदम रखा और अपनी मेहनत, प्रतिभा और संघर्ष से न सिर्फ नाम कमाया बल्कि नेशनल अवार्ड भी जीता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अभिनेत्री और कॉस्ट्यूम डिजाइनर सारिका ठाकुर की, जिन्हें सरलता से हम सारिका के नाम से जानते हैं। सारिका का जन्म आज ही के दिन 1960 को नई दिल्ली में हुआ। वे मराठी राजपूत परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उनके पिता दिनेश सावंत ने परिवार को छोटी उम्र में ही छोड़ दिया और जिसके बाद घर की जिम्मेदारी उनकी माँ पर आ गई और सिर्फ 4 से 5 साल की उम्र में सारिका को परिवार की आर्थिक स्थिति संभालने के लिए फिल्मों में काम करना पड़ा। साल 1975 में गीत गाता चल फिल्म से उन्होंने हीरोइन के रूप में डेब्यू किया, जिसमें उनके साथ सचिन पिलगांवकर थे। इस जोड़ी ने कई हिट फिल्में दी। 80 के दशक में उन्होंने क्रांति, सत्य पे सत्ता, विधाता, जानी दुश्मन, राजा सुल्तान जैसे कई यादगार फिल्मों में काम किया। उनकी अभिनय क्षमता और खूबसूरती दोनों सराही गई। आज उनके जन्मदिन की हम शुभकामनाएं उन्हें देते हैं और सुनते हैं उन्हीं के द्वारा अभिनीत फिल्म गीत गाता चल का ये गाना।

आरती मुखर्जी की आवाज़ में गीत गाता चल फिल्म का ये गाना अभी आपने सुना। गीत और संगीत था रविंद्र जैन का। और श्रोता, आप चलते चलते मौसम का हाल आपको बताते चले। आज शहर और इसके आसपास के क्षेत्रों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और बारिश होने की संभावना जताई गई है मौसम विभाग की ओर से। और इस बीच अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। और इसी के साथ आज का कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर से मुझे यानी गीता को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय दिन के ठीक 12 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा। आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। कृपया कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में जनजातीय विकास पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि जनजातीय सांस्कृतिक रूप से बहुत धनी है। उन्होंने कहा कि जनजातीय

0: खुद के अंदर गांव गांव में ज्यादा टूर्नामेंट करते हैं, लेकिन उसको प्रोत्साहित करने की जरूरत है। तो एकलव्य विद्यालय को दिया गया है। मैं कहना चाहूंगी जो भी और भी ट्राइबल स्कूल है, क्योंकि उनके पास टैलेंट है। आज आप ओडिशा के भुवनेश्वर में क्या किट आज फेमस क्यों है, किट नहीं किस फेमस आज वर्ल्ड फेमस क्यों है, क्योंकि वहाँ ट्राइबल 25,000 या 30,000 बच्चों को ट्राइबल बच्चों को लिए हैं पढ़ाई।
1: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिक्स आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उनके साथ उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा।
2: भारत और वेनेजुएला के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, विशेषकर ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा कई क्षेत्रों में सहयोग और गहरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के दौरान दोनों पक्ष आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश, दवाएं, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, दवा और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी सुविधाओं का दौरा करेगा। इस यात्रा का उद्देश्य सहयोग के अवसर को तलाशना और भारत की तकनीकी तथा औद्योगिक क्षमताओं के बारे में जानकारी हासिल करना है। दीपेंद्र और ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में 2025 तक विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बन गया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश की सौर ऊर्जा विकास गाथा वैश्विक मानक स्थापित कर रही है और मजबूत नीतिगत समर्थन, नवाचार और विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के माध्यम से रिकॉर्ड क्षमता वृद्धि को गति दे रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार आज कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। 8 बार के विधायक डीके शिवकुमार बेंगलुरु के लोकभवन स्थित ग्लास हाउस में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ कुछ कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल की पूर्व सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी में उथल पुथल मची हुई है और वो विभाजन के कगार पर है। टीएमसी से निष्कासित विधायक ऋतुवर्ता बनर्जी का दावा है कि उन्हें लगभग 60 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। उनके गुट ने विधानसभा अध्यक्ष रथिंद्र बोस को पत्र लिखकर खुद को टीएमसी के रूप में मान्यता देने की मांग की है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि लगभग 40,000 छात्रों ने सफलतापूर्वक पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा कर दिए हैं। ये प्रक्रिया बिना किसी समस्या के पूरी कर ली गई है। बोर्ड ने कल कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोला था। ये सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं। आज विश्व साइकिल दिवस है। इस वर्ष का विषय है हरित भविष्य के लिए साइकिल चलाना। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं से साइकिल चलाने और एक स्वस्थ, तंदुरुस्त और हरित राष्ट्र के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने का आग्रह किया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के शुरुआती कारोबार में आज गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 948 अंक की गिरावट के साथ 73,702 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 12:05 हुए हैं और आप इस समय हैं हमारी दिवाकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ। और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम शीर्षक गीत।

0: पर बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: आकाशवाणी जमशेदपुर से अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम शीर्षक गीत। कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत, स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज कार्यक्रम में बातें इश्क की, मोहब्बत की। कितने दौर बदल जाते हैं, जमाने बदल जाते हैं, लोगों की पसंद भी बदल जाती है, लेकिन इश्क नहीं बदलता। वो तो हमेशा से खूबसूरत नजर आता है, चाहे लैला मजनू के किस्से हो या हीर रांझे के अफसाने। इश्क तो हमेशा से हर आशिक का हम सफर रहा है।

दोस्तों, प्यार मोहब्बत इश्क के बिना हमारी ज़िंदगी बिल्कुल अधूरी है। ईश्वर ने हमें जिस तरह से ज़िंदगी दान स्वरूप दिया है, उसी तरह से ज़िंदगी में प्यार का बीज भी बोया है। प्यार मोहब्बत इश्क हर दिल में होता है, क्योंकि इसमें मिठास है। किसी को अपना बना लेना, यही तो इश्क है, यही तो मोहब्बत है।

निश्चल निर्मल होता है। प्यार, इश्क, मोहब्बत, सागर सी गहराई होती है इसमें। कब, कहां और कैसे किससे हो जाए पता ही नहीं चलता, बस हो जाता है अचानक और कोई अंतर्मन में गहराई तक समा जाता है।

आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से शीर्षक गीत कार्यक्रम अभी आप सुन रहे हैं। अभी तो दिल में हल्की सी खलिश महसूस होती है, बहुत मुमकिन है कि कल इसका नाम मोहब्बत हो जाए। वाकई कुछ ऐसा ही होता है जब दिल किसी पे आ जाता है। कहने वाले जो कहते हैं उसका तो वे ही जाने, पर जिनको ये दिमागी फितर लगा है वो कबूल करते हैं कि ये इश्क का रूख कब और कैसे लग जाता है पता ही नहीं चलता।

आज शीर्षक गीत कार्यक्रम में बस इतना ही आपको बता दी। जिन फिल्मों के गीतों को आज के कार्यक्रम में आपने सुना वे थे ताल, दिल है के मानता नहीं, जब वी मेट और स्टूडेंट ऑफ द ईयर। आवाजें थी अनुराधा श्रीराम, सुजाता, सोनू निगम, एआर रहमान, अनुराधा पौडवाल, श्रेया घोषाल, सलीम मर्चेंट, नीति मोहन और शेखर राव जीवानी की। गीत लिखा आनंद बख्शी, समीर, इरशाद कामिल और अन्विता दत्त ने और संगीत तैयार किया एआर रहमान, नदीम श्रवण, प्रीतम और विशाल शेखर ने। और श्रोताओं, इसी गीत के साथ ही शीर्षक गीत कार्यक्रम बस यहीं संपन्न हुआ।

शीर्षक गीत कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। FM 102.4 MHz पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र, और इस समय आप सुन रहे हैं हमारी दिवाकालीन सभा के कार्यक्रमों को।

और अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम के कलाकार हैं विदुषी किशोरी अमोनकर, पंडित भीमसेन जोशी और विदुषी प्रभा अत्रे। आज इनसे सुनिए ख्याल गायन, राग है गौड़ सारंग, भीम पलासी और मधुमंती। सबसे पहले सुनिए विदुषी किशोरी अमोनकर का ख्याल गायन, राग है गौड़ सारंग।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे विदुषी किशोरी अमोनकर का ख्याल गायन, राग था गौड़ सारंग। शास्त्रीय संगीत के इसी कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं पंडित भीमसेन जोशी का ख्याल गायन, राग है भीम पलासी।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित भीमसेन जोशी का ख्याल गायन राग था भीम बलासी। शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं विदुषी प्रभा अत्रे का ख्याल गायन राग है मधुमंती।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे विदुषी प्रभा अत्रे का ख्याल गायन, राग था मधुवंती। और इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ।

आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 MHz पर। इस समय दिन का ठीक एक बजने वाला है। कुछ ही पलों में अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा। आप सुनेंगे बारी बारी से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार और ठीक 1:10 पर सुनिएगा आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित प्रादेशिक समाचार। कृपया कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में आज आग लगने से 10 लोगों की मौत हो गई, कई अन्य लोगों को बचा लिया गया है। दिल्ली अग्निशमन सेवा के अनुसार आग बुझाने के लिए 15 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आग की घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि घटना की सूचना मिलते ही दिल्ली अग्निशमन सेवा, दिल्ली पुलिस, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, एम्बुलेंस सेवा और अन्य आपातकालीन एजेंसियों के दल बचाव और राहत कार्य में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि त्वरित कार्यवाही से प्रभावित परिसरों से कई लोगों को बचाने और सुरक्षित निकालने में मदद मिली। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है और प्रभावित परिवारों को सभी

0: राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि देश भर में रहने वाला जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध है और इन्हें आगे बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए।
1: मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि इस कॉन्क्लेव में ट्राइबल डेवलपमेंट से जुड़े संस्थाओं और मानव संसाधन के विकास से लेकर के वित्तीय व्यवस्थाओं तक तथा मॉनिटरिंग से लेकर के स्किल टीम डिलीवरी तक अत्यंत महत्वपूर्ण आयामों पर चर्चा होगी।
0: भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में 2025 तक विश्व का दूसरे सबसे बड़ा और ऊर्जा विकास बाजार बन गया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश की सौर ऊर्जा विकास गाथा वैश्विक मानक स्थापित कर रही है और मजबूत नीतिगत समर्थन, नवाचार और विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के माध्यम से रिकॉर्ड क्षमता वृद्धि को गति दे रही है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिक्स आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। उनके साथ उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। यात्रा के दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। दोनों पक्ष व्यापार, निवेश, ऊर्जा, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल के नेता डीके शिवकुमार को आज शाम बेंगलुरु में मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। राज्यपाल थावरचंद गहलोत लोकभवन में उन्हें 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाएंगे। पूर्व गृह मंत्री डॉ जी परमेश्वर उप मुख्यमंत्री के रूप में तथा लगभग 10 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल की पूर्व सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी में उथल पुथल मची हुई है और वो विभाजन के कगार पर है। टीएमसी से निष्कासित विधायक ऋतुव्रता बनर्जी का दावा है कि उन्हें लगभग 60 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। उनके गुट ने विधानसभा अध्यक्ष रतिन्द्र बोस को पत्र लिखकर खुद को टीएमसी के रूप में मान्यता देने की मांग की है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक आज मुंबई में शुरू हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण अस्थिर वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए आरबीआई ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। नीतिगत निर्णय शुक्रवार को घोषित किया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने बताया है कि लगभग 40,000 छात्रों ने सफलतापूर्वक पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा कर दिए हैं। ये प्रक्रिया बिना किसी समस्या के पूरी कर ली गई है। घरेलू शेयर बाजार में संविधि सूचकांक में आज 0.5% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 558 अंक की गिरावट के साथ 74,092 पर, जबकि निफ्टी 155 अंक फिसल कर 23,329 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय जनजातीय विकास सम्मेलन का उद्घाटन किया। जनजातीय समुदाय को मुख्यधारा से जोड़ने पर दिया जोर। केंद्र सरकार ने सीबीएसई ऑन स्क्रीन मार्किंग विवाद पर की बड़ी कार्रवाई। अध्यक्ष और सचिव का तबादला, जांच समिति गठित। आईआईआरएफ रैंकिंग 2026 में झारखंड के संस्थानों का शानदार प्रदर्शन। निजी प्रबंधन संस्थान में एक्सएलआरआई देश में दूसरे स्थान पर और आईआईएम रांची 18वें स्थान पर रहा। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल के नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई में टला बड़ा हादसा। ऑक्सीजन पाइप फटने पर सांसद मनीष जायसवाल की टीम ने लिया जायजा। और जापान में आयोजित अंडर 18 महिला एशिया कप हॉकी में भारत सेमीफाइनल में, झारखंड के खिलाड़ियों ने भी दिखाया दमखम। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सशक्त बनाने संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में 26 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश भर में रहने वाला जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूप से अत्यंत समृद्ध है और उन्हें विकास के मुख्य

0: धारा से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयास किए जाने चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि विकास की रोशनी अंतिम व्यक्ति और अंतिम गांव तक पहुंचनी चाहिए।
1: पीएम जनमन योजना के तहत जनजाति और समुदाय में भी सबसे पिछड़े समूहों के 20,000 से अधिक गांव तक विकास कार्यक्रम को पहुंचाने का लक्ष्य है। हम सब जानते हैं 75 जो ग्रुप्स वो है पीबीटीजी सबसे पिछड़े, अभी भी और कोई पेड़ के मंच के रहते हैं, उनके कोई जमीन नहीं, जमीन था लेकिन रिकॉर्डेड नहीं, इसलिए उनको जमीन देकर घर बनाना, उनके हर चीज के लिए अधिकारी लोगों को जितने कर्मचारी लोगों का दायित्व तो है।
0: केंद्र सरकार ने सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली से जुड़े विवाद के बाद बड़ी कार्रवाई की है। सरकार ने बोर्ड के अध्यक्ष राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता का तबादला कर दिया है। साथ ही खरीद प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए क्षमता निर्माण आयोग के अध्यक्ष एस राधा चौहान की अध्यक्षता में एक सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया है। समिति एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में तकनीकी खामियों और मूल्यांकन संबंधी शिकायतों के बाद यह कार्रवाई की गई है। पाकुड़ जिले के सदर प्रखंड स्थित झिकरहट्टी पूर्वी पंचायत को महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए महिला हितैषी पंचायत के रूप में राष्ट्रीय पहचान मिली है। लगभग 17,500 की आबादी वाली इस पंचायत में झिकरहट्टी पूर्वी समेत 8 गांव शामिल हैं। ग्रामीणों ने पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र और उच्च विद्यालय की स्थापना की मांग भी की है, ताकि महिलाओं और छात्राओं को बेहतर सुविधाएं मिल सके। उपायुक्त मेधा भारद्वाज ने बताया कि इस पंचायत की तरह ही अन्य पंचायतों को बढ़ाने का काम किया जाएगा।
2: एक रिप्रेजेंटेटिव पंचायत के तौर पे ये उभर के आया है, इसको हम लोग एज एन एग्जांपल यूज करेंगे फ्यूचर में, ताकि हम अन्य पंचायतों को इसी के तर्ज पे महिला सशक्तिकरण और उससे रिलेटेड फिर विकास की दिशा में बढ़ने का कार्य करने के लिए हम लोग इसको एज एन एग्जांपल यूज करेंगे।
0: IIRF रैंकिंग 2026 में झारखंड के कई शिक्षण संस्थानों ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। निजी प्रबंधन संस्थानों में जेवर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट को देश में दूसरा स्थान मिला है, जबकि IIT धनबाद सरकारी इंजीनियरिंग संस्थानों में 11वें स्थान पर रहा। वहीं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रांची को प्रबंधन शिक्षा में 18वां, BIT मेसरा को निजी इंजीनियरिंग संस्थानों में 10वां तथा IIT को अपनी श्रेणी में 18वां स्थान हासिल हुआ। आज विश्व साइकिल दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष विश्व साइकिल दिवस की थीम है हरित भविष्य के लिए साइकिल चलाना। यह दिवस हर वर्ष 3 जून को साइकिल को एक सरल, किफायती, विश्वसनीय और पर्यावरण अनुकूल परिवहन साधन के रूप में बढ़ावा देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल की नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई यानी SNCU में ऑक्सीजन पाइपलाइन से जुड़े जंबो सिलेंडर का पाइप फटने से अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही अस्पताल प्रबंधन सक्रिय हुआ। उपाधीक्षक डॉ. राजकिशोर के निर्देश पर तकनीकी टीम मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त पाइप को बदलकर ऑक्सीजन आपूर्ति बहाल कर दी गई। इस दौरान सांसद मनीष जायसवाल ने भी मामले की जानकारी मिलने पर अपने प्रतिनिधि को अस्पताल भेजा और स्थिति की जानकारी ली। खूंटी जिले में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर 5 जून से सप्ताह भर विशेष जनजागरूकता अभियान चलाया जाएगा। जिला वन पदाधिकारी दिलीप कुमार यादव ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर जिले के विभिन्न गांवों, विद्यालयों, सरकारी संस्थानों और सार्वजनिक स्थलों पर पौधारोपण, स्वच्छता अभियान तथा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
3: इस साप्ताहिक कार्यक्रम में हर वन रक्षक JFMC गांव के मुखिया प्रधान जाके वहां पे बैठक करें और और विश्व पर्यावरण से संबंधित जो बिंदु है उसके बारे में गांव से विचार विमर्श करें और क्या अपेक्षित है वन विभाग से और किस तरह से हम और एनवायरनमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं उस पर एक डिस्कशन है।
0: पाकुड़ के अमरापाड़ा में अवैध रूप से चल रहे निर्माण कार्य के दौरान कई पेड़ों की कटाई की गई। डीएफओ सौरभ चंद्रा ने बताया कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की जा रही है।
4: अमरापाड़ा रेंज में पकलो के पास एक रोड आरयू विभाग द्वारा निर्माण किया जा रहा था, इसकी पूर्वानुमति विभाग द्वारा नहीं प्राप्त की गई है। स्थलीय प्रबंधन के कारण में जो हमारे वहाँ प्रधान वनरक्षी उन्होंने पाया था कि बिना अनुमति के वहाँ पर रोड बनाने के क्रम में कई पेड़ को उखाड़ दिया गया है और वन भूमि का वहाँ पर नष्ट किया गया है।
0: सरायकेला में विश्व प्रसिद्ध छऊ नृत्य के जनक कुमार विजय प्रताप सिंह की 130वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर कलाकारों और गणमान्य लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वक्ताओं ने छऊ नृत्य को वैश्विक पहचान दिलाने में उनके योगदान को याद किया तथा इस सांस्कृतिक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का संकल्प लिया। जापान में चल रहे अंडर 18 महिला एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने सिंगापुर को 25-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारतीय टीम ने लीग चरण में अपने पूल में शीर्ष स्थान हासिल किया। झारखंड की संदीपा कुमारी, पुष्पा मांझी और श्रुति कुमारी ने भी एक एक गोल कर टीम की जीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हॉकी झारखंड और राज्य खेल विभाग ने भारतीय टीम तथा राज्य के खिलाड़ियों को बधाई देते हुए सेमीफाइनल मुकाबले के लिए शुभकामनाएं दी हैं। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। जमशेदपुर स्थित टाटानगर स्टेशन पर वेंडरों और निजी एजेंसियों के कर्मचारियों को क्यूआर कोड आधारित डिजिटल पहचान पत्र जारी किए गए हैं। इसके साथ ही टाटानगर इस व्यवस्था को लागू करने वाला दक्षिण पूर्व रेलवे का पहला स्टेशन बन गया है। देवघर में आयोजित जनता दरबार में मदद की गुहार लेकर पहुंचे दिव्यांग भवेश को उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया ने मौके पर ही ट्राई साइकिल उपलब्ध कराई। देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ मंदिर परिसर के 18 दानपात्र खोले गए। गिनती के बाद दानपात्रों से कुल करीब 26 लाख रुपए प्राप्त हुए। मंदिर प्रशासन के अनुसार यह राशि मंदिर के विकास और श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर खर्च की जाएगी। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय जनजातीय विकास सम्मेलन का उद्घाटन किया। जनजातीय समुदाय को मुख्यधारा से जोड़ने पर दिया जोर। केंद्र सरकार ने सीबीएसई ऑन स्क्रीन मार्किंग विवाद पर की बड़ी कार्रवाई। अध्यक्ष और सचिव का तबादला, जांच समिति गठित। IIRF रैंकिंग 2026 में झारखंड के संस्थानों का शानदार प्रदर्शन। निजी प्रबंधन संस्थान में XLRI देश में दूसरे स्थान पर और IIM रांची 18वें स्थान पर रहा। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल के नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई में टला बड़ा हादसा। ऑक्सीजन पाइप फटने पर सांसद मनीष जायसवाल की टीम ने लिया जायजा। और जापान में आयोजित अंडर 18 महिला एशिया कप हॉकी में भारत सेमीफाइनल में, झारखंड के खिलाड़ियों ने भी दिखाया दमखम। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

आकाशवाणी दिल्ली और आकाशवाणी रांची से प्रसारित समाचार अभी आपने सुनी। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 1:21 हो रहे हैं और अब आप इस समय हैं हमारे दिवाकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ। हमारा अगला कार्यक्रम फिल्म संगीत सुनिएगा बस थोड़ी ही देर में।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है एक...

0: के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
1: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज्ड नमक।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700014242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
4: नमस्कार जमशेदपुर। नमस्कार जमशेदपुर का एक अलग अंदाज,
5: ज्ञान विज्ञान
6: इतिहास के पन्नों से,
5: सेहत और बॉलीवुड की बातें,
6: मौसम का मिजाज,
5: अपने शहर की खबरें,
6: बातों मुलाकातों के साथ
4: सुरीला मनोरंजन
5: और भी बहुत कुछ।
4: आप सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में दिन के 11:05 से 12 बजे तक
6: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।
4: नमस्कार जमशेदपुर।

आकाशवाणी जमशेदपुर से आप प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत, स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत मोहित चौहान के गाए इस गीत के साथ, गीत लिखा प्रसून जोशी ने और संगीत तैयार किया है AR रहमान ने और फिल्म का नाम है डेली सिक्स।

आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से फिल्म संगीत का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे हैं और अब अगला गाना हैप्पी न्यू ईयर फिल्म से हम आपको सुनवा रहे हैं। अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाजें हैं। इरशाद कामिल है गीतकार, संगीतकार हैं विशाल शेखर।

FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र और इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। और अब इस कार्यक्रम के लिए वक्त हो चला है छोटे से अंतराल का, अभी हाजिर होते हैं।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: हेलो डॉक्टर,
4: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम।
3: हेलो डॉक्टर,
4: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-296-0445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-296-0445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
3: हेलो डॉक्टर।

सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश, हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फ़ोन नंबर है 06572960445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें।

0: Akashwadi at 90.
1: जलवायु और पानी के भीतर जीवन, यह यूनेस्को का संदेश है। महासागर पृथ्वी की जलवायु को नियंत्रित करते हैं, लेकिन आज वो गर्मी, अम्लीकरण और प्रदूषण जैसे बड़े संकटों का सामना कर रहे हैं। कोरल रीफ, मैनग्रोव और समुद्री घास जैसे महत्वपूर्ण पर्यावरण तेजी से नष्ट हो रहे हैं, लेकिन महासागर, हवा और लहरों से स्वच्छ ऊर्जा, स्वस्थ मछली पकड़ने के जरिए और समुद्री जीवन के लिए संरक्षित क्षेत्र देकर जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद भी करते हैं। इसलिए जलवायु को स्थिर और पर्यावरण को स्वस्थ बनाए रखने के लिए महासागर की रक्षा करना बहुत जरूरी है। क्या आप जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ ने कुछ ही दशकों में लगभग 50% कोरल खो दिए हैं।

अंतराल हुआ पूरा और अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम फिल्म संगीत में। कार्यक्रम का अगला गाना सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में हम आपको सुनवा रहे हैं। सिद्धार्थ गरिमा ने गीत लिखा है और धुन बनाई है विक्की प्रसाद ने और फिल्म का नाम है टॉयलेट एक प्रेम कथा।

बॉस फिल्म का ये गाना था निखिल डिसूजा और नीति मोहन की आवाज़ों में। गीत लिखा था मनोज यादव ने और धुन बनाई थी चिरंतन भट्ट ने। और श्रोताओं, इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ।

ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय दोपहर के ठीक 2 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा। आप सुनेंगे दोपहर समाचार बुलेटिन अंग्रेजी और हिंदी में। बारी बारी से कृपया कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: sales, the Reserve Bank of India today said there has been no change in its physical gold stock, which remains steady at 880.52 tons. The clarification comes after reports suggested that the central bank may have sold gold worth approximately $12 billion to shield its foreign exchange reserves from the impact of the ongoing conflict in West Asia. The United Nations Weather Agency has warned that a moderate to possibly strong El Nino is likely to develop in the coming months, raising concerns over higher global temperatures and more extreme weather events. According to the World Meteorological Organization, warming sea surface temperatures in the central and eastern Pacific Ocean are driving the phenomenon. The agency has forecast above average temperatures across most parts of the world from June to August and said El Nino conditions are likely to persist until November. The IMD has forecast hot and humid weather over parts of the northeastern region and Odisha, Konkan, Goa and sub-Himalayan West Bengal today. The Met Department has also predicted thunder squall conditions over Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, Jammu and Kashmir, Madhya Pradesh, Odisha, Rajasthan and Telangana for today. In Indonesia Open Badminton, H.S. Pranoy will face Ireland's Nat Nguyen and Ayush Shetty will meet China's Wang Hongyang in the men's singles this afternoon. In men's doubles, pair of Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty suffered a setback after losing to Malaysia Khai Shing Kang and Aaron Thai by 6-11 in their match today. Benchmark domestic equity indices were trading over 0.5% lower in the afternoon trade today amid geopolitical jitters. The Sensex lost 524 points to 74,125, while the Nifty fell 147 points to 23,336 when reports last came in. And now before we end the bulletin, the headlines once again. 21 people killed in a massive fire at a hotel in Delhi's Malviya Nagar. Prime Minister Narendra Modi expresses grief, announces an ex gratia of 2 lakh rupees to next of kin of each deceased. Trinamool Congress faces turmoil as expelled MLA Ritabrata Banerjee claims support of nearly 60 MLAs in West Bengal Assembly. Supreme Court forms high-powered expert panel to re-examine Aravali definition. Senior Congress leader D.K. Shivkumar to be sworn in as Chief Minister of Karnataka this afternoon. India becomes world's second largest solar growth market, surpasses USA in annual solar capacity additions. And with that, we end the midday news.
1: Namaskar. Akashwani se dopahar samachar ke saath, main Lavleen Nigam. दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया. प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए के अनुग्रह राशि देने की घोषणा. पश्चिम बंगाल विधानसभा से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बनर्जी के लगभग 60 विधायकों के समर्थन का दावा करने के बाद तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल मची. सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला के परिभाषा के पुनर्विचार के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार अब से कुछ देर में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे. भारत सौर ऊर्जा विकास के मामले में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बाजार बना. वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में अमेरिका को पीछे छोड़ा. और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में एचएस प्रणय और आयुष शेट्टी आज पुरुष सिंगल्स मैच खेलेंगे. अब समाचार विस्तार से. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हो गई है. दक्षिण दिल्ली के पुलिस उपायुक्त अनंत मित्तल ने बताया कि 8 दमकल कर्मियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है. एक रिपोर्ट.
2: दिल्ली के मालवीय नगर में आज सुबह करीब 9 बजे एक होटल में भीषण आग लग गई. इसके बाद दिल्ली दमकल विभाग, दिल्ली पुलिस, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, कैट एम्बुलेंस सेवा और अन्य आपातकालीन एजेंसियों की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया. दिल्ली पुलिस के अनुसार अब तक 40 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकालकर इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में भेजा गया है. 8 दमकल की गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है. हालांकि बचाव और तलाश अभियान अभी भी जारी है और सभी संबंधित एजेंसियां मौके पर तैनात हैं. आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है. इस संबंध में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है. दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली.
1: दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा है कि लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
3: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिया में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा, एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग की घटना में हुई जानमाल के हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि अधिकारी पीड़ित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और गृहमंत्री अमित शाह ने इस घटना पर शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह घटना बहुत दुखद है। उपराष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों को इस दुख की घड़ी में शक्ति और साहस प्रदान करने की भी कामना की। गृहमंत्री ने बताया कि स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि घायलों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है और प्रभावित परिवारों को सभी आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि देश भर में रहने वाला जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है और इन्हें आगे बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि देश के प्रत्येक गाँव और व्यक्ति तक विकास पहुँचना चाहिए।
4: जनजातीय समुदाय के अनेक गाँव और बस्तियां दूर दराज के क्षेत्र में जंगलों और पहाड़ों तले इलाके में होते हैं। ऐसे इलाकों को विकास की मुख्य धारा से पूरी तरह जोड़ना आपका कर्तव्य है। अंतिम गांव और अंतिम बस्ती के अंतिम घर तक विकास कार्यक्रम को पहुंचाना आपका उत्तरदायित्व है।
1: सूचना प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने मिजोरम में जनता से राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया में विकसित भारत पहल के तहत 2047 तक एक विकसित भारत के लक्ष्य को सरकार साकार करने में योगदान करने का आह्वान किया है। राज्य के कोलाबिस जिले में सरकारी अधिकारियों के साथ बातचीत के दौरान श्री मुरुगन ने कहा कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को उच्च प्राथमिकता दे रही है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल के बीच राजनीतिक घटनाक्रम तेज हो गया है। तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बनर्जी ने राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता पद पर दावा करते हुए 58 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। विधानसभा सूत्रों के अनुसार 58 विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र अध्यक्ष रथिंद्र बोस को सौंपा गया है, जिसमें बनर्जी के गुट को वास्तविक तृणमूल कांग्रेस के रूप में मान्यता देने की मांग की गई है। इस गुट ने मुर्शिदाबाद के रघुनाथगंज से विधायक अखरुजमान को मुख्य सचेतक नामित किया है। एंटाली से संदीपन साहा और कस्बा से जावेद खान को उपनेता के रूप में प्रस्तावित किया गया है। पश्चिम बंगाल की सामाजिक सुरक्षा योजना अन्नपूर्णा योजना का आज औपचारिक रूप से शुभारंभ किया गया। शहरी विकास, महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने नबन्ना में इसका उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। पहले चरण में लाभार्थियों को आज से उनके बैंक खातों में 3,000 रुपए मिलने शुरू हो जाएंगे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य प्रशासन के अधिकारियों के अथक प्रयासों से ही योजना का संचालन तुरंत शुरू संभव हो पाया है। पश्चिम बंगाल में मॉनसून से पहले चलाए जा रहे नियमित सफाई अभियान के दौरान कल शाम कोलकाता के सुरेंद्रनाथ कॉलेज में नोटों के बंडल बरामद किए गए। एक बंद कमरे में 2 पुराने सूटकेसों में रखे गए ये नोट पूरी तरह क्षतिग्रस्त अवस्था में मिले। भाजपा विधायक सजल घोष ने आरोप लगाया है कि ये कमरा एक स्थानीय तृणमूल कांग्रेस नेता ने बनवाया था, जिसका इस्तेमाल वो अपनी अवैध गतिविधियों को अंजाम देने के लिए करता था। हालांकि पार्टी सदस्यों ने इन दावों को निराधार बताया है। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल के नेता डीके शिवकुमार को आज शाम बेंगलुरु में मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। राज्यपाल थावरचंद गहलोत लोकभवन में उन्हें 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाएंगे। पूर्व गृह मंत्री डॉ जी परमेश्वर उप मुख्यमंत्री के रूप में तथा 12 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला, मजदूर, लेखक, अभिनेता, प्रमुख व्यवसायी तथा उद्योगपति शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा के पुनर्विचार और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। समिति इस बात की जांच करेगी कि क्या अरावली पहाड़ियों की पहचान के लिए प्रस्तावित मानदंड पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को काफी हद तक कम कर सकते हैं और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में खनन या अन्य गतिविधियों की अनुमति दे सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के लेख को साझा किया है, जिसमें लद्दाख में खुल रहे नए अवसरों पर प्रकाश डाला गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि लद्दाख में पाई जाने वाली ये खास बेरी नवोन्मेष और अवसरों की कहानी लिख रही है। उन्होंने कहा कि ये लेख बताता है कि कैसे उद्यमिता और मूल्यवर्धन लद्दाख में समृद्धि के नए द्वार खोल रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में 2025 तक विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बन गया है। भारत ने सौर ऊर्जा के स्थापित क्षमता में उल्लेखनीय 155 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। इससे देश के 50% गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता लक्ष्य को प्राप्त करने और राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को समय से पहले पूरा करने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना जैसे प्रमुख पहल लोगों के जीवन में बदलाव ला रही है। घरों पर लगे सौर पैनल से 40 लाख से अधिक परिवारों को बिजली मिल रही है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश की सौर ऊर्जा विकास गाथा वैश्विक मानक स्थापित कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में नेपाल के राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि नेपाल भारत की पड़ोसी पहली नीति के अंतर्गत एक प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि भारत दोनों देशों के बीच विशेष और बहुआयामी संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए नई सरकार के साथ सहयोग करने के लिए उत्सुक है। ईरान ने कल बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। ईरान के एक सैन्य ठिकाने पर अमरीकी सेना के हमले के बाद हुए इस घटनाक्रम से तनाव और बढ़ गया है। इससे क्षेत्रीय स्तर पर संघर्ष विराम को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। एक रिपोर्ट।
5: अमरीकी केंद्रीय कमान के अनुसार अमरीकी सेना द्वारा ईरानी बंदरगाहों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे एक तेल टैंकर को निष्क्रिय करने के बाद यह तनाव शुरू हुआ है। अमरीकी अधिकारियों ने बताया कि हेलफायर मिसाइल ने जहाज के इंजन पर हमला किया। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा कि अमरीका ने केशम द्वीप के दक्षिण में स्थित उनके एक संचार केंद्र को निशाना बनाया था। जवाब में ईरान ने बहरीन में अमरीकी नौसेना के 5वें बेड़े के मुख्यालय और कुवैत में एक सैन्य हवाई अड्डे पर मिसाइल और ड्रोन दागे। हालिया तनाव बढ़ने के बावजूद अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ संपर्क जारी है और कूटनीति के विफल होने की खबरों को खारिज कर दिया। हालांकि मसौदा समझौते पर बातचीत अभी भी अधूरी है, क्योंकि दोनों पक्षों के नेतृत्व ने अभी तक प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमन यादव।
1: भारतीय रिजर्व बैंक RBI की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक आज मुंबई में शुरू हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण अस्थिर वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए RBI ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। नीतिगत निर्णय शुक्रवार को घोषित किया जाएगा। सरकार ने उस अंतर्राष्ट्रीय समाचार रिपोर्ट का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने लगभग 12 अरब अमरीकी डॉलर मूल्य का सोना बेचा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि समाचार एजेंसी का यह दावा फर्जी है। पंजाब की मुख्य चुनाव अधिकारी अनिंदिता मित्रा ने सूचित किया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत मतदाताओं की पूर्व मैपिंग प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए राज्य भर के सभी मतदान केंद्रों पर 7 जून को विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। अब तक राज्य में 90% से निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले 84.62% पूर्व SIR मैपिंग हो चुकी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि लगभग 40,000 छात्रों ने सफलतापूर्वक पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा कर दिए हैं। ये प्रक्रिया बिना किसी समस्या के पूरी कर ली गई है। आज विश्व साइकिल दिवस है। इस साल का विषय है हरित भविष्य के लिए साइकिल चलाना। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं से साइकिल चलाने और एक स्वस्थ तंदुरुस्त और हरित राष्ट्र के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने का आग्रह किया है। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर एक वीडियो संदेश साझा करते हुए उन्होंने ये बात कही।
6: साइकिलिंग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। साइकिलिंग केवल एक व्यायाम या एक दिन की हॉबी नहीं बल्कि स्वस्थ और सशक्त जीवन शैली की पहचान है। यह हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण को सुरक्षित रखने का सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ माध्यम है। जितना अधिक हम साइकिल का उपयोग करेंगे उतना ही प्रदूषण कम होगा और पेट्रोल डीजल की बचत के माध्यम से देश को भी लाभ मिलेगा।
1: इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आज पुरुष सिंगल्स में HS प्रणय आयरलैंड के नहन ग्वेन से और आयुष शेट्टी चीन के वेन होंगयांग से मुकाबला करेंगे। लक्ष्य सेन पहले ही दौर में हारकर बाहर हो गए हैं। महिला सिंगल्स में PV सिंधु ने थाईलैंड की बुसानन ओमबाम रुंगफान को हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। पुरुष डबल्स में भारत के सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को आज मलेशिया के खाई शिंग कांग और आरोय ताई ने 6-11 से हार का सामना करना पड़ा। वहीं महिला सिंगल्स में आज उन्नति हुडा का सामना जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा से होगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों ओडिशा, कोंकण, गोवा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान है। आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आंधी आ सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया। प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए के अनुग्रह राशि देने की घोषणा। पश्चिम बंगाल विधानसभा से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बनर्जी के लगभग 58 विधायकों के समर्थन का दावा करने के बाद तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल मची। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा के पुनर्विचार के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता DK शिवकुमार अब से कुछ देर में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में HS प्रणय और आयुष शेट्टी आज पुरुष सिंगल्स मैच खेलेंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित दोपहर समाचार बुलेटिन अंग्रेजी और हिंदी में बारी बारी से अभी आपने सुनी। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 2:30 बजे हैं और आप इस समय सुन रहे हैं हमारी दिवाकालीन सभा के कार्यक्रमों को। हमारा अगला कार्यक्रम फिल्म संगीत सुनिएगा बस थोड़ी ही देर में।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

ये था कार्यक्रम फिल्म संगीत का पहला गाना जिसे हमने लिया टूटे खिलौने फिल्म से। यशदास की आवाज़ थी, कैफी आज़मी ने गीत लिखा और धुन बनाई बप्पी लाहिरी ने।

कर्ज फिल्म का ये गाना था लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में। आनंद बख्शी थे गीतकार और संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। और अब अगला गाना लता मंगेशकर की आवाज़ में हम आपको सुनवा रहे हैं। कफील आज़र ने गीत लिखा है और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, और फिल्म का नाम है कर्तव्या।

कामचोर फिल्म का ये गाना था लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में। इंदिवर ने गीत लिखा और धुन बनाई राजेश रोशन ने। और श्रोताओं, इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ।

आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय दोपहर की ठीक 2:55 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में अगला प्रसारण आकाशवाणी के रांची केंद्र से होगा। आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। कृपया कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली में भोजपुरी, मगही, मैथिली और अंगिका को शामिल करने के भाषा विवाद पर गठित उच्च स्तरीय समिति की आज तीसरी महत्वपूर्ण बैठक होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर हाल ही में विस्तारित की गई इस 7 सदस्यीय कमेटी में 2 नए मंत्रियों शिल्पी नेहा तिर्की और हफिजुल हसन को शामिल किया गया है। इससे पहले हुई 2 बैठकें बेनतीजा रहने के बाद आज होने वाली इस बैठक में सभी वर्गों के भाषाई और सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखकर कोई ठोस फैसला लिए जाने की उम्मीद है। रांची की विशेष पीएमएलए अदालत 8 जून को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज पिटीशन पर अपना फैसला सुनाएगी। 8.86 एकड़ जमीन फर्जीवाड़ा में जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया है। मुख्यमंत्री ने खुद को निर्दोष बताते हुए आरोप मुक्त करने की याचिका दायर की है, जबकि प्रवर्तन निदेशालय इस मामले में करीब 1.5 दर्जन लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। मामले में अब आरोपियों पर आरोप तय होने हैं। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर पूर्वी सिंहभूम के युवाओं में भारी उत्साह है। युवाओं का मानना है कि मोदी सरकार का यह कार्यकाल देश के विकास और युवाओं के सशक्तिकरण के लिए मील का पत्थर साबित हुआ है। स्थानीय युवा राम शांडिल्य के अनुसार स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और मुद्रा लोन जैसी योजनाओं ने करोड़ों युवाओं को आत्मनिर्भर और स्वरोजगार से जोड़कर उनमें नया आत्मविश्वास जगाया है।
1: मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज तेजी से आगे बढ़ रहा है। जिस तरह से युवाओं के लिए नए नए योजनाओं से स्किल इंडिया और मुद्रा लोन जैसे योजनाओं से लोगों को आगे बढ़ने का एक रास्ता खुल रहा है, जिससे हमारा देश और तेजी से आगे बढ़ेगा और

0: विकसित भारत का जो मिशन है वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है।
1: दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में आग लगने से हुए दर्दनाक हादसे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने इस घटना पर दुख जताते हुए दिवंगतों की आत्मा की शांति के लिए मरांगबुरु से प्रार्थना की। उन्होंने शोकाकुल परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की है और हादसे में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। कोडरमा के झुमरी तिलैया नगर परिषद कार्यालय में समय पर न आने वाले कर्मचारियों पर बड़ा एक्शन हुआ है। अध्यक्ष रमेश हर्षधर ने लेट लतीफ कर्मियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया। देर से पहुंचे कर्मचारियों को अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली। अध्यक्ष ने कहा कि 2 महीने से मिल रही लापरवाही की शिकायतों के बाद आम जनता के काम बाधित होने से रोकने के लिए यह सख्त कदम उठाया गया है।
2: 2 महीना से देखा जा रहा है कि भाई समय पर ऑफिस में कोई आते नहीं, कार्य बाधित हो रहा है। कई बार लिखित में इन लोगों को चेतावनी दिया गया, मुकुट में भी आदेश जारी किया गया, इनके बावजूद भी ये लोग पर किसी तरह का कोई काम पे जू नहीं देगा कि भाई समय से जाए समय से। तो आज हम अरीज आके देखे तो लोग 12:30 बजे आते हैं, 1 बजे आते हैं, 1:30 बजे आते हैं। तो ऑफिस का जो गरिमा है वो धूमिल हो रहा था। तो आज हम ताला बंद कर दें, जो बाहर है वो बाहर रहेंगे।
1: रांची में असामाजिक तत्वों के खिलाफ जिला प्रशासन ने अभियान तेज कर दिया है। उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री के निर्देश पर एसडीओ कुमार रजत के नेतृत्व में अरगोड़ा और हरमू क्षेत्रों में देर रात सघन जांच चलाई गई। सार्वजनिक स्थलों पर नशापान और अड्डाबाजी करने वालों को सख्त चेतावनी दी गई। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शांति व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। गिरिडीह के मधुबन थाना क्षेत्र में कल रात अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियार से पति पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। दलांचल खरी गांव में सोते समय हुए इस हमले में पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घायल पत्नी परनी देवी ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घटना के समय पास सो रही 1.5 वर्षीय बच्ची सुरक्षित है। एसडीपीओ आवेद खान ने बताया कि पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। रांची में झारखंड महिला टी20 लीग का रंगारंग आगाज हो गया है। उद्घाटन मैच में कोल्हान डायनेमोज ने छोटा नागपुर ब्लास्टर्स को 8 विकेट से हरा दिया। छोटा नागपुर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 107 रन बनाए, जिसके जवाब में कोल्हान ने दुर्गा मुर्मू के नाबाद 56 रनों की बदौलत लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा।

आकाशवाणी रांची से प्रसारित प्रादेशिक समाचार अभी आपने सुने। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 MHz पर। दिन के 3 बजे हैं और अब प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले सुविचार, जिसे हमें भेजा है अकोला महाराष्ट्र राधेनगर से राजेश पी कारिया जी ने। लिखते हैं,
2: गलत लोग आपकी अच्छाई से भी नफरत करते हैं और सही लोग आप में बुराई जानकर भी आपसे प्यार करते हैं, और यही मानव संबंध की विडंबना है।
0: बहुत सुंदर संदेश राजेश पी कारिया जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू का।
2: महाराष्ट्र से प्रशांत रमेश पाटिल।
0: और धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी का।
2: कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर।

0: देते हैं तो श्रोताओं, आपको हम बताना चाहते हैं कि अंटार्कटिक का शीत मरुस्थल क्षेत्रफल की दृष्टि से पृथ्वी का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है
1: जी।
0: लेकिन यदि एशिया महादेश की बात करें तो यहाँ का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है गोबी। इसका क्षेत्रफल है 13 लाख वर्ग किलोमीटर। विमलेश जी, अब आपकी बारी।
1: जी श्रोताओं, ये मरुस्थल मुख्य रूप से मंगोलिया और चीन के उत्तरी भाग में फैला हुआ है। स्थानीय भाषा में गोबी को गोब कहते हैं, जिसका अर्थ है निर्जल स्थान। एक बात और आपको बता दें कि ये रेत का नहीं लेकिन पत्थरों का मरुस्थल है, क्योंकि इसका अधिकांश भाग चट्टानी और पथरीला है। केवल 5% भाग ही रेतीला है।
0: तो श्रोताओं, अब बात करते हैं इस मरुस्थल के तापमान की। जहाँ तक तापमान का प्रश्न है, यहाँ तापमान बहुत कम होता है
1: जी।
0: सर्दियों में ये -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, जबकि गर्मी के मौसम में यहाँ का तापमान 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुँच जाता है।
1: यानी एक ही मरुस्थल में कड़कती ठंड भी और झुलसाने वाली गर्मी भी
0: जी।
1: लेकिन इसे शीत मरुस्थल इसलिए कहा जाता है कि यहाँ अधिकांश समय सर्दियों का ही होता है। अजी जी, एक बड़ी विशेष घटना हुई है जिसके कारण गोबी का मरुस्थल बहुत प्रसिद्ध हुआ है। क्या थी वो घटना?
0: विमलेश जी, वो घटना थी जब वैज्ञानिकों को इस क्षेत्र में डायनासोर के अंडे और जीवाश्म मिले
1: जी।
0: यहाँ और भी कई दुर्लभ प्राणियों के जीवाश्म मिले हैं, जिसके कारण वैज्ञानिकों और संचार माध्यमों ने इसे प्राचीन जीव जगत के खजाने की संज्ञा दी है।
1: अजीत जी, अब श्रोताओं को जरा यहाँ रहने वाले लोगों की जानकारी दे दें।
0: जी हाँ, जरूर।
1: श्रोताओं, गोबी मरुस्थल में रहने वाले अधिकांश लोग आज भी घुमंतू जीवन यानी नोमेडिक लाइफ जीते हैं। मंगोल परिवारों का पारंपरिक घर गोलाकार का होता है, जिन्हें यर्ट कहते हैं। इन घरों की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये आसानी से खोले और दूसरी जगहों पर ले जाए जा सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग यहाँ मौसम को देखते हुए जगह बदलते हैं। वैसे गोबी मरुस्थल के बाहरी इलाकों में आधुनिक शहर भी हैं।
0: तो श्रोताओ, आपको ये भी बता दें कि आज के आधुनिक वाहन यहाँ बहुत कम मिलते हैं। यहाँ के ऊंट 2 कुबड़ वाले होते हैं
1: जी।
0: जो अत्यधिक ठंड और गर्मी दोनों सह सकते हैं। एक बात और आपको बता दें कि ठंड के समय ये ऊंट बर्फ खाकर अपनी पानी की जरूरत को पूरा करते हैं
1: जी।
0: घुड़सवारी यहाँ के प्रतिदिन के लोक जीवन का हिस्सा है और घुड़दौड़ है यहाँ का प्रिय खेल और मनोरंजन का माध्यम
1: जी। अजीत जी, क्योंकि उमंग रेडियो कार्यक्रम है तो ये बताना तो बहुत ही प्रासंगिक होगा कि गोबी मरुस्थल के दूर दराज के इलाकों में भी आज भी टेलीविजन की पहुंच बहुत कम या नहीं के बराबर है
0: जी।
1: यहाँ लोग रेडियो सुनकर ही मौसम का हाल जानते हैं, समाचार सुनते हैं और मनोरंजन भी करते हैं। अब आधुनिकता के दौर में पर्यटन बढ़ गया है, सैलानी देश विदेश से आते हैं और यहाँ के घुमंतू परिवारों के साथ होम स्टे करते हैं।
0: श्रोताओं, यहाँ की दिनचर्या भी बहुत मजेदार और गतिविधियों से भरी हुई है। सुबह उठकर दूध दुहना महिलाओं का काम है, जबकि पुरुष मवेशी चराने का काम करते हैं
1: जी।
0: दिन भर की मेहनत के बाद शाम को पूरा परिवार एक साथ भोजन करता है और कहानियों और गीतों के द्वारा मनोरंजन करता है। ये गाते हैं, बजाते हैं।
1: बजाने के लिए इनके खास वाद्य यंत्र हैं, जैसे मोरिन खोर।
0: ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है?
1: ये 2 तारों वाला वाद्य यंत्र है। एक और बहुत लोकप्रिय वाद्य यंत्र है लिम्बे, ये बांसुरी जैसा वायु वाद्य यंत्र है। एक रोचक बात यह है कि यहाँ लोग अपने संगीत को ऊंट, घोड़े और प्रकृति से जोड़ते हैं। कई धुनें यहाँ ऐसी होती हैं जो जानवरों को बुलाने और शांत करने के लिए बनाई गई हैं।
0: बहुत सुंदर जानकारी विमलेश जी। सचमुच गोबी का शीत मरुस्थल जीवन की कठिनाइयों और उसे सुंदर ढंग से जीने का अनूठा उदाहरण है।
1: तो श्रोताओ, ये थी रोचक जानकारी गोबी के शीत मरुस्थल की।
0: अब आज का प्रश्न सुनिए आज की ही जानकारी से। आज का प्रश्न है, गोबी मरुस्थल के उन घरों को क्या कहते हैं जो खोलकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाए जा सकते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: गोबी मरुस्थल के उन घरों को क्या कहते हैं जो खोलकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाए जा सकते हैं।
0: श्रोताओं, आप प्रश्नों के उत्तर और संदेश हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर या हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं
1: जी।
0: हमें आपके संदेशों का इंतजार रहेगा।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें। और हाँ, NCERT की पाठ्य पुस्तकों की ध्वनि पुस्तकें यानी ऑडियो बुक्स आप दीक्षा या NCERT ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर सुन सकते हैं।
0: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा आज का पहला कार्यक्रम है दोस्त की पहचान।
1: कक्षा 4 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस लोक कथा में बताया गया है कि एक सच्चे मित्र की पहचान कैसे की जाती है। संदेश दिया गया है कि सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति के समय काम आए।
2: एक जंगल से दो दोस्त गुजर रहे थे।

0: कितने बड़े बड़े पेड़ हैं यहाँ तो।
1: हाँ, बहुत बड़े पेड़ हैं।
0: अरे देखो देखो, कितने अच्छे पक्षी हैं यहाँ पर। अरे वो देखो चिड़िया।
1: अरे वो देखो बंदर। ओ, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है।
0: मुझे तो थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है।
1: हाँ, ये तो सही कह रहे हो। अरे कोई जानवर आ गया तो क्या करेंगे हम?
0: क्या करेंगे? देखेंगे, जब जानवर आएगा तब।
2: अचानक
1: ये तो रीछ की आवाज है। अरे अरे, मुझे तो लगता है रीछ आ रहा है। ओ, अब हम अपनी जान कैसे बचाएंगे?
0: क्या करे क्या करे, जल्दी सोचो क्या करे।
1: मुझे तो बहुत डर लग रहा है।
0: अरे मुझे तो पेड़ पर चढ़ना आता है।
2: रीछ को देखकर उनमें से एक दोस्त झट से दरख्त पर चढ़ गया।
0: ओ, ऐसा करता हूँ, पेड़ पर चढ़ जाता हूँ।
2: और दरख्त की टहनियों में छुपकर बैठ गया। दूसरा दोस्त नीचे अकेला रह गया।
1: ओ, अब मैं क्या करूं?
2: जब उसको कुछ नहीं सूझा,
1: मैं ऐसा करता हूँ, जमीन पर गिर जाता हूँ और अपनी सांस रोक लेता हूँ, तभी जान बचेगी।
2: तो वो सांस रोककर चुपचाप जमीन पर लेट गया। रीछ उसके करीब आया, उसने उसे सूंघा।
1: ये रीछ तो मुझे सूंघ गया। मैं ऐसा करता हूँ, सांस रोक के इधर रहता हूँ, तभी जान बच पाएगी।
2: और मुर्दा समझकर छोड़ दिया।
1: बच गए। लगता है रीछ चला गया।
2: रीछ जब चला गया तो दूसरा दोस्त,
0: अरे रीछ तो चला गया, अब मैं पेड़ से नीचे उतर सकता हूँ।
2: और अपने साथी से जाकर पूछा,
0: एक बात तो बताओ, रीछ ने तुम्हारे कान में क्या कहा?
2: पहले दोस्त ने जवाब दिया,
1: मेरे कान में कहा, ऐसे दोस्त से दोस्ती मत करो जो मुसीबत के समय काम ना आए और तुम्हारा साथ छोड़ दे।
2: पंचतंत्र की कहानी मश्क। सोचिए और बताइए,
3: महफूज तरीके से जंगली जानवरों को कैसे देखा जा सकता है? जंगलों में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, उनकी फेहरिस्त बनाइए। अगर आप उन दोस्तों में होते तो दोस्त की मदद कैसे करते? दोस्त की पहचान। अभी आप सुन रहे थे ये प्रोग्राम, अकादमिक समन्वय डॉक्टर रिजवानुल हक, रिकॉर्डिंग मंजू कुमारी, फनकार फरहान अली नकवी, बाल कलाकार सोहम और वान्या, हिदायतकार विमलेश चौधरी, पेशकश कुसुमलता। ये प्रोग्राम CIET NCERT नई दिल्ली भारत के जरिए पेश किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम दोस्त की पहचान।

0: जादुई पिटारा, है ना मजेदार साथियों? जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और आइए सुनते हैं कार्यक्रम गौरा देवी।
2: इस कार्यक्रम में एक सुंदर नाट्य प्रस्तुति के द्वारा चिपको आंदोलन की जानी मानी नायिका गौरा देवी के जीवन और उनके द्वारा प्रारंभ किए गए प्रसिद्ध चिपको आंदोलन की जानकारी दी गई है।
3: भारत के सबसे रमणीक राज्यों में से एक है उत्तराखंड। इसी उत्तराखंड के चमोली जिले में एक गांव है लाटा। ये गांव विशेषकर बड़े बड़े पेड़ों के कारण जाना जाता है।
4: लाटा गांव के ग्रामीण खेती बाड़ी और पशुपालन द्वारा अपनी जीविका चलाते थे। दिन भर खेतों और जंगलों में काम करने के बाद जब ग्रामीण शाम को घर आते तो उनके नृत्य और लोक संगीत से सारी घाटी गूंज जाती।
3: इसी गांव में सन 1925 में एक प्यारी सी बालिका ने जन्म लिया। नाम रखा गया गौरा। गौरा का बचपन से ही पेड़ पौधों के प्रति बहुत लगाव था। यदि गांव के बच्चे किसी भी प्रकार से फूल पत्तियों और पौधों को कष्ट पहुंचाते तो वो उन्हें मना करती और उन्हें समझाती भी।
5: मारो, मारो, ठीक से निशाना लगाओ।
6: अरे
5: नहीं लगा ना, लाओ लाओ, रुको रुको रुको। अरे मैं,
6: तुम लोग इस पेड़ पर पत्थर फेंक रहे हो। अभी तो फल भी नहीं लगे। गोविंद, तुम तो सबसे बड़े हो, इनको क्यों नहीं समझाते?
5: अरे पत्थर फेंका है तो क्या हो गया, पेड़ ही तो है ना। देखो
6: मैंने मना किया है ना कि पेड़ पौधों को पत्थर मत मारो, उन्हें चोट लगती है।
7: तुम हमें इस तरह रोका टोका मत करो।
6: मैं तो टोकूंगी और बार बार रोकूंगी।
5: बड़ी आई रोकने वाली। हाँ, वही करेंगे।
3: तो साथियों, ये था गौरा का पेड़ पौधों के प्रति लगाव और स्नेह। स्थानीय लोग बताते हैं कि गौरा ने अपने गांव में कई पौधे लगाए थे जो आज भी जिंदा हैं।
4: समय बदला। उस समय की रीति के अनुसार गौरा की शादी मात्र 12 वर्ष की उम्र में पास के गांव रैणी के मेहरबान सिंह के साथ हो गई।
3: सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी शादी के मात्र 10 वर्षों के बाद पति मेहरबान सिंह की मृत्यु हो गई। गोद में 2.5 वर्ष का बच्चा था। पति के निधन के बाद 22 वर्ष की गौरा देवी पर अपने बच्चे और बूढ़े सास ससुर के भरण पोषण का पूरा बोझ आ गया। उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए जितना भी समय गौरा के पास बचता था वो उसे गांव के कामों में लगा देती थी। गौरा अपने गांव के महिला

0: महिला मंगल दल की अध्यक्ष भी बनी।
1: महिला मंगल दल का विशेष काम था गांव की महिलाओं की रोजगार और उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर ध्यान देना। स्त्रियों पर होने वाली घरेलू हिंसा की स्थिति में महिलाओं के समूह द्वारा हस्तक्षेप करना और ये भी सुनिश्चित करना कि ग्रामीण बालिकाओं की पढ़ाई नियमित रूप से चल रही है या नहीं।
2: बहनों, अब हमें ये देखना है कि हमारे गांव में शराबखोरी तो कम हो गई है और इसके चलते चलते आगे बच्चियों की पढ़ाई भी शुरू करनी पड़ेगी हमें।
3: हाँ, बहुत जरूरी है। मेरी बेटी तो पढ़ने जाने लगी है अब।
2: अरे वाह, कितनी अच्छी बात बताई इसने।
1: लेकिन मेरा आदमी तो अभी काम ही पे नहीं जाता।
2: आप तो काम करती है ना?
1: हाँ मैं करती हूँ, लेकिन उसे होता क्या है?
2: मैं तो ये मानती हूँ कि नारी सशक्तिकरण एक बहुत जरूरी अंग है हमारे समाज का। नारी सशक्त बनेगी तभी तो परिवार सशक्त बनेगा।
0: समय बीतता गया। सन 1962 की बात है, चमोली के ग्रामीण अंचल में विकास के लिए तत्कालीन प्रशासन द्वारा सड़क बनाने का निर्णय लिया गया, जिसके कारण गौरा के गांव रैणी और आसपास के गांवों के लोगों की पुश्तैनी जमीन छिन गई।
1: गढ़वाल क्षेत्र के जंगलों में अंगू का पेड़ प्रचुरता में पाया जाता है। खेती करने के लिए पारंपरिक कृषि के औजार अंगू पेड़ों की लकड़ी से बनाए जाते हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों से निवेदन किया कि उन्हें खेती करने के औजार बनाने के लिए अंगू के पेड़ों को काटने की अनुमति दी जाए।
0: लेकिन वन विभाग भला कहां सुनने वाला था। एक ओर वन विभाग ने ग्रामीणों को साफ इनकार कर दिया, तो दूसरी ओर जंगल की जमीन का कुछ हिस्सा खेल सामग्री बनाने वाले एक निर्माता को व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए आवंटित कर दिया। अंगू पेड़ों की लकड़ी से उम्दा स्तर की खेल सामग्री भी बनाई जाती थी। दिन था 24 मार्च 1976। इस दिन रैणी और आसपास के गांवों के कुल 2400 पेड़ों को काटने का आदेश दे दिया गया। इन जंगलों को बचाने के लिए लंबे समय से आंदोलन चल रहा था। गांवों के स्त्री पुरुषों ने बड़ी मुस्तैदी से मोर्चा संभाल रखा था और हर परिस्थिति का सामना करने के लिए वे तैयार थे।
4: नहीं कटने देंगे,
5: बिल्कुल नहीं कटने देंगे।
1: लेकिन संयोग कहिए कि उसी दिन गांव के लोगों को उनके उन खेतों का मुआवजा दिए जाने का आदेश हुआ जो सन 1962 के अधिग्रहण के कारण उनसे छिन गए थे। रैणी, मलारी और लाता गांव के लगभग सभी पुरुष मुआवजा लेने जिला मुख्यालय चमोली चले गए।
0: इधर पुरुषों की अनुपस्थिति में 100 से भी अधिक मजदूर रैणी और उसके आसपास के गांवों के जंगलों की ओर बढ़ने लगे। गौरा देवी उस समय गांव में ही महिला मंगल दल की स्त्रियों के साथ बातचीत कर रही थी। उन्हें नहीं पता था कि ठेकेदारों की अगुवाई में मजदूरों का दल जंगल की ओर आ रहा है।
1: और तभी गांव की एक लड़की दौड़ती हुई आई। वो बहुत डरी हुई थी।
6: गौरमा, गौरमा,
2: क्या बात है चंपा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? कहां से आ रही हो?
6: गौरमा, वो लोग आ रहे हैं।
2: कौन लोग आ रहे हैं? अरे कहां आ रहे हैं, कुछ तो कहो।
6: गौरमा,
2: हाँ,
6: पहाड़ की ओर से ठेकेदार के बहुत से मजदूर जंगल की ओर आ रहे हैं।
2: क्या?
6: हाँ गौरमा, उनके हाथों में कुल्हाड़ियां, रस्सियां और पेड़ काटने वाली आरी है। मैं बकरी चराने गई थी तो देखा कि 3-4 ट्रक आकर रुके, उनसे मजदूर उतरे और जंगल की ओर बढ़ने लगे।
2: अच्छा, तो ये बात है। बहनों, चलो हम सब तैयार हो जाएं।
1: बिल्कुल,
2: समय आ गया है अब इस गांव के जंगल को बचाने का।
5: हाँ, हम सब तैयार हैं।
4: नहीं कटने देंगे,
5: नहीं कटने देंगे,
6: बिल्कुल नहीं कटने देंगे।
0: और चल पड़ी गौरा जंगल की ओर। उसके साथ गांव की 27 स्त्रियां थीं। उनकी चाल में

0: दृढ़ता थी, आंखों में संकल्प झलक रहा था और उनके नारों में ओज था।
1: ये है जंगल के उपकार,
2: मिट्टी पानी और बयान,
1: मिट्टी पानी और बयान,
2: जिंदा रहने के आधार।
3: और अब वो स्त्रियां वहां पहुंच गईं, जहां मजदूर पेड़ों को काटने के लिए तैयार खड़े थे।
4: अरे क्या कर रहे हो?
5: मुंह के ताक रहे हो?
6: अरे शुरू
5: मारो
4: पर। अरे भाई कौन है? रुको, इस पर चिपक जाएंगे पेड़ से।
1: अरे ओ हरिया, तू तो इसी गांव का है ना रे? जिस जंगल ने तुझे पाला पोसा बड़ा किया, तेरी सारी जरूरतों को पूरा किया, उसे नष्ट करने के लिए कुछ पैसों के लालच में आकर तूने कुल्हाड़ी उठा ली। शर्म आनी चाहिए तुझे।
5: सुनो, आगे बढ़ो।
4: अरे कहां से
5: मैं इनकी बातों में बताओ? मैंने तुम्हें पेश की थी यार, पेश की इस काम के लिए। बोलो शुरू काटो पे। अरे
4: हाथों से चिपक जाएंगे, ऐसा नहीं होने देंगे
1: हम। आगे बढ़कर तो दिखाओ तुम। एक भी पेड़ को हम हाथ नहीं लगाने देंगे, आज
7: नहीं लगाने देंगे।
1: बहनों आगे बढ़कर चिपक जाओ पेड़ों से।
4: हाँ, हाँ, हाँ, ठीक
5: है तो वहां चलो, उन पेड़ों में काटो, चलो।
0: मजदूरों के सामने एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई थी। वे जिस पेड़ की ओर बढ़ते, गांव की स्त्रियां भागकर उसी पेड़ से चिपक जाती। इस संघर्ष में लगभग 4 घंटे बीत गए थे। इस दौरान किसी ने भागकर ये सूचना गांव के पुरुषों तक पहुंचा दी।
3: ये खबर वैसे भी जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। आसपास के गांवों से सैकड़ों की संख्या में लोग जंगल की तरफ आने लगे। स्थिति बिगड़ती देख ठेकेदार और जंगल काटने वाले मजदूर वहां से भाग खड़े हुए।
5: ठीक है तो वहां चलो, उन पेड़ों को काटो, चलो।
0: बता दें कि इन पेड़ों की कटाई को रोकने के प्रयास में ये आंदोलन 3 साल पहले 1973 में शुरू हुआ था। इसकी नींव सुंदरलाल बहुगुणा, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत और चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में रखी गई थी।
3: इस घटना ने गौरा देवी को चिपको आंदोलन की महान नेत्री बना दिया और इसकी गूंज पूरे विश्व में सुनाई पड़ी। गौरा देवी विश्व मीडिया में चिपको वुमन के नाम से मशहूर हुई। इस घटना का बहुत बड़ा प्रभाव ये पड़ा कि सरकार ने हिमालयी क्षेत्र में आगामी 15 वर्षों के लिए वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया और राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार पर्यावरण मंत्रालय गठित करने पर विमर्श संभव हुआ।
0: जुलाई सन 1991 में 66 साल की उम्र में इस महान पर्यावरण नेत्री का निधन हो गया।
3: एक साक्षात्कार में गौरा देवी ने जंगल के प्रति अपना स्नेह दर्शाते हुए कहा था,
1: ये जंगल हमारी माता के घर जैसा है। यहां से हमें फल फूल और सब्जियां मिलती हैं। अगर यहाँ के पेड़ पौधों को काटोगे तो निश्चित ही बाढ़ आएगी।
0: चिपको आंदोलन अहिंसक आंदोलन था, जिसमें ग्रामीणों और गढ़वाल की बहनों ने पेड़ों को कटने से रोकने के लिए उन्हें गले लगा लिया। इस महान पर्यावरण नेत्री को हमारा नमन।
8: अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी, एक महान पर्यावरण नेत्री। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल,

तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वनियंकन विकास सांगवान, कलाकार बाबला कोचर, पूनम एस कुदेसिया, ममता मलकानी, प्रज्ञा प्रवीण शर्मा और गीतांजलि, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक कुसुम लता, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप ईमेल पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली, भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

इस समय दिन के ठीक 3:30 हुए हैं और आप इस समय सुन रहे हैं हमारी दिवाकालीन सभा के कार्यक्रमों को। और अब प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं गुलाम अली की आवाज में चंद गजलें।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे गुलाम अली की आवाज में चंद गजलें, और इसी के साथ सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। झारखंड के लोकगीतों का कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे बस थोड़ी ही देर में।

झारखंड के लोकगीतों का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय शाम के ठीक 4 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में अगला प्रसारण आकाशवाणी के रांची केंद्र से होगा। आप सुनेंगे समाचार मुख्यांश।

नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। कोडरमा के झुमरी तिलैया में एक महिला ने ई रिक्शा में जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। निजी क्लिनिक जाते समय महिला को प्रसव पीड़ा हुई। मौके पर मौजूद एएनएम प्रियंका कुमारी ने तत्परता दिखाते हुए सुरक्षित प्रसव कराया। एम्बुलेंस से तीनों को सदर अस्पताल भेजा गया। माँ और दोनों बच्चे पूरी तरह सुरक्षित हैं। रांची में आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा एक दिवसीय मीडिया प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत ने किया। राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कांग्रेस के गौरवशाली इतिहास की चर्चा करते हुए कहा कि देश में IIT, एम्स, PSU, परमाणु परीक्षण और पंचायती राज व्यवस्था जैसी ऐतिहासिक उपलब्धियां कांग्रेस शासनकाल की ही देन है। रांची में 6 और 7 जून को होने वाले संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए राजकीय बालिका उच्च विद्यालय बरियातू केंद्र के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू की गई है। सदर SDO कुमार रजत ने BNSS की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया है। चक्रधरपुर मंडल के DRM तरुण होरिया ने आज सरायकेला खरसावां के कांडरा जंक्शन का निरीक्षण किया। उन्होंने तीसरी और चौथी रेलवे लाइन के कार्यों की समीक्षा की। DRM ने बताया कि कांडरा जंक्शन को आधुनिक स्टेशन के रूप में विकसित करने के लिए प्लेटफॉर्म की लंबाई बढ़ाने और लिफ्ट लगाने की योजना पर काम जारी है। पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा में आज नक्सल उन्मूलन और सुदूर क्षेत्रों के विकास को लेकर उच्च स्तरीय बैठक हुई। उपायुक्त मनीष कुमार, SP अमित रेणु और CRPF DIG विनोद कार्तिक ने सुरक्षा व कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा की। बैठक में सारंडा और कोल्हान के दूरस्थ गांवों तक स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल और सड़क संपर्क पहुंचाने पर विशेष जोर दिया गया। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

आकाशवाणी रांची से प्रसारित समाचार मुख्यांश अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय शाम के ठीक 4:02:40 हुए हैं। और अब लीजिए सुनिए VM आनंद की लिखी नाटिका बस की सीट, निर्देशन किया है।

0: ठीक है। ओहो, कितना रश हो रहा है इस बस में, धक्के पर धक्के लग रहे हैं, दम घुटा जा रहा है यार।
1: हाँ यार दीपक, लगता है इस बस में तो हम दोनों का कच्ची उम्र ही निकल जाएगा। हे भगवान।
0: लेकिन प्रकाश, तुम तो यार आए दिन कहते हो कि बस में कितनी भी भीड़ क्यों ना हो, सीट तो मुझे मिली जाती है।
1: अरे यार, ये तो मैं अब भी कहता हूँ कि अगर मैं चाहूँ तो चुटकियों में सीट हासिल कर लूँ।
0: तो ठीक है, आज हम भी देखें कि तुम बस में सीट कैसे लेते हो, लोगों से वाकफियत कैसे काटते हो, देखें।
1: ए दीपक देख, मुझे तू जोश मत दिला, हाँ वरना मैं सच कह रहा हूँ कि मैं कोई ना कोई सीट ले ही लूंगा और विकासपुरी तक बैठ कर ही जाऊंगा।
0: ऐसे कैसे खड़ा रह जाएगा हा? तो देख क्या रहे हो, किसी सीट पर बैठ कर दिखाओ तो जाने।
1: तो ठीक है, लगी पसंद?
0: लग गई, डन
1: डन। तो ठीक है, मैं आगे जा रहा हूँ, तुम यहीं खड़े रहो और जब मुझे वहाँ सीट मिल जाएगी मैं तुम्हें आवाज दे दूंगा, फिर आकर देख लेना अपनी आंखों से। अब मैं चला। भाई साहब सर, आगे जाने के लिए रास्ता तो दीजिए। अब बैठिए, थोड़ा सा रास्ता बोलिए, थोड़ा सा रास्ता दे दीजिए आगे जाने के लिए। मेरा जूता, भाई साहब मेरा जूता तो छोड़ दीजिए प्लीज। अब माता जी, थोड़ी सी आगे जगह जाने के लिए जगह दे दीजिए प्लीज।
2: वो जो बुढ़ा उस कोने की सीट पर बैठा है, लगता है यही काम का मुर्गा है। तो चल प्रकाश प्यारे, आज इसी पे हाथ मारे।
1: भाई साहब जरा आगे जाने के लिए थोड़ी सी जगह दे दीजिए प्लीज प्लीज।
2: अंकल आप और यहाँ, मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ अंकल, आपसे ही।
3: पापा सीट के पीछे की तरफ खड़ा है, आपको ही आवाज दे रहा है।
4: मुझे आवाज दे रहा है?
2: हाँ अंकल, आपने मुझे अभी तक नहीं पहचाना?
4: नहीं बेटे नहीं, भाई मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। अब बुरा नहीं मानना बेटे, अब क्या करूँ, बुढ़ापा छा गया है, नजर कमजोर हो गई है, मैं अब जल्दी से किसी को पहचान नहीं पाता।
2: लेकिन अंकल मैंने तो आपको देखते ही पहचान लिया था, आप शायद वहीं पर रहते हैं ना? वहीं पे
4: वहीं है। मैं विकासपुरी में ही तो रहता हूँ।
2: जी हाँ, विकासपुरी में। और अंकल आप शायद उसी ब्लॉक में रहते हैं जिसमें हम लोग रहते हैं।
4: यानी कि तुम भी जी ब्लॉक में ही रहते हो?
1: बिल्कुल ठीक कहा अंकल आपने, बिल्कुल ठीक कहा, हम भी जी ब्लॉक में ही रहते हैं।
4: अरे वाह वाह वाह वाह, फिर तो तुमने मुझे खूब पहचाना भाई। तुम्हें ये भी पता है कि मैं विकासपुरी में रहता हूँ और तुम्हें ये भी पता है कि मैं जी ब्लॉक में ही रहता हूँ। बहुत अच्छे बरखुदार, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कुछ मुझे भी याद आ रहा है कि शायद मैंने तुम्हें कहीं देखा जरूर है।
2: याद कीजिए अंकल, जरा ध्यान से याद कीजिए।
4: अरे कहीं तुम उसके बेटे?
2: मैं उन्हीं का ही तो बेटा हूँ, उन्हीं का।
4: अच्छा अच्छा अच्छा, नारायण दास का।
1: आप पहचाना आपने?
4: और तुम्हारे फ्लैट का नंबर भी?
2: अंकल फ्लैट नंबर 128
4: ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर भाई, अब मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचान गया हूँ बेटे।
3: पापा आप क्यों इस लड़के से बढ़ चढ़ कर बातें कर रहे हैं? ना जाने ये विकासपुरी में रहता भी है या नहीं, ना जाने कौन है कैसा है।
4: अरे बेटी मैं बात कर रहा हूँ तो हमारा क्या जाता है, ही कोई भी हो लेकिन लड़का अच्छा लग रहा है।
2: अंकल आप मुझसे कुछ कह रहे थे?
4: और भाई मैं कह रहा था कि खड़े क्यों हो बेटे, बैठ जाओ हमारे साथ यहाँ, हम तीनों ही सीट पर एडजस्ट हो जाएंगे।
1: नहीं अंकल, मैं आपके साथ भला कैसे बैठ सकता हूँ, अब आप दोनों आराम से बैठे हुए, अब बैठे रहिए, अब दो की सीट पर भला हम तीनों कैसे बैठ सकते हैं। नहीं नहीं, आपको भी परेशानी अंकल, आप बैठे रहिए।
4: बेटे इसमें परेशानी की कौन सी बात है? अरे तुम कोई पराए थोड़ा ही हो, अपने नारायण दास के ही तो बेटे हो।
3: ओ पापा आप क्यों उसके पीछे पड़ गए, खड़े रहने दीजिए उसे, कहाँ बैठेगा वो, हमारी सीट पर।
4: अरे तुम चुप रहो। हाँ तो बेटे बैठ जाओ ना, हाँ बैठो बैठो बैठो, अरे यहाँ बैठो मेरे साथ। अरे बेटी तुम जरा उधर सरक जाओ ना, सरको सरको।
1: अब आप इतना कह रहे हैं तो मुझे बैठना ही पड़ेगा।
4: बैठो बैठो,
1: थैंक यू अंकल।
4: बेटा ये है मेरी बेटी रश्मि, इसे तो तुमने पहले देखा ही होगा। अरे हम भी तुम्हारे ब्लॉक में ही रहते हैं भाई।
2: जी इन्हें? नहीं तो मैंने तो इन्हें वहाँ कभी नहीं देखा।
4: हाय भाई वाह वाह वाह वाह, अरे ये है शरीफ लड़के की पहचान, है खानदानी लड़के की पहचान।

0: मजाल है जो नजरें उठाकर किसी लड़की की तरफ देखा जाए।
1: जी
0: भाई कमाल है, यानी इतने सालों से हम भी वहीं रह रहे हैं, तुम भी वहीं रह रहे हो, हमारी बेटी को आज तक तुमने देखा ही नहीं। वैसे बेटा तुम काम क्या करते हो?
1: जी मैं बैंक में नौकरी करता हूँ।
0: हाँ बैंक में मुझे याद आ गया। भाई नारायण दास भी कितनी किस्मत वाला है, एक तो लड़का इतना शरीफ और फिर बैंक में नौकरी करता, यानी कि सोने पर सुहागा।
1: अंकल आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, भला मैं आप लोगों के सामने हुई क्या?
0: वाह, अरे ये तो तुम्हारा और भी बड़प्पन है बेटे, इतना कुछ होते हुए भी कह रहे हो कि तुम हमारे सामने क्या हो। वाह वाह भाई मैं कहता हूँ धन्य है नारायण दास जिसके घर तुमने जन्म लिया।
2: अरे प्रकाश।
1: हाँ भाई क्या बात है दीपक?
2: अरे सीट मिल गई क्या?
1: हाँ हाँ मिल गई, लेकिन तुम अभी वहीं लटके रहो।
0: अरे ये किसकी आवाज आ रही है पीछे से?
1: अंकल ये मेरा दोस्त है, दरअसल उसे सीट नहीं मिली ना, इसीलिए पूछ रहा था कि यहाँ कोई सीट।
0: अरे उसे सीट मिलेगी भी कैसे भाई, खड़ा रहने दो उसे वहाँ, बस में देखो तो क्या बुरी हालत हो रही है। बेटे एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे?
1: नहीं अंकल आप कहकर तो देखिए।
0: बेटा अब तुम जवान हो गए हो, नौकरी भी कर रहे हो, भाई शादी के बारे में तुमने क्या सोचा है?
1: शादी? अब अंकल वो अब शादी?
0: अरे तो अब सोच लो ना बेटे, अभी तो आधा घंटा बाकी है विकासपुरी आने में।
1: जी आधा घंटा?
0: हाँ अरे आधे घंटे में तो लोग कई कई फैसले कर लेते हैं।
1: लेकिन अंकल शादी के बारे में मैं कैसे सोच सकता हूँ?
0: सोचना क्या है, कोई लड़की देखी क्या? नहीं देखी? अरे तो देख लो ना बेटे, लड़की देखने के लिए तुम्हें कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा।
1: जी जी जी मैं आपका मतलब नहीं
0: समझा भाई। मेरे साथ है, देखो मेरी बेटी जो बैठी है ना, उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है?
1: बेटी? आपकी बेटी?
3: पापा क्या हो गया आपको, क्यों आप बीच में मेरा नाम ले रहे हैं? मैंने नहीं करनी इससे शादी, ना जाने कौन है ये।
0: अरे बेटी ऐसा लड़का फिर नहीं मिलेगा, शरीफ खानदान, पढ़ा लिखा, बैंक में नौकरी है। मैं इससे बात कर रहा हूँ, देख बीच में टांग मत रख।
3: आप भी अजीब बातें करते हो, अगर आप हाँ कर भी दें तो ये हाँ कैसे करेगा?
0: अरे क्यों नहीं करेगा बेटी, ये क्या इसका बाप नारायण दास भी हाँ करेगा? अरे इसे हमने बस में सीट दी है, कोई मजाक नहीं है। क्या ख्याल है तुम्हारा?
1: जी अंकल आप ही काफी मजाकिया किस्म के आदमी हैं। भाई वाह क्या बात निकाली है आपने अंकल।
0: अरे तुम्हें हमने बस में सीट दी है, कोई मजाक नहीं है।
1: अंकल आप तो नाराज हो गए, मैं ये कब कह रहा हूँ कि जो सीट आपने मुझे दी है वो कोई मजाक है? बल्कि अंकल मैं तो सारा जीवन आपका ये एहसान नहीं भूल सकता।
2: अरे प्रकाश।
1: हाँ भाई क्या बात है?
2: अरे खुद तो सीट लेकर वहाँ पर बैठ रहे हो, अब मेरा क्या होगा? अरे कोई और सीट है वहाँ?
0: अरे नहीं भैया नहीं, यहाँ कोई सीट नहीं है, यहाँ वैसे ही बहुत भीड़ हो रही है। अरे भाई वही खड़े रहो वही। हाँ देखा देखा, अरे तुम्हारा दोस्त छचूंदर की तरह अभी तक डंडे से लटका पड़ा है और धक्के भी खा रहा है।
1: जी अंकल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अगर आप मुझे सीट ना देते तो मेरी भी वही हालत होती।
0: तो बेटा तुमने जवाब मिल गया, भाई जल्दी करो विकासपुरी आने वाली है।
1: किस बात का जवाब अंकल?
0: हेलो अरे जो चीज अभी मैंने पूछी थी वो अभी भूल गए, तो तुम्हें ये क्या याद रहेगा कि हमने तुम्हें सीट दी थी? हाँ अरे बरफुरदार रश्मि से शादी करोगे ना?
1: रश्मि से शादी? लेकिन अंकल अभी तो
0: अच्छा अच्छा अच्छा पिताजी से पूछना है। अरे पिताजी की बात छोड़ो बेटे, रश्मि के लिए नारायण दास तो कभी ना कह ही नहीं सकता, और जब उसे ये पता चलेगा कि हमने उसके बेटे को बस में सीट दी थी तो वो एकदम हाँ कह देगा।
1: वो सब तो ठीक है अंकल, लेकिन मैं तो शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ।
0: क्या कहा? अच्छा अच्छा तुम्हें शादी की कोई जल्दी नहीं है? अरे तो बस में सीट लेने की क्या जल्दी थी? उठ जाओ हमारी सीट से।
1: अरे प्रकाश प्यारे, अब क्या करेगा? अगर मैं उठता हूँ कि सरदार जाता हूँ, और अगर यहाँ बैठा रहता हूँ तो ये खूनसट मुड्ढा अपनी लड़की को मेरे गले से मर देगा। भगवान अब क्या करूँ?
4: वो अंकल मैं ये कह रहा था कि
0: अच्छा तुम अभी शर्मा रहे हो। ठीक है भाई, हाँ नानी लड़के हो, एकदम बुजुर्गों के सामने ऐसे कह दोगे?
1: जी जी।
0: तो फिर मैं हाँ समझू।
1: लेकिन अंकल आप मेरी बात तो सुनिए। अंकल मेरी तो शादी हो चुकी है।
0: आए, शादी हो चुकी है? अरे तो फिर यहाँ क्यों बैठे हो? आए उठो उठो यहाँ से। बड़े आए सीट लेने वाले, बदमाश होंगे, न जाने कहाँ से बस में चढ़ जाते हैं। उठिए उठिए उठिए उठिए उठिए यहाँ से।
5: क्यों बेटे, मिल गई सीट? लाओ निकालो मेरी शर्त के पाए।
1: हाँ भाई, ये ले तेरी शर्त के। सुरु भाई, ये बस की सीट तो बड़ी महंगी पड़ी यार।
5: अरे अरे रश्मि, तुम यहाँ?
3: अरे दीपक।
5: कौन दीपक?
3: दीपक ये मेरे डैडी हैं।
5: हैं? ये तुम्हारे डैडी हैं? नमस्ते अंकल।
0: नमस्ते नमस्ते। तुम कौन हो बरखुर्दा?
3: पापा, ये वही तो है दीपक।
0: दीपक? अच्छा अच्छा अच्छा, वो जिसके बारे में तुम बात कर रही थी।
3: हाँ पापा।
5: अंकल अब तो आप समझ गए ना? अंकल मैं आपसे मिलना चाह रहा था। अंकल
0: मुझसे मिलना चाहते हो? अरे किस लिए भाई?
5: अंकल अब आप खुद ही समझ जाइए ना।
0: ओ अरे मैं तो समझ ही गया हूँ भाई। आओ आओ बैठो, इधर बैठो। और भाई असल में तो ये सीट तुम्हें ही मिलनी चाहिए थी बेटा।
1: मुबारक हो दीपक, मुबारक हो भाई, आज तो दो दो जगह मोर्चा मारा है।
6: तो ये थी नाटिका बस की सीट। लेखक वी एम आनंद, निर्देशन किया सुशील बैनर्जी ने,

0: क्या मेरे होगा? अरे जयपुर भी अब सिंगापुर हो गया। अचानक कब से खड़ा हूँ, निगोरी सड़क पार करना महाल है। एक मरीज चिट्ठी उधर लेटर बॉक्स में डालनी है और मैं यहाँ खड़े खड़े बुढ़ा हो गया। अरे अरे भैया संभाल के, अरे अरे अब मर गया। और जिस्म की हर हड्डी अपनी जगह छोड़ गई। कलेजा और किडनी आपस में आ मिले हैं, फेफड़े लापता है, आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। अरे ओ भाई, सांसें महंगाई जैसी चल रही है, दिल की धड़कन ईमान जैसी डूबती जा रही है। ओह, सारा बदन बारसी लोना हो गया। अरे ये किसने अपना ट्रक हमारे ऊपर चढ़ा दिया?
1: अरे बड़े मियाँ, ट्रक नहीं, ये मेरी साइकिल है। साइकिल बचाते बचाते भिड़ गई। माफी चाहता हूँ, 8 साल से चला रहा हूँ,

0: नहीं भिड़ी।
1: अबे ओए अंधा है क्या?
2: अरे हम भी 60 साल से पैदल चल रहे हैं, आज तक नहीं भिड़े। हाय लोगों, अरे सहारा देकर उठाओ भैया।
3: अरे
2: भैया जनाजा ही बचा है।
4: अरे अरे इसे तो पुलिस में देना चाहिए, बड़े मियाँ को कैसा तोड़फोड़ डाला है।
2: ठहरो ठहरो भैया ठहरो, ये मरा नाश पीटा तो हमें बकैयन लगता है।
0: क्या क्या बकैयन? कौन बकैयन? अरे मैं तो ब्रजेश चंद्र हूँ।
2: अरे नाम बदल लो या चोला, पर हो बकैयन। अरे हमारा चश्मा कहीं लुढ़क गया तो क्या हम बकैयन को नहीं पहचानते? ए लोगो, ये हमारे मोहल्ले का बकर इलाही उस बकैयन है।
3: बकैयन?
2: अरे साल भर पहले ये मजदूर फिल्म के चक्कर में बम्बई भाग गया था। आज हाथ लगा है।
0: अरे अरे क्या कर रहे हैं आप? क्यों बे बकैयन है तू?
2: अरे लानत है इस पर, बाप इसका सड़क पर भीख मांगते मांगते चल बसा और ये मैयत पर भी नहीं आया।
0: बहुत बुरी बात है। क्या बक रहे हैं आप? क्या बक रहे हैं? मेरे पापा पीडब्ल्यूडी में हेड क्लर्क हैं।
3: पीडब्ल्यूडी में?
2: अरे हमसे मत उड़ो बेटा, हमसे मत उड़ो। और माँ इसकी फांसी लगा कर पार हो गई और ये जनाजे में भी शरीक नहीं हुआ, चिरकूट कहीं का।
0: माई गॉड, मेरी मम्मी को भी मार डाला। अरे मैं तकैयन नहीं हूँ।
2: अबे तकैयन नहीं, बकैयन बकैयन
3: बकैयन।
2: अरे लोगों, इसका छोटा भाई 6 महीने से लापता है।
3: 6 महीने से?
2: हाँ, न जाने कहाँ कूड़े से पॉलीथीन बीन रहा होगा बेचारा।
0: हद हो गई, मेरा पूरा खानदान निपटा डाला इस बुड्ढे ने। चश्मा क्या गुम हुआ? अच्छा भला आदमी चुकैयन हो गया। दिस इज टू मच, आई कांट स्टैंड इट एनी मोर।
2: देखा देखा, अंग्रेजी में हल्का रहा है। अरे हम भी अंग्रेजी पढ़े हैं बकैयन, तेरे अब्बा को अंग्रेजी में भीख मांगना हम ही ने सिखाया था।
0: फिर वही नॉनसेंस, मैं बकैयन नहीं हूँ।
1: ज्यादा बको मत, तुम बकैयन हो या नेपोलियन, चलो जाकर अपने खर्च पर बड़े मियाँ का चश्मा बनवाओ, वरना पुलिस में दे देंगे।
0: हे भगवान, कहाँ फंस गया? कॉलेज की फीस के कुल 35 रुपए जेब में है। देखते हैं, उठो बुड्ढन।
4: संभाल कर ले जाइयो, बुजुर्ग आदमी है बेचारे।
0: आइए आइए मियाँ, संभल के, आगे मेन होल है, कहीं घुस गए तो RMMC में ही बॉडी मिलेगी। जाने किस मनहूस की सूरत देखकर चला था सुबह।
2: अरे बकैयन, अब बहुत कमजोरी लग रही है बेटा, अब कहीं शरबते अनार या शरबते बादाम वगैरह पिलवा पटापट।
0: पहाड़ में गया बकैयन, यहाँ कहीं गन्ने के रस का ठेला भी नहीं है, कहीं किसी चश्मे वाले की दुकान भी नजर नहीं आती।
2: अरे तो मुझे टांगे या टैक्सी में किसी बड़े नर्सिंग होम में ले चल।
0: स्विट्जरलैंड न ले चलूं, उसकी टट्टी गुजराती ताला। हाँ वो ऑप्टिशियन का बोर्ड लगा हुआ है। आओ बड़े मियाँ।
2: अबे घसीट क्यों रहा? अबे घसीट क्यों रहा? अबे नीरे, अबे छोड़, अबे ओफ बेटा, अब बूढ़ा हो गया हूँ, संभाल कर ले चल, हैंडल विद केयर।
0: अंग्रेजी मत छोको, जल्दी बढ़ो, कॉलेज के 2 पीरियड पहले ही मिस हो गए हैं। देख के मियाँ ठहरो, बोर्ड देखने दो, डॉक्टर WW ब्लैकआउट।
2: हाँ, WW ब्लैकआउट,
0: ऑप्टिशियन एंड आई स्पेशलिस्ट। बाप रे, खुद का नाम ब्लैकआउट और है आई स्पेशलिस्ट। बुलाता हूँ
5: डॉक्टर साहब। अरे डॉक्टर साहब।
6: यस, क्या मांगता है?
2: मांगता? अरे बेक मांगा का आता ही दे दिया।
0: डोंट माइंड हिम प्लीज, आप ही डॉक्टर ब्लैकआउट है?
6: और क्या, तुम्हें हम पोस्ट ऑफिस नजर आते हैं।
0: सॉरी डॉक्टर, इन बुड्ढन का चश्मा बनवाना है।
6: तो इस काम के वास्ते 6 लोग क्यों आया है?
0: 6? हम तो 2 ही हैं।
6: वेट, आई सी 3 टाइम्स विदाउट ग्लासेस, तर्जुमा बिना चश्मे मुझे हर चीज 3 गुनी नजर आती है। मेरा चश्मा कहाँ है? नाउ ओके, आप 2 हैं।
0: और डॉक्टर, आपने गले में 3-3 चश्मे क्यों लटका रखे हैं?
6: लिसन, एक चश्मा दूर का चीज नजदीक देखने के वास्ते, दूसरा नजदीक का चीज दूर देखने के वास्ते, और तीसरा चश्मा इन दोनों चश्मों को ढूंढने के वास्ते। नाउ फॉलोड, तर्जुमा अब तुम समझे? अंदर आओ, आओ,
0: आइए।
6: कीप द ओल्ड मैन ऑन दैट स्टूल, तर्जुमा बुड्ढे को उस स्टूल पर रख दो, आपका जांच होगा।
0: अरे चाचा स्टूल पर बैठ जाओ। बाल्टी में क्यों बैठे जा रहे हो?
2: अरे स्टूल का ढक्कन कहाँ है ढक्कन?
0: अरे ये बाल्टी है चाचा, स्टूल इधर है, इधर संभल के बैठ जाओ।
6: ओल्ड मैन इंग्लिश पढ़े हो?
2: इंग्लिश? अरे आई कैन टीच इंग्लिश टू योर मदर्स हस्बैंड। तर्जुमा हम तुम्हारे अब

0: अंग्रेजी पढ़ा सकते हैं, समझा?
1: ओके ओके ओके, वो अंग्रेजी की तख्ती पढ़ो।
0: कौन सी तख्ती?
1: अरे वही जो सामने दीवार पर टंगी है।
0: कौन सी दीवार?
1: ओ माय गॉड, अरे इस कमरे की दीवार।
0: अरे कौन सा कमरा यार?
1: हेल विद यू, कमरा भी दिखाई नहीं पड़ता। यंग मैन के सीरियस, मैं समझता था शॉर्ट सर्किट है, मगर लगता है पूरा ट्रांसफार्मर जल गया है। जंक्शन बॉक्स खोलना पड़ेगा, फेज चेंज होगा।
2: शॉर्ट सर्किट, ट्रांसफार्मर, जंक्शन बॉक्स, फेज। अरे आप चश्मा टेस्ट कर रहे हैं या बिजली की मरम्मत?
1: यू आर राइट, हम पहले बिजली का लाइनमैन था, धंधा नहीं जमा, ऑप्टिशियन का काम पकड़ लिया। डोंट वरी यंग मैन, मुझे आखिरी कोशिश करने दो। सिस्टर
3: कमिंग माय डार्लिंग डियर लव।
2: आपने सिस्टर बुलाया? वो डार्लिंग डियर लव,
1: दरअसल वो हमारा वाइफ भी है और नर्स भी। डॉक्टरी प्रोफेशन के हिसाब से उसे ऑन ड्यूटी सिस्टर ही बोलना पड़ता है ना।
3: बोलो हनी, हमारे को काय के वास्ते याद किया?
1: सिस्टर, अंदर किचन से आटा गूंथने वाला सबसे बड़ा परात लाओ।
3: काय को? इन दोनों मैगस को इधर ही खाना खिलाना मांगता क्या?
1: ओह नो, आई टेस्ट, तर्जुमा आँख का जांच। सॉरी सिस्टर, परात तो इधर ही है। आई यू गो।
3: ओके माय डार्लिंग।
1: हाँ जी बोलो ओल्ड मैन, ये गोल गोल चीज क्या है?
0: भाई बड़े डॉक्टर, हमसे लगी मत करो, ये तो चवन्नी है, चवन्नी।
1: व्हाट? परात को चवन्नी बोलता है? ओह नो, माय हार्ट सिंक हो जाएगा। मैं ये लस्सी पीता हूँ ताकत के वास्ते।
2: ओह नो डॉक्टर, लस्सी की जरूरत मुझे है, मैं पीता हूँ।
1: गिलास इधर लाओ, ये लस्सी नहीं, साबुन का पानी है, लेंस धोने के वास्ते।
2: ओह सॉरी डॉक्टर, मैं समझा लस्सी है।
1: अब भी चैन आया, ये लस्सी ही था, बट फॉर प्राइवेट यूज, पब्लिक के लिए नहीं। नाउ यंग मैन, बुढ़े का केस होपलेस है, पहले दोनों आंख के गोले निकालकर प्लेट में रखने होंगे।
2: क्या?
1: और फिर अंदर का लाइन चेक करना होगा कि कहाँ कहाँ अर्थिंग नहीं है, किधर किधर केबल डैमेज है, समझे?
2: बापरे, बुढ़ा मर गया तो मुझे फांसी चढ़ना पड़ेगा।
0: बेटा बकैयन, अरे चश्मा पड़ने में देर है क्या बेटा?
1: अरे बैठे रहो, अभी लाइन चेक होगी।
0: अरे मुझे यहाँ से ले चल बकैयन, मुझे यहाँ से ले चल। ये कमक लाइन चेक करते करते पावर हाउस ही फूंक डालेगा, और यहाँ से ले चल बेटा।
1: अरे बैठे रहो अड्डे पर।
2: डियर डॉक्टर, क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं कि लाइन खोले बगैर ही रोशनी आ जाए?
1: केबल में बेंतिया कचरा फंसा है।
2: वेट डॉक्टर, उम्मीद नजर आती है, वो देखो वो पुराना चश्मा, बुड्ढी को ट्राई करो। अरे वो जो कोने में पड़ा है लगा कर देखो।
1: मगर तुम कैसे कह सकते हो कि वो पुराना चश्मा बुड्ढे को लग जाएगा?
2: सिंपल अलजेब्रा, चश्मा पुराना, बुड्ढा पुराना, पुराना पुराना कट, चश्मा बुड्ढा, बुड्ढे को चश्मा लग गया।
1: ओके ओके, लो ये चश्मा पहनो। अरे अब थोड़ा साफ कर देता हूँ। अब देखो, लगाओ।
0: अय्या अल्लाह, मुझे शाम नजर आ रहा है। डॉक्टर, कमरा, दीवार, तख्ती, लिखा है ETDDLSHSHO22WQQHH। देखो,
1: अरे बाप रे, ये तो सबसे महीन आखिरी लाइन तक सही पड़ गया मेरे कल।
0: अरे डॉक्टर, अब मुझे जन्नत तक साफ नजर आ रही है। देखो, अब मेरे अब्बा हुजूर हुक्का पी रहे हैं, अम्मी दाल बीन रही है, अब फूफा कनकैया लगा रहे हैं। मगर ये नौजवान कौन है? ये मरा बकैयन कहाँ भाग गया?
2: जी मैं ही मरा बकैयन हूँ, जिसके बाप भीख मांगते थे,
0: मैंने
2: फांसी लगा ली। छोटा भाई कूड़ेदान से पॉलिथीन बीन रहा है, और कुछ?
0: बेटा माफ करना, अब बिना आग के लालटेन के यही होता है बुढ़ापे में।
2: डॉक्टर, ये चश्मा है किसका, कहाँ से आया?
1: वेट, हमारा नर्स इधर लाकर फेंका। सिस्टर,
3: यस माय पोटैटोस, अभी हम तुमको बताता, हम जब शॉपिंग से लौटता था, रोड में भारी भीड़, ओ माय गॉड, क्या देखा, एक ओल्ड मैन साइकिल से टकरा कर गिर गया। बस इधर ही हमारे को ये फटीचर चश्मा मिल गया, हम लाकर इधर कोना में डाल दिया, सोचा किसी के काम आएगा, हमारे को दाम मिल जाएंगे।
2: ओह, तो ये बड़े मियाँ का ही खोया हुआ चश्मा है, भगवान का शुक्र है कि मिल गया।
0: अच्छा तो मैं अब चलता हूँ, अब भाई खुदा हाफिज, और डॉक्टर अब बाय बाय। हाय लेडी, सी यू, बाय बाय बाय बाय बाय बाय बाय।
3: अरे बुढ़ापे में मेरे को काय को मस्का मारता है, ओल्ड चिंपैंजी।
0: आओ,
2: अच्छा तो मैं भी चलता हूँ, शायद कॉलेज का लास्ट पीरियड मिल जाए।
1: अहीं ठहरो, तुम किधर को जाता है? माय फीस 35 रुपीस ओनली।
2: फीस का है कि जिसका चश्मा था उसे मिल गया।
1: कंसल्टेशन और एग्जामिनेशन फीस जल्दी निकालो,
2: वरना
1: आई कीप

0: तर्जुमा, मैं दो हाथ रखता हूँ, गर्दन टेस्ट कर डालूंगा। अंदर घर में मेरा साला फाइन चम भी है, 3 बार बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज दे चुका है। फाइन चम
1: आ रहा हूँ, दस्ताने पहन लूँ जरा।
2: नहीं नहीं नहीं, फैंटम जी को क्यों कष्ट देते हैं, ये लीजिए 35 रुपए, मेरी फीस का तो सत्यानाश होना ही है।
3: क्या बोला सर, तुम्हारा फीस का रुपया है?
2: हाँ सिस्टर, आज ही जमा करानी है।
3: ओ कीप द मनी विद यू चाइल्ड एंड गेट गोइंग।
0: तर्जुमा, बच्चे पैसा अपने पास रखो और जाओ, फिर जाओ।

लालटेन की वापसी। अभी आप सुन रहे थे ये झलकी। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अगला कार्यक्रम फिल्म संगीत बस थोड़ी ही देर में।

हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM की 102.4 MHz पर। शाम के 4:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। आइए श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ।

जावेद अली और हंसिका अय्यर की आवाज़ों में इट्स माई लाइफ इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। इस गीत को लिखा था नीलेश मिश्रा ने और संगीतबद्ध किया था शंकर एहसान लॉय ने।

अरिजीत सिंह की आवाज में छिछोरे फिल्म का ये गीत आपने सुना। गीत की बोली के थे अमिताभ भट्टाचार्य ने और इसे संगीतबद्ध किया था प्रीतम ने।

रिफ्यूजी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। आवाजें थी सोनू निगम और अलका याग्निक की। इस गीत को लिखा था जावेद अख्तर ने और इसे संगीतबद्ध किया था अनु मलिक ने। आइए श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अगला गीत सुनते हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में। कसूर फिल्म का ये गीत है।

उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में कसूर फिल्म का ये प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे। इस गीत को लिखा था समीर ने और धुन बनाई थी नदीम श्रवण ने। आइए श्रोताओं, आप सुनते हैं मोनाली ठाकुर की आवाज में फिल्म बागी का ये गीत, जिसे रचा है कुमार ने और संगीतबद्ध किया है मीत ब्रदर्स ने।

बागी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। मोनाली ठाकुर और साथियों की आवाज़ें थीं, गीत के बोल कुमार की थीं और संगीत था मीत ब्रदर्स का। और श्रोता, इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।

फिल्म संगीत अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5 बजने वाले हैं। अब समाचार मुख्यांश सुनेगा आकाशवाणी के रांची केंद्र से, बस कुछ ही पलों में।

नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची में खान एवं भूतत्व विभाग की एक उच्च स्तरीय समीक्षात्मक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य में अवैध खनन पर पूरी तरह रोक लगाने और राजस्व संग्रह को बढ़ाने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को खनन पट्टों के आवंटन में पारदर्शिता बरतने को कहा। धनबाद में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संविदा पर 120 स्वास्थ्य कर्मियों को आज नियुक्ति पत्र सौंपे गए। 18 विभिन्न पदों के लिए आयोजित परीक्षा के बाद चयनित एएनएम स्टाफ, नर्स और फार्मासिस्टों की तैनाती ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के अस्पतालों में की जाएगी। पाकुड़ के पूर्व भाजपा विधायक बेनी प्रसाद गुप्ता का आज 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। दोपहर अचानक तबियत बिगड़ने के बाद उन्हें सदर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों के अनुसार उनकी मृत्यु हृदय गति रुकने से हुई। उनके निधन की खबर से राजनीतिक गलियारों में शोक है। विश्व साइकिल दिवस पर आज राज्य भर में कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। सिमडेगा में मेरा युवा भारत द्वारा साइकिल रैली निकाली गई। रैली में युवाओं ने शहर का भ्रमण कर लोगों को पर्यावरण और सेहत के लिए साइकिल अपनाने का संदेश दिया। रांची सहित राज्य के कई जिलों में भीषण गर्मी और उमस का प्रकोप बढ़ गया है। पिछले 24 घंटों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। मौसम विभाग के अनुसार डाल्टनगंज में सर्वाधिक 40 डिग्री तापमान दर्ज किया गया, जबकि हजारीबाग में सबसे ज्यादा 2.4 मिलीमीटर बारिश हुई। रांची के शिव कुमार रमन ने भारतीय एथलेटिक्स संघ द्वारा आयोजित एथलेटिक्स मीट मैनेजर कोर्स की परीक्षा पास कर राज्य का मान बढ़ाया है। पंजाब के पटियाला में आयोजित इस राष्ट्रीय स्तर के कोर्स में देश भर के 21 प्रतिभागी शामिल हुए थे। इसमें खेल प्रतियोगिताओं के आधुनिक और तकनीकी संचालन का प्रशिक्षण दिया गया। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

समाचार मुख्यांश भी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम की 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम युवाणी सुनिएगा बस थोड़ी ही देर में।

0: 10 लाख की लॉटरी
1: मुझे।
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
5: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
6: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
7: अब प्रस्तुत है युवाओं को संबोधित दैनिक कार्यक्रम युवाणी।

इतिहास के पन्नों से आज जानते हैं माउंटबेटन प्लान के विषय में। माउंटबेटन यानी लॉर्ड लुईस माउंटबेटन भारत के अंतिम वॉयसराय थे। उन्होंने माउंटबेटन प्लान, जिसे 3 जून की योजना भी कहते हैं, इसकी घोषणा 3 जून 1947 को की थी। जैसा कि आप सभी सुधी श्रोताजन तथ्य से परिचित हैं कि हमारी आज़ादी की सुबह बंटवारे की काली रात के बाद आई। हमारे प्यारे देश को बांटने की योजना को ही माउंटबेटन प्लान कहते हैं। यह योजना भारत में ब्रिटिश शासन के अंत और सत्ता के हस्तांतरण के अंतिम योजना थी। इसी योजना के आधार पर 2 आज़ाद मुल्क भारत और पाकिस्तान अस्तित्व में आए। 1947 तक भारत की राजनीतिक स्थिति अत्यंत जटिल हो चुकी थी। द्वितीय विश्व युद्ध, स्वतंत्रता सेनानियों के अथक प्रयास और जनमानस में स्वतंत्रता की कमान के कारण लगातार बनते दबाव से ब्रिटिश हुकूमत सत्ता परिवर्तन को राजी हुई। परंतु इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतभेद भी बढ़ रहे थे। देश के विभिन्न हिस्सों में सांप्रदायिक ताकतों फन उठा चुकी थी और रातों रात सैकड़ों बस्तियां अग्नि का भोग बन जाती थी। ऐसी परिस्थिति में लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत की समस्या का समाधान प्रस्तुत किया। सर्वप्रथम इस योजना ने भारत का विभाजन कर भारत और पाकिस्तान नामक 2 स्वतंत्र राष्ट्रों का गठन करने का प्रस्ताव दिया। अपनी धूर्तता का परिचय देते हुए अंग्रेजों ने पंजाब और बंगाल का धार्मिक आधार पर विभाजन किया। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत यानी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और सिलहट में जनता संग्रह यानी प्लेबिसाइट की मंजूरी दी। इससे वहां रहने वाली जनता अपने भविष्य का निर्धारण स्वयं करे। आज़ादी के समय भारत में करीबन 565 देशी रियासती थी। इन पर राजे रजवाड़े काबिज थे। इन रियासतों को अपनी इच्छा से भारत या पाकिस्तान में शामिल होने का विकल्प दिया गया। इस प्रस्ताव के अनुसार ब्रिटिश सरकार द्वारा सत्ता का हस्तांतरण अगस्त 1947 में किया गया। माउंटबेटन योजना ने भारत की संपूर्ण स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया। इस माउंटबेटन प्लान की ही आधारशिला पर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 तामीर हुआ। इसी एक्ट के तहत भारत और पाकिस्तान को स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा प्राप्त हुआ। 3 जून प्लान ही ब्रिटिश शासन के अंत की औपचारिक शुरुआत थी। माउंटबेटन प्लान ने यह निश्चित कर दिया कि भारत के 2 टुकड़े होंगे और परिणाम स्वरूप 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र भी हुआ। परंतु इस विभाजन के कारण बड़े पैमाने पर जन स्थानांतरण, सांप्रदायिक हिंसा और जान माल की हानि हुई। लाखों लोग अपने गाँव घर गलियों चौबारों और शहरों को छोड़ दूसरे देश जाकर बसे। आखिरश दोनों देशों के मुखियाओं ने लाशों की सीढ़ी पर चढ़कर अपने अपने मुल्क का परचम लहराया। माउंटबेटन प्लान भारत और पाकिस्तान के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। इस योजना ने ब्रिटिश शासन का अंत किया और नए युग का मार्ग भी प्रशस्त किया। यद्यपि विभाजन के कारण अनेक मुश्किलों पैदा हुई, फिर भी यह योजना भारतीय स्वतंत्रता की दिशा में निर्णायक कदम सिद्ध हुई। आइए स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को नमन करते हैं और सुनते हैं यह गीत। गीतकार हैं रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी, आवाज दी है लता मंगेशकर ने, संगीतबद्ध किया है महबूब खान ने।

आइए अब चर्चा करते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत पर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत विश्व के सबसे प्राचीन और समृद्ध देशों में से एक है। भारत अपनी विविधता के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। यहाँ विभिन्न धर्मों, भाषाओं, संस्कृतियों, परंपराओं, वेशभूषाओं और खान पान के लोग रहते हैं। इतनी विविधताओं के बावजूद भारत एक मजबूत और अखंड राष्ट्र के रूप में स्थापित है। यही विशेषता भारत को अन्य देशों से अलग बनाती है। एक भारत श्रेष्ठ भारत इसी राष्ट्रीय भावना का प्रतीक है। यही देश की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक समन्वय को मजबूत करने का संदेश देता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत का अर्थ है विविधताओं के बावजूद एकजुट भारत। यही विचार हमें बताता है कि अलग अलग भाषाएं, संस्कृतियों और जीवन शैली होने के बावजूद हम सभी भारतीय हैं। हमारी पहचान केवल किसी राज्य, जाति या धर्म से नहीं बल्कि एक भारतीय नागरिक के रूप में भी है। जब देश का प्रत्येक नागरिक राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि मानता है और आपसी सम्मान और भाईचारे की भावना को अपनाता है तब भारत श्रेष्ठ बनता है। भारत को विविधताओं का देश कहा जाता है। यहाँ सैकड़ों भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु,

मलयालम और कन्नड़ जैसी अनेक भाषाएं देश की सांस्कृतिक धरोहर हैं। इसी प्रकार विभिन्न राज्यों को अपनी अलग संस्कृति, लोक कला, संगीत, नृत्य और त्यौहार भी हैं। उत्तर भारत में होली और दीपावली की धूम रहती है, वहीं दक्षिण भारत में पोंगल और ओणम बड़े उत्साह से मनाए जाते हैं। पूर्वोत्तर भारत की जनजातीय परंपराएं और पश्चिम भारत की लोक संस्कृति भी देश की पहचान है। इन सभी विविधताओं के बावजूद भारतीय संस्कृति का मूल भाव एकता, सहिष्णुता और भाईचारा है। आइए अब सुनते हैं फिल्म पूरब और पश्चिम का ये गीत। आवाज है महेंद्र कपूर की, गीतकार हैं इंदिवर, संगीतबद्ध किया है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: भारत की शक्ति उसकी विविधता और एकता में निहित है। जब देश का हर नागरिक आपसी प्रेम, सम्मान, सहयोग और भाईचारे की भावना के साथ कार्य करेगा, तब भारत वास्तव में श्रेष्ठ बनता है। आज आवश्यकता है कि हम सभी संकल्प लें कि देश की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करेंगे और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय योगदान देंगे। आइए अब चर्चा करते हैं कि आखिर हम भारत को टीबी मुक्त कैसे बना सकते हैं। भारत उन देशों में शामिल है जहां टीबी की चुनौती लंबे समय से बनी हुई है। टीबी एक संक्रामक बीमारी है। यह मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करती है, लेकिन यह शरीर के अन्य अंगों को भी प्रभावित कर सकती है। इस बीमारी को खत्म करने के लिए भारत सरकार टीबी मुक्त भारत अभियान चला रही है। इसका उद्देश्य देश को टीबी के बोझ से मुक्त करना और लोगों को स्वस्थ जीवन प्रदान करना है। इस अभियान की सफलता में जन जागरूकता, समय पर जांच, नियमित उपचार और धूम्रपान जैसी हानिकारक आदतों से दूरी बनाना महत्वपूर्ण है। इसलिए टीबी मुक्त भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए हमें धूम्रपान को ना कहना होगा। भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत टीबी की मुफ्त जांच और उपचार की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार का लक्ष्य है कि प्रत्येक मरीज की समय पर पहचान हो, उसे पूर्ण उपचार मिले। साथ ही पोषण सहायता, सामुदायिक जागरूकता और जन भागीदारी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। केवल सरकार के प्रयासों से ही ये लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता, समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी भी समझनी होगी। धूम्रपान हमारे शरीर के लिए काफी हानिकारक है। ये केवल टीबी ही नहीं बल्कि फेफड़ों के कैंसर, हृदय रोग, स्ट्रोक और कई गंभीर बीमारियों का कारण भी बन सकता है। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत लोगों को ये संदेश दिया जा रहा है कि अगर 2 सप्ताह से अधिक समय खांसी रहे, वजन लगातार कम हो रहा है, बुखार और पसीना लगातार आता हो, तो तुरंत स्वास्थ्य केंद्र जाएं और अपनी जांच कराएं। टीबी का समय पर पता चलना और दवा लेने से बीमारी पूरी तरह से ठीक हो सकती है। आइए युवाओं से भी इस विषय में उनकी राय जानते हैं।
1: मेरा नाम निधि मिश्रा है, मैं बागबरा में रहती हूँ और मैं ये कहना चाहूँगी कि धूम्रपान बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे गंभीर बीमारियाँ होती हैं, कैंसर जैसी बड़ी बीमारी होती है। अगर आपके परिवार में एक इंसान भी करता है तो उसका असर पूरे परिवार पे पड़ता है, क्योंकि इससे बीमारियाँ होती हैं जिससे परिवार पे असर पड़ता है। आप जल्दी अपनी जीवन की गति कम करते हैं और आपकी मृत्यु भी जल्दी हो जाती है, जिससे आपके परिवार पे असर पड़ता है। अगर आप शादीशुदा आपके बच्चे हैं तो और ज़्यादा उनके ऊपर इसका असर पड़ता है, इसीलिए धूम्रपान नहीं करनी चाहिए। अगर आप दिन में 3 से 4 सिगरेट पीते हैं तो उसमें पैसे भी बहुत ज़्यादा लगते हैं, तो आप फाइनेंशियली भी उस चीज़ को देख सकते हैं, पैसा बचा सकते हैं, उसको ना करके अपने स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हैं, गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं। इसको नहीं करना चाहिए और खुश रहें, अपने परिवार को परिवार के साथ रहें।
2: नमस्कार, मैं विनोद संकुसाई, जमशेदपुर। धूम्रपान क्यों नहीं करना चाहिए? धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए एक धीमा जहर है। सिगरेट के धुएं में मौजूद हजारों विषैले रसायन फेफड़े को नष्ट करते हैं और हृदय रोगों व कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों का कारण बनते हैं। यह हमारी शारीरिक क्षमता को कमजोर करता है और असमय मौत का जोखिम बढ़ाता है। इसके साथ ही साथ धूम्रपान करने से फेफड़े, मुंह, गले और ब्लडर सहित शरीर के कई हिस्सों में कैंसर होने का सबसे बड़ा खतरा रहता है। इसके कारण अस्थमा जैसी फेफड़ों की लाइलाज बीमारी होती है, जिसे सांस लेने में काफी ज्यादा दिक्कत होता है। सिगरेट पीने

0: हमारे रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है और हार्ट अटैक या स्ट्रोक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। इसके साथ साथ धूम्रपान करने से समय से पहले ही चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लगती है और त्वचा बेजान हो जाती है। इसके अलावा दांत पीले होने लगते हैं और मुंह से बदबू भी आती है। धूम्रपान करने वाले लोगों को फ्लू, निमोनिया और अन्य संक्रमण आसानी से जल्दी हो जाती है।
1: नमस्कार, मेरा नाम नितेश है, मैं बारीडी का रहने वाला हूँ। आज का टॉपिक है धूम्रपान। धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, ये बात हर सिगरेट गुटखा के उत्पादन पैकेट पर लिखी होती है। इसके बावजूद आज भी बढ़ती संख्या में लोग सिगरेट और तंबाकू का सेवन कर रहे हैं। डॉक्टर के अनुसार स्मोकिंग से लंग कैंसर, हार्ट डिजीज, अस्थमा, सांस से जुड़ी कई गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इतना ही नहीं, स्मोकिंग करने वाले व्यक्ति के आसपास मौजूद रहने से भी लोगों को पैसिव स्मोकिंग का भी शिकार होते हैं। युवाओं में बढ़ती स्मोकिंग की आदत चिंता का विषय बनी हुई है। हेल्थ एक्सपर्ट का कहना है कि स्मोकिंग छोड़ने से सिर्फ तुरंत ज़्यादा फायदा मिलना शुरू हो जाता है, लेकिन गंभीर बीमारियों का भी खतरा कम हो जाता है। सरकार और स्वास्थ्य विभाग के लगातार लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चला रहे हैं, लेकिन इस समस्या का निपटारण के लिए समझ और व्यक्तिगत दोनों का मिलकर प्रयास करना जरूरी है।
2: आइए अब अपने राज्य झारखंड के बारे में जानते हैं कि राज्य में शैक्षणिक संस्थान कौन कौन से हैं। झारखंड प्राकृतिक संसाधनों, आदिवासी संस्कृति और औद्योगिक विकास के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। वर्ष 2000 में बिहार से अलग होकर बने इस राज्य ने शिक्षा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति की है। आज झारखंड में अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शैक्षणिक संस्थान हैं। यहाँ उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, प्रबंधन और अनुसंधान के क्षेत्र में योगदान दे रहे हैं। राज्य के ये संस्थान न केवल झारखंड बल्कि पूरे देश के विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी धनबाद देश के प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थानों में से एक है। इसकी स्थापना 1926 में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस के रूप में हुई थी। वहीं 1950 में स्थापित XLRI देश के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित प्रबंधन संस्थानों में से एक है। जमशेदपुर के मरीन ड्राइव में स्थित इस संस्थान से शिक्षा प्राप्त कर विद्यार्थी देश विदेश की बड़ी कंपनियों में नेतृत्वकारी भूमिकाएं निभा रहे हैं। साथ ही भारत के प्रमुख राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में NIT जमशेदपुर का नाम भी शामिल है। इंजीनियरिंग, विज्ञान और तकनीकी अनुसंधान के क्षेत्र में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। विश्वविद्यालयों में भी हमारा राज्य झारखंड अग्रणी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय है, उच्च शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यहाँ मानविकी, सामाजिक विज्ञान, प्रबंधन और विज्ञान के विषयों की पढ़ाई होती है। इसके अलावा 1960 में स्थापित रांची यूनिवर्सिटी राज्य का प्रमुख विश्वविद्यालय है। इसके अंतर्गत कई महाविद्यालय संचालित हैं। साथ ही विनोबा भावे यूनिवर्सिटी भी उत्तरी झारखंड के लिए अहम है। यहाँ के अनेक कॉलेज इस विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं। यह उच्च शिक्षा के विस्तार में अहम भूमिका निभा रहा है।

इसी के साथ आज का कार्यक्रम युववाणी हम यहीं समाप्त करते हैं। कल किसी अन्य विषय पर फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने दोस्त साहिल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

युवाओं को संबोधित दैनिक कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:30 हो रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम दैनिक कार्यक्रम कल कारखाने।

इस कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को संजय प्रसाद का प्यार भरा नमस्कार। श्रोता मित्रों, आज के कार्यक्रम में हम आप लोगों को एक वार्ता सुनवाएंगे। विषय होगा बालिकाओं की सामाजिक स्थिति, प्रगति और चुनौतियां। साथ ही कुछ फिल्मी गीतों के माध्यम से हम आपके मनोरंजन का भी ख्याल रखेंगे और कौशल विकास योजना के विषय में जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले आज हम बात करते हैं विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर एक ऐसे संसाधन की जो न केवल हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है बल्कि हमारे शहरों को प्रदूषण मुक्त बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जी हाँ, आप अब तक समझ चुके होंगे कि हमारा इशारा किस तरफ है। यह साधन है साइकिल। हर वर्ष 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। इस दिन मनाने का उद्देश्य है लोगों को साइकिल के महत्व और इसके सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय लाभों के प्रति लोगों को जागरूक करना। दुनिया के अधिकांश शहर जैसे कि वायु प्रदूषण, ट्रैफिक जाम और बढ़ती ईंधन खपत जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। मोटर वाहनों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है जिससे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य हानिकारक गैसों का उत्सर्जन भी बढ़ रहा है। ऐसे में साइकिल एक सरल, सस्ता और पर्यावरण के अनुकूल विकल्प बनाकर सामने आती है। साइकिल चलाने से किसी भी प्रकार की धुआं या प्रदूषण नहीं होता। ये पूरी तरह से मानव शक्ति से चलने वाला वाहन है। यदि हम छोटी दूरी के लिए मोटरसाइकिल या कार के बजाय साइकिल का उपयोग करें तो वायु प्रदूषण के काफी हद तक कम किया जा सकता है। इससे न केवल पर्यावरण सुरक्षित रहेगा बल्कि ईंधन की बचत भी होगी। साइकिल हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। नियमित रूप से साइकिल चलाने से हृदय मजबूत होता है, शरीर की मांसपेशियां सक्रिय होती है और मोटापा, मधुमेह तथा उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियां जिसका होने के खतरे कम हो जाते हैं। आज की भागदौड़ भरी जीवन में जहां शारीरिक गतिविधियां लगातार कम होती जा रही हैं, साइकिल एक बेहतरीन व्यायाम का माध्यम बन सकता है। साइकिलिंग का एक और बड़ा लाभ है ट्रैफिक जाम की में कमी। यदि अधिक लोग साइकिल का उपयोग करें तो सड़कों पर वाहनों की संख्या कम होगी जिससे यातायात सुगम बनेगा और समय की भी बचत होगी। दुनिया के कई देशों और शहरों में साइकिल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए उल्लेखनीय सफलता प्राप्त कर रही है। वहां साइकिल ट्रैक, साइकिलिंग शेयरिंग सिस्टम और सुरक्षित साइकिल मार्ग विकसित किए गए हैं। भारत में भी कई शहरों में साइकिल लेन, साइकिलिंग अभियान शुरू किए जा रहे हैं। ये एक सकारात्मक संकेत है। हमारे शहर को स्वच्छ, स्वस्थ और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए केवल सरकार के पहल ही पर्याप्त नहीं होते बल्कि इसके लिए सभी नागरिकों की भागीदारी भी आवश्यक है। हम सभी संकल्प लें कि जहां भी संभव हो छोटी दूरी की यात्राओं के लिए साइकिल का उपयोग करेंगे। सप्ताह में कम से कम एक दिन साइकिल डे के रूप में मनाएंगे और अपने परिवार तथा मित्रों को भी प्रेरित करेंगे। विशेष रूप से युवाओं और बच्चों में साइकिल चलाने की आदत विकसित करना आज समय की मांग है। इससे उनमें स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और पर्यावरण संरक्षण की भावना भी मजबूत होगी। और अंत में विश्व साइकिल दिवस पर आइए हम सब ये संकल्प लें कि एक स्वच्छ, हरित और प्रदूषण मुक्त शहर के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएंगे। साइकिल अपनाएं, प्रदूषण भगाएं, स्वस्थ रहें और पर्यावरण बचाएं। श्रोता मित्रों, इन बातों के बाद कार्यक्रम को जारी रखते हुए आइए हम आप लोगों को अनु कुमारी की वार्ता सुनवाते हैं। विषय है बालिकाओं की सामाजिक स्थिति, प्रगति और चुनौतियां।

हो और जब पूरी आबादी शिक्षित होगी तभी हमारे देश या अन्य देशों को वास्तविक अर्थों में विकसित किया जा सकेगा। वैसे भी कहा गया है कि यदि आप एक बालिका को शिक्षित करते हैं तो इसका मतलब है कि आपने एक पूरे परिवार को शिक्षित किया है और आपने एक पूरे परिवार को एक समाज को शिक्षित किया है। एक बालिका को एक माता पिता कार्यकर्ता और नागरिक होने के लिए बहुत अधिक आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है और यह विश्वास उसे उचित शिक्षा द्वारा ही मिलता है। शिक्षा बालिकाओं के लिए एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन का अवसर प्रदान करती है, इसलिए बालिकाओं को बड़े पैमाने पर शिक्षा प्रदान करना बहुत महत्वपूर्ण है। एक शिक्षित बालिका के पास गरीबी से बचने का उच्च मौका होता है। सदियों से बालिकाओं को एक वस्तु तथा पुरुष की संपत्ति समझा जाता रहा है, मगर सच तो यह है कि अनेक बालिकाओं ने हर प्रकार के विपरीत और कठिन परिस्थितियों का डटकर सामना करते हुए उन पर विजय प्राप्त की और इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया। आज की बदली हुई तथा अपेक्षाकृत अनुकूल परिस्थितियों में बालिकाओं स्वयं को बदलने और पुरुष प्रधान समाज द्वारा रचित बेड़ियों से स्वयं को आजाद करवाने हेतु कृत संकल्प है। आज भी बालिकाओं को घर में काम में ज्यादा लगाया जाता है और समझाया जाता है कि घर गृहस्थी ही बालिकाओं को संभालना है। कम उम्र में शादी, कम उम्र में बच्चे हो रहे हैं जिससे बालिकाओं में पूर्ण विकास नहीं हो पाता है। वे पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं होने के कारण बीमारियों का शिकार होना पड़ता है। मुख्यतः उनमें हीमोग्लोबिन की कमी होती है जिससे जान भी उनकी जा सकती है। बालिकाओं की मानसिक स्थिति नैसर्गिक रूप से पुरुषों की अपेक्षा अलग है। उन्हें घर कार्य में ज्यादा रुचि होती है। बालिकाओं की सामाजिक स्थिति में तो कुछ सुधार आया है, किंतु गांवों में अब भी लैंगिक भेदभाव, पारंपरिक परंपराएं, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, निर्धनता, सामाजिक आर्थिक पहलू, घर से विद्यालय की दूरी आदि महिला शिक्षा में प्रमुख बाधाएं आती है। शिक्षा के क्षेत्र में व्याप्त असमानता को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने स्पष्ट किया है कि समानता का सम्मान करने के लिए शिक्षा जगत में व्याप्त लिंग भेद को समाप्त करना होगा, तभी देश का विकास होगा। विश्व शिक्षा रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि दुनिया के निर्धन देशों में बालिकाएं या महिलाएं घर के चार दीवारी में बंद हैं। अशिक्षित माँ अशिक्षित बालिकाओं को ही जन्म देती है और उनकी शादी कम उम्र में कर दी जाती है, जिससे गरीबी, अशिक्षा, जनसंख्या वृद्धि तथा शिशु मृत्यु दर में वृद्धि का एक अनंत चक्र प्रारंभ होता है। पुरातनवादी सोच तथा कमजोर सामाजिक ढांचे के कारण बालिकाओं को अपने बचपन में पिता, जवानी में पति तथा वृद्धावस्था में पुत्र पर निर्भर करना पड़ता है और बालिकाएं हमेशा दूसरों के लिए ही जीती है। स्वतंत्रता की रजत जयंती के बाद का समय विकास का स्वर्ग साबित हुआ। देश में कंप्यूटर तथा अन्य टेक्नोलॉजी का विकास, टीवी युग का प्रादुर्भाव, आधारभूत संरचना के साथ बड़े उद्योगों की स्थापना ने देश के विकास के कीर्तिमानों की नई इबादत लिख दी। बॉलीवुड, फैशन और मनोरंजन की दुनिया में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। बालिकाएं इस नव विकास की बयार पहुंची और स्थिति में काफी महत्वपूर्ण बदलाव आया। आज शहरों में और कुछ गांवों में भी बालिकाओं को किन्हीं भी मायनों में बालकों से कम और घर की चार दीवारी में कैद नहीं है। वे उच्च शिक्षित है, डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक व अंतरिक्ष यात्री भी है तथा हर तरह के उच्चतम पदों पर आसीन है। वे अपने वस्त्रों या जीवन शैली के साथ अपने जीवन साथी का चुनाव करने के लिए भी स्वतंत्र है। उनकी सुरक्षा और हित रक्षा के लिए संविधान में अलग 34 एक्ट प्रभावी है। बालिकाएं आज साबित कर दी है कि वे पुरुषों के समकक्ष नहीं बल्कि उनसे बेहतर है। समाज की कुछ उच्च शिक्षित बालिकाएं और उनके संगठन शायद यह समझते हैं कि मन चाहे कम वस्त्र पहनना, रोक टोक रहित मुक्त जीवन जीना ही वांछित बदलाव है। इस बदलाव का उनके पास कोई तर्क युक्त जवाब नहीं है, सिवाय इसके कि सदियों से चले आ रहे रहन सहन व आचार व्यवहार के हर नियम को उन्हें बस चुनौती देना है। इस बात में कोई संशय नहीं है कि बालिकाएं अपने जीवन में स्कूल और घर के सीमित दायरे के लिए नहीं बनी है, फिर भी उनको यह नहीं भूलना चाहिए कि घर ही उनका किला और सबसे बड़ा कार्य क्षेत्र है जिसकी

0: अकेली आर्किटेक्ट है, जिसमें वह एक सफल पत्नी और एक आदर्श माँ बनकर बच्चों का पालन पोषण कर उनका और देश का भविष्य संवारती है। घर की हर जिम्मेदारी को निभाकर वह अपने पति की धुरी और खुशहाल घर की नींव बनकर दिखाती है। ऐसे खुशहाल घरों से ही देश ताकतवर बनता है। ऐसे घरों से ही एक आईएएस, एक आईपीएस, एक आईएफएस देश की सीमा पर लड़ने वाले फौजी तैयार होते हैं। लेकिन बालिकाओं को अपने स्वास्थ्य, पोषण, खुशियों एवं अन्य सामान्य जरूरतों का ध्यान रखना भी जरूरी है। उसे घर में उतना ही सम्मान मिले जितना कि घर का पुरुष घर के बाहर काम करके अर्जित करता है। जरूरत पड़ने पर उसे इसके लिए कठोर बनकर भी दिखाना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में भी बदलाव की बयार पहुंचने लगी है। मनोरंजन और संचार के साधन जैसे टीवी, मोबाइल गांवों में भी पहुंचने लगे हैं। सरकार द्वारा गांवों में गरीबों के घरों में भी शौचालय बन रहे हैं, जिससे बालिकाएं को बाहर नहीं जाना पड़ता है। यह बहुत बड़ा बदलाव है और यह बयार तेज होनी चाहिए। एक बात और, समाज की जो रूढ़ियां, नियम या परंपराएं होती है, वे सारी की सारी गलत नहीं होती है। अतः जो भी बदलाव हो वे तर्कसंगत होनी चाहिए और उसमें दूसरों के हितों का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। बालिकाओं को समय, स्थान, अपने परिवार, अपनी परिस्थिति और क्षमता के अनुसार ही उपयुक्त बदलाव को अपनाना होगा और तभी क्रमिक तरीके से, ताकि अनावश्यक टकराव को टाला जा सके। वर्तमान में बालिकाओं ने साबित कर दिया है कि जीवन की दौड़ में वह बालकों से आगे है। वही जीवन के असली कलाकार है और बालक उनके हाथों का मात्र रंग और कागज है। यह दुनिया पल पल बदलती रहती है और बालिकाओं को भी स्वयं को मौजूदा परिस्थितियों के अनुसार लगातार बदलते रहना होगा। यह तय है कि बालिका या नारी कोई वस्तु या दया की पात्र नहीं है। सभी को पता है कि माँ के रूप में एक नारी को जब लगता है कि उनके बच्चों पर कोई खतरा है तो उनकी रक्षा करने के लिए वह रणचंडी का रूप धारण करने में तनिक भी देर नहीं लगाती है। बालिकाओं को आज विद्यालय में हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध है। सरकार शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए स्कूल ड्रेस, किताब, कॉपी, साइकिल, यहाँ तक कि लैपटॉप भी दे रही है। साथ ही छात्रवृत्ति दी जा रही है। स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए उन्हें आंखों के चश्मे, दवाइयाँ भी मुफ्त में स्कूल या कॉलेजों में दिए जा रहे हैं। इसलिए बालिकाओं को इन सभी सुविधाओं का लाभ उठाते हुए जागरूक बनकर आगे बढ़े एवं औरों को भी आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करें। देश में हर बच्चे, बालक या बालिका, सभी को शिक्षित होना अति आवश्यक है। शिक्षा से ही इंसान का बदलाव संभव है। शिक्षित इंसान हर क्षेत्र में अपने कार्य को सही अंजाम तक पहुंचाता है। एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए शिक्षित होना अति आवश्यक है और बालिकाओं के शिक्षित होने से उनकी आने वाली पीढ़ी भी तरक्की करेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। इससे घर, समाज और पूरे देश का विकास होगा और बालिकाओं को अपने आप को भी शारीरिक रूप से इतना मजबूत बनना होगा जिससे कि वे बलात्कार या घरेलू हिंसा का शिकार नहीं बनेंगी। एक मुख्य काम है शौचालय का निर्माण हर घर में हो, यह जिससे कि बालिकाओं को बाहर शौच के लिए जाना ना पड़े और वे सुरक्षित रहें और मासिक धर्म आने पर वे पैड का इस्तेमाल करें, जो कि सभी विद्यालयों में मुफ्त में दी जाती है। इन सब बातों का बालिकाओं को अपने जीवन शैली में अपनाना अपना परम कर्तव्य समझें। सभी बालिकाओं को अपने और समाज को, देश में प्रोत्साहित करें ताकि समाज में जो बालिकाएं इन सुविधाओं से वंचित है वे इनका लाभ उठाकर स्वयं को सुरक्षित रखें और पूरे देश को सुरक्षित रखने हेतु अपना योगदान दें। खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा भी समझे कि तेरी रजा किया है। बालिकाओं को अपने को मजबूत बनाकर हमें समाज और देश को आगे बढ़ाना है।
1: बालिकाओं की सामाजिक स्थिति, प्रगति एवं चुनौतियां, इस विषय पर अभी आप श्रोता अनु कुमारी से उनकी वार्ता सुन रहे थे। और अब आइए कार्यक्रम के अगले चरण में हम आप लोगों को लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में एक प्यारा सा गीत सुनवाते हैं, जिसे हमने आपके लिए लिया है फिल्म आया सावन झुमके। शब्द आनंद बख्शी के हैं और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के।

0: और इस गीत के बाद आइए सुनते हैं एक संदेश।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
0: और अब हम बात करेंगे कौशल विकास योजना की, जो युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। दुनिया में भारत के युवा जो हैं वो नाम कमा रहे हैं, हमारे देश की बड़ी आबादी युवा है, और यदि इस युवा शक्ति को सही प्रशिक्षण और कौशल मिले तो ये देश के विकास को नई ऊँचाइयों तक पहुँचा सकती है। इसी सोच के साथ केंद्र सरकार ने कौशल विकास योजना को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं शुरू की हैं। कौशल विकास का अर्थ है किसी व्यक्ति को किसी विशेष कार्य या व्यवसाय के लिए आवश्यक व्यवहारिक ज्ञान और प्रशिक्षण प्रदान करना। आज के समय में केवल डिग्री ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि तकनीकी और व्यवहारिक कौशल भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। सरकार की प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY के तहत युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में निशुल्क प्रशिक्षण दिए जाते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉनिक्स, IT, स्वास्थ्य सेवाएं, पर्यटन, रिटेल, ऑटोमोबाइल्स, ब्यूटी एंड वेलनेस, निर्माण कार्य तथा अन्य कई क्षेत्र शामिल हैं। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र भी दिया जाता है, जिससे उन्हें रोजगार प्राप्त करने में सहायता मिलती है। कौशल विकास कार्यक्रमों का एक बड़ा लाभ ये भी है कि युवा प्रशिक्षण प्राप्त कर अपना छोटा व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और दूसरों को भी रोजगार दे सकते हैं। इससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी बल मिलता है। आज डिजिटल युग में नई तकनीकों की मांग काफी तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में डिजिटल स्किल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एंट्री, कंप्यूटर संचालन, डिजिटल मार्केटिंग जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण युवाओं के लिए नए अवसर खोल रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी कौशल विकास योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। महिलाएं, दिव्यांगजन तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग इन योजनाओं का लाभ उठाकर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं। प्रिय श्रोताओं, यदि आप या अपने परिवार के कोई सदस्य रोजगार की तलाश में हैं या अपने कौशल को बेहतर बनाना चाहते हैं तो अपने निकटतम कौशल विकास केंद्र या जन सेवा केंद्र से संपर्क कर इन योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम सभी मिलकर कौशल विकास को अपनाएं, अपनी प्रतिभा को निखारें और आत्मनिर्भर भारत बनाने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। और अब कार्यक्रम के अंतिम चरण में आइए हम सुनते हैं एक प्यारा।

यशुदास और हेमंती शुक्ला की आवाज़ में आप सुन रहे थे चश्मे बद्दूर का ये गीत। गीत लिखा था इंदु जैन ने और धुन बनाई थी राजकमल ने। इस गीत के साथ ही आज का कल कारखाने कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। अगली मुलाकात तक के लिए संजय प्रसाद को अनुमति दीजिए।

0: श्रमिक बंधुओं को संबोधित दैनिक कार्यक्रम कल कारखाने अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6 बजने वाले हैं। अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा। आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा।
2: ATF प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया। ATF प्राइस फॉर द एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
1: मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बसें BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
3: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए एक लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है। और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
1: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा का समय घटकर लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा। श्री वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता DK शिवकुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धारमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉ. जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री DK शिवकुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल के बीच राजनीतिक घटनाक्रम तेज हो गया है। तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित विधायक ऋतव्रत बैनर्जी ने राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता पद पर दावा करते हुए 58 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। विधानसभा सूत्रों के अनुसार 58 विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र अध्यक्ष रथेंद्र बोस को सौंपा गया है। इसमें ऋतव्रत बैनर्जी के गुट को वास्तविक तृणमूल कांग्रेस के रूप में मान्यता देने की मांग की गई है। उधर कोलकाता में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर विभाजन की साजिश रचने का आरोप लगाया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। आग पर काबू पा लिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति

0: China's Wang Hongyang in a comeback victory, winning 8-21, 22-20, 21-15. India also registered a notable win in mixed doubles with Rohan Kapoor and Ritvika Gadde, defeating Chinese Taipei Yang Po Suan and Hu Lingfang. And with that, we end this news bulletin.
1: हिंदी और अंग्रेजी समाचार बुलेटिन आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर शाम के 6:10 हुए हैं। अब सुनिए कार्यक्रम।
2: झारखंड के लोकगीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नीलू का जोहार। आज के कार्यक्रम में आप सुनेंगे संताली लोकगीत। कलाकार हैं जेवा मुर्मू और साथी।

0: अभी आप सुन रहे थे जोबा मुर्मू की आवाज़ में संताली लोकगीत। इस संताली लोकगीत के साथ ही झारखंड के लोकगीतों का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। जोहार।
1: झारखंड के लोकगीत, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:20 होने को है। अब संस्कृत में समाचार सुनेगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
2: इयम आकाशवाणी। संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका साधना शर्मा। आदौ मुख्याः वार्ताः। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन विमानन परिवहन मार्ग आधारभूत संरचना क्षेत्रेषु ETF मूल्यस्य स्थिरीकरणार्थं तैल विपणन समवायेभ्यः 1,000 crore rupees आय व्यय सहायतां प्रदातुं कतिपयाः महत्वपूर्णाः योजनाः अनुमोदिताः। कर्णाटक राज्यस्य नूतन मुख्यमंत्री DK शिवकुमारः शपथग्रहणं कृतवान्। पश्चिम बंगालस्य तृणमूल कांग्रेस दलात् निष्कासित TMC विधायक ऋतव्रत बनर्जी इत्यनेन उक्तं यत् पक्षे प्रायः 60 विधायकाः सन्ति। दिल्ली नगरस्य मालवीय नगरे विश्रांति निलये भीषणाग्निकाण्डः, 21 जनाः मृताः। अपि च भारतं 25,000-2,000 वर्षे विश्वस्य द्वितीयं बृहत्तमं सौर विकास विपणकं जातम्। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन विमानन परिवहन मार्ग आधारभूत संरचना क्षेत्रेषु कतिपयाः महत्वपूर्णाः योजनाः अनुमोदिताः। पश्चिम एशिया संकट कारणेन वर्धितेषु इन्धन मूल्येषु भारतीय विमान सेवानां कृते विमान इन्धनस्य अर्थात् ETF मूल्यस्य स्थिरीकरणार्थं तैल विपणन समवायेभ्यः 1,000 crore rupees आय व्यय सहायतां प्रदातुं प्रशासनं निर्णयं कृतवत्। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव अवदत् यत् एतेन विमानन क्षेत्र संबद्धा प्राय 77,00,000 आजीविका सुरक्षिता भविष्यन्ति। एषा सहायता योजना 36 पर्यन्तं प्रवर्तिष्यति। मंत्रिमंडलेन दिल्ली निकटवर्ती क्षेत्रे वायु प्रदूषण नियंत्रणार्थम् अपि एकस्याः बृहत्याः योजनायाः अनुमोदनं कृतम्। आर्थिक सम्बद्धया मन्त्रिमण्डलीय समित्या ओडिशा राज्ये रामेश्वरात् पारादीप पर्यन्तं 360 अधिक 100 किलोमीटर परिमितस्य नूतन तटीय राजमार्ग निर्माणाय अनुमतिः प्रदत्ता। एतद् अतिरिक्तं समित्या बिहार राज्ये राष्ट्रिय राजमार्गयोः 31 तथा 31 अधिक 200 च इत्येतयोः खगड़िया पूर्णिया खण्डस्य चतुर्पथ परियोजना अपि अनुमोदिता। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः अद्य राष्ट्रिय आदिवासी सम्मेलनस्य उद्घाटनं कृतवती। नवदिल्ल्याम् आयोजितायाम् एकीकृत जनजातीय विकास समवायानां तथा एकीकृत जनजातीय विकासायोगस्य च विस्तार विषयिकायां समायोजितायां सभायां राष्ट्रपतिः अवदत् यत् देशव्यापिनः जनजातीय समाजस्य संस्कृतिः अत्यन्ता समृद्धा अस्ति, अतः जनजातीय समुदायस्य उन्नत्यर्थाः विशेष प्रयत्नाः करणीयाः। तया उक्तं यत् विकास कार्याणि अन्तिम गृहं यावत् अन्तिम ग्रामं यावत् च अवश्यं प्राप्नुयुः। राष्ट्रपतिः चिन्ताम् अपि व्यक्तीकृतवती यत् अद्यापि केचन जनजातीय वर्गाः शासनस्य विविधाभिः योजनाभिः अनभिज्ञाः सन्ति।
3: PM जनमन योजना के तहत जनजातीय समुदाय में भी सबसे पिछड़े समूहों के 20,000 से अधिक गांव तक विकास कार्यक्रम को पहुंचाने का लक्ष्य है। हम सब जानते हैं 75 जो ग्रुप्स वो है PVTG सबसे पिछड़े, अभी भी और कोई पेड़ के मंच के पे रहते हैं, उनके कोई जमीन नहीं, जमीन था लेकिन रिकॉर्डेड नहीं, इसलिए उनको जमीन देकर घर बनाना, उनके हर चीज के लिए अधिकारी लोगों को जितने कर्मचारी लोगों का दायित्व है।
2: राष्ट्रपति ही सर्वासाम संस्थानाम हितधारकान आहूतवती यत् जनजातीय युवभ्यः सम्मानजनक जीविकायाः तथा प्रत्येकं जनजातीय बालकाय विद्यालय शिक्षायाः सुनिश्चितीकरणं क्रियताम्।
3: ये दूर दराज के लोग जो जंगलों में रहते हैं उन तो एक रोड मैप बनाना चाहिए। आप कौन सी गांव को कवर किया, कौन सी पॉपुलेशन कहते ट्राइबल के कितने लोग हैं, कहां तक हम पहुंच पाए कहां तक नहीं पाए। पढ़ा लिखा होते हुए भी बहुत लोग बहुत चीजें जानते हैं लेकिन वो खुलते नहीं, लेकिन उनको खुलना पड़ेगा, शामिल होना पड़ेगा देश के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए, आदिवासी लोगों को आगे लाने के लिए तो खुद को ही कुछ करना पड़ेगा।
2: कर्णाटकस्य नूतन मुख्यमंत्री डीके शिवकुमारः शपथ ग्रहणं कृतवान्। कर्णाटक राज्ये कांग्रेस विधानमंडलस्य दलस्य नेता डीके शिवकुमारः अद्य बेंगलुरु नगरे राज्यस्य 25तमः मुख्यमंत्री रूपेण शपथ ग्रहणं कृतवान्। राज्यपालः थावरचंद गहलोतः तस्मै पदस्य गोपनीयतायाश्च शपथं प्रदापितवान्। वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर जी परमेश्वरः उपमुख्यमंत्री पदेन शपथं गृहीतवान्। अन्ये च द्वादश मन्त्रिणः अपि मन्त्रिपरिषदि सम्मिलिताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मुख्यमंत्रिणे शुभकामनाः प्रदत्तवान्। संस्कृत वार्तायाः संस्करणम् इदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। समम् एव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। पश्चिम बंगालस्य पूर्व सत्तारूढ दले तृणमूल कांग्रेस दले आंतरिक मतभेदाः प्रतीताः। दलात् निष्कासितः टीएमसी विधायकः ऋतव्रत बनर्जी इत्यनेन उक्तं यत् तस्य पक्षे प्रायः 60 विधायकाः सन्ति। अस्य कथनस्य कारणेन राज्य विधानसभायां सत्ता संतुलन परिवर्तनस्य संभावनां प्रति चर्चाः तीव्राः जाताः। तस्य समूहेन विधानसभायाः अध्यक्षाय रतीन्द्र बोस महोदयाय पत्रं प्रेषितं यत् स्वदलस्य वास्तविक तृणमूल कांग्रेस इति नाम्ना मान्यतां दातुम् आग्रहः कृतः। अस्मिन् अन्तरे पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता नगरे आयोजितायां जनसभायां भारतीय जनता पार्टी इत्यस्य उपरि दलविभाजनस्य षड्यंत्र रचनायाः आरोपं कृतवती। एतेषां राजनैतिक घटनाक्रमाणां प्रति संपूर्ण राज्यस्य दृष्टिः केन्द्रीभूता वर्तते। दिल्ली नगरस्य मालवीय नगरे विश्रांति निलये भीषणाग्नि कण्डकाण्डः 21 जनाः मृताः। राष्ट्रीय राजधान्यां दिल्ल्यां मालवीय नगर क्षेत्रस्य एकस्मिन् विश्रांति निलये भीषणाग्नि कांडे 21 जनाः मृत्युम् उपगताः, अनेके च आहताः अभवन्। दक्षिण दिल्ल्यारक्षी विभागस्य उपायुक्तः अनंत मित्तलः अवदत् यत् अग्निशमन विभागस्य 8 वाहनैः सह अग्निः नियन्त्रितः। आरक्षिणाम् अग्निशमनस्य तथा अन्येषाम् आपत्कालिक सेवानां संयुक्त प्रयत्नैः 40+ जनाः सुरक्षित रूपेण उद्धृताः, चिकित्सोपचारार्थं च चिकित्सालयेषु प्रेषिताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, गृहमंत्री अमित शाह तथा दिल्ली राज्यस्य मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अस्मिन् दुखदे घटनाक्रमे शोकं प्रकटितवन्तः। वार्षिक सौर क्षमता वृद्धौ भारतम् अमेरिकाम् अतिक्रमितवत्। भारतं 25+ वर्षे विश्वस्य द्वितीयं बृहत्तमं सौर विकास विपणकम् अभवत्। भारते स्थापित सौर क्षमतायाः उल्लेखनीयं 55+ GW परिमितं अतिक्रमितम् अस्ति, येन देशस्य 50% जीवाश्महीन इंधन क्षमतायाः लक्ष्यं साधयितुं नियत समयात् पूर्वमेव तस्य राष्ट्रीय निर्धारितं योगदानं पूरयितुं च सहायं भवति। केन्द्रीय नवीन नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी वर्यः अद्य उक्तवान् यत् देशस्य सौर विकास गाथा वैश्विक मानदंडानि स्थापयति। अरावली पर्वत श्रेण्याः सीमांकन समीक्षार्था सर्वोच्च न्यायालयेन विशेषज्ञ समितिः निर्मिता। सर्वोच्च न्यायालयेन अरावली पर्वत श्रेण्याः परिभाषा सीमांकन संबद्ध विषयाणां स्वतंत्र समीक्षार्थं उच्चाधिकार युक्तायाः विशेषज्ञ समितेः गठनस्य निर्देशः प्रदत्तः। अस्याः समितेः अध्यक्षतां भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषदः महानिदेशिका कंचन देवी वहिष्यति। न्यायालयेन समितये चालितवर्षस्य अगस्त मासस्य एकत्रिंशत्तम दिनांक पर्यन्तं स्वप्रतिवेदनं समर्पयितुम् आदेशः प्रदत्तः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य केन्द्रीय मन्त्रिणः चिराग पासवानस्य लेखं सामाजिक अन्तर्जाल माध्यमेन प्रदर्शितवान्। तेन उक्तं यत् लद्दाख प्रदेशे प्राप्तं अद्वितीयं वेरीफलं नवीनावसराणां विकासस्य प्रतीकः अस्ति। लेखे लद्दाखस्य उद्यमशीलतया तथा मूल्यवर्धनद्वारा विकासस्य नूतनद्वाराणि उद्घाटितानि इति प्रकाशितम्। इति वार्ताः।
1: संस्कृत समाचार अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:30 और 10 सेकंड हुए हैं। अब प्रस्तुत है महिलाओं के लिए साप्ताहिक कार्यक्रम घर गृहस्थी।

0: घर गृहस्थी कार्यक्रम सुनने वाली सभी ग्रामीण बहनों को कृष्णा कावेरी
1: और नीलू का
0: जोहार।
1: कृष्णा, आज हमारी बहनें हैरान होंगी कि एक साथ दो दो बहनें कैसे आ गई।
0: हाँ नीलू, पर मुझे लगता है हमारी बहनें आज खुश भी बहुत हुई होंगी, क्यों बहनों?
1: हाँ भाई, क्यों ना हो। हम सबका आपस में मिलना और ढेर सारी बातें करना, बिल्कुल ऐसा जैसे भरी दोपहरिया में बदरिया छा गई हो।
0: अरे नीलू, केवल बातें ही करती रहोगी कि हमारी बहनों को कुछ बताओगी भी कि आज के कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण क्या है?
1: अरे कृष्णा, तुम तो एकदम उतावली हो गई हो, और बनो हो भी क्यों नहीं। आज इसकी बातचीत जो हुई है शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मधुमाला से।
0: हाँ नीलू, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। बहनों, आज आपको डॉक्टर मधुमाला बताएंगी कि प्रसव के बाद माँ और नवजात शिशु की देखभाल कैसे करें, पर बहनों उसके लिए आपको करना होगा थोड़ा इंतजार।

0: कृष्णा कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बहनों को जानकारी देते हैं सशक्त टीकाकरण और सुरक्षित बचपन के विषय में। बहनों, सशक्त टीकाकरण सुरक्षित बचपन ये भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही एक महत्वपूर्ण जन स्वास्थ्य अभियान है। ये पहल बच्चों और गर्भवती महिलाओं को जानलेवा बीमारियों से बचाने और हर घर तक सुलभ टीकाकरण सेवा पहुंचाने के लिए चलाया जा रहा है। बहनों, इस अभियान का क्या उद्देश्य है ये बताएंगी कृष्णा।
1: बहनों, सशक्त टीकाकरण सुरक्षित बचपन का अर्थ बच्चों को समय पर टीके लगवाना जो उन्हें कई गंभीर बीमारियों से बचाता है। इसमें शिशुओं और बच्चों को कई महत्वपूर्ण टीके लगाए जाते हैं। इससे बच्चों की इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। बच्चों में विकलांगता, गंभीर बुखार और मृत्यु का खतरा भी कम हो जाता है। बहनों, आप सही समय पर सही जरूरी टीके अपने बच्चों को जरूर लगवाएं ताकि वे स्वस्थ और सुरक्षित रहें। आप अपने बच्चों को टीका लगवाने के लिए अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क कर सकती हैं। यदि आपके अपने घर के आसपास मौजूद टीकाकरण केंद्र की जानकारी ना हो तो आप स्वास्थ्य मंत्रालय की राष्ट्रीय स्वास्थ्य पोर्टल का उपयोग कर अपने क्षेत्र के टीकाकरण केंद्र की जानकारी प्राप्त कर सकती हैं।
0: वाह कृष्णा, तुमने तो हमारी बहनों को बहुत ही अच्छी जानकारी दी। हमारी बहनें इसका अवश्य लाभ उठाएंगी और स्वस्थ भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएंगी।

0: घरेलू हमारी बहनें कई बार सही जानकारी के अभाव में ऐसी बीमारियों की चपेट में आ जाती हैं जिनसे उनकी जान भी जा सकती है। ऐसा ही एक बीमारी है सर्वाइकल कैंसर, जिसके बारे में अगर सही जानकारी हो तो इससे बचा जा सकता है।
1: हाँ कृष्णा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। हमारी बहनें कैंसर का नाम सुनकर ही डर जाती है। उन्हें लगता है कि एक बार अगर कैंसर हो जाए तो बचना मुश्किल है, पर बहनों ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप थोड़ी जागरूक रहेंगी तो सर्वाइकल कैंसर से बच सकती हैं। इसके लिए ये जानना बहुत ही जरूरी है कि इसके होने के क्या कारण है। बहनों लगभग 99% सर्वाइकल कैंसर ह्यूमन पेमिलोमा वायरस यानी HPV के कारण होता है। ये एक यौन संचारित वायरस है। इस कैंसर होने के अन्य कारण हैं कम उम्र में यौन संबंध, धूम्रपान, कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता और बार बार कई बच्चों का जन्म होना। बनो सर्वाइकल कैंसर के शुरुआती अवस्था में कोई लक्षण दिखाई नहीं देता, पर जब बीमारी बढ़ जाती है तो मासिक धर्म के समय असामान्य रक्तस्राव होता है, मेनोपॉज के बाद भी रक्तस्राव होता है और सामान्य से अधिक योनि स्राव होता है और दुर्गंध भी आता है। ऐसी कोई भी स्थिति हो तो समझ लें कि ये सर्वाइकल कैंसर का बढ़ती अवस्था है। पर बहनों ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये ठीक नहीं होता। अगर आपको थोड़ा भी आभास हो कि कुछ दिक्कत हो रही है तो तुरंत डॉक्टर से मिले और बिना घबराए हिचकिचाए अपनी परेशानी खुलकर बताए। बहनों अब तो HPV टीकाकरण भी होने लगा है जो इस कैंसर से आपको बचा सकता है। ये वैक्सीन 9 से 14 साल की लड़कियों को दी जाती है, इसलिए अपने बच्चियों को टीकाकरण जरूर करवाएं। हमारी वे बहनें जिनकी उम्र 26 साल तक हो गई है वे भी डॉक्टर की सलाह पर HPV का टीका लगवा सकती हैं।

0: नीलू, तुमने तो हमारी बहनों को बहुत ही अच्छी जानकारी दी। जब हमारी बहनें स्वस्थ रहेंगी तो आत्मनिर्भर बनने का प्रयास भी अवश्य करेंगी।
1: बिल्कुल सही कहा कृष्णा तुमने। हमारी बहनें छोटे छोटे समूहों से जुड़कर निश्चित रूप से आत्मनिर्भर बन सकती है।
0: हाँ नीलू, हमारी बहनें अपनी जैसी और भी बहनों से जुड़कर हर महीने जो छोटी छोटी रकम अपने घर के खर्चे में से बचाकर रखती हैं, इन्हें अगर एक साथ मिला लें तो ये अच्छी खासी राशि जमा हो जाएगी। इसे वे आपस में जरूरतमंद महिलाओं को बहुत कम ब्याज पर लोन भी दे सकती हैं, जिससे वे अपना छोटा सा व्यापार भी शुरू कर सकती हैं। हमारी बहनें कौशल विकास समूहों के जरिए सिलाई कढ़ाई, अचार पापड़ बनाना, जैविक खेती और हस्तशिल्प जैसे कई कामों की ट्रेनिंग भी ले सकती हैं। बहनें अकेले में कोई भी नया काम करने से डरती हैं, पर अगर समूह में होती हैं तो उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और वे खुलकर समाज के सामने आकर अपने बनाए उत्पादों को बेच भी सकती हैं।
1: सही कहा कृष्णा तुमने। अगर आप किसी समूह से जुड़ना चाहती हैं या अपने क्षेत्र में ऐसा समूह बनाना चाहती हैं तो आप अपने गांव के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता या सरकारी बैंक सखी से संपर्क करें।

बनो माँ बनना बड़े ही गर्व की बात है, पर जब कोई महिला पहली बार माँ बनती है तो उसके मन में कई तरह की उलझनें चल रही होती है कि शिशु के जन्म के बाद क्या करे और क्या ना करे। इन सभी समस्याओं का हल हमें देंगी शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मधुमाला। तो आइए इनसे जानें प्रसव के बाद माँ और नवजात शिशुओं की देखभाल कैसे की जाए।

0: प्रसव के बाद माँ और नवजात शिशु की उचित देखभाल कैसे करें? बहनों, इसी विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मधुमाला, जो टाटा मोटर्स अस्पताल की शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर मधुमाला, आज के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
1: नमस्कार कृष्णा जी।
0: जी डॉक्टर। डॉक्टर, हम लोग कार्यक्रम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप हमारी बहनों को ये बताइए कि प्रसव के बाद माँ और नवजात शिशु की देखभाल में किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहें।
1: मैं माँ बहनों को ये बोलूंगी कि बच्चा को अपने पास रखना है
0: जी।
1: जैसे ही प्रसव होता है उसके तुरंत बाद बच्चे को अपना दूध पिलाना है, अपने शरीर की गर्माहट देनी है, वो बहुत जरूरी होता है
0: जी।
1: बच्चे के लिए। दूध और गर्माहट दोनों प्रसव के तुरंत बाद,
0: जी
1: है ना? हाँ, तो ये देना है और उसको अच्छे से कपड़े वगैरह पहनाना है। कपड़े प्रसव से पहले ही आपको खरीद करके रखना है और उसको कपड़े पहनाने हैं। बस ये चीज ध्यान रखना है कि दूध और ये बहुत जरूरी है, गर्माहट।
0: जी डॉक्टर।
1: जी
0: डॉक्टर, मेरा अगला सवाल ये है कि प्रसव के बाद माँ का आहार यानी डाइट कैसा होना चाहिए ताकि माँ भी जल्दी रिकवर हो जाए, स्वस्थ हो जाए और शिशु को पर्याप्त दूध भी मिल सके।
1: जी थैंक यू कृष्णा जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है क्योंकि हमारे पास बहुत, जैसे हम सुनते हैं कि हमारी सास हमको उबला खाना देती है, हमारी सास हमको ये नहीं खाने देती, वो नहीं खाने देती, ये बहुत सवाल लेकर के महिलाएं हमारे पास आती हैं।
0: जी डॉक्टर।
1: तो ये है कि सबसे अच्छा, मैं बोलूंगी कि सबसे अच्छा आहार है जो प्रेगनेंसी में माँ खाती थी वो सब कुछ खाना है,
0: जी
1: सब कुछ खाना है, प्लस उसका और ज्यादा अमाउंट खाना है, ज्यादा मात्रा में खाना है ताकि माँ का दूध बढ़े।
0: जी डॉक्टर।
1: एक माओं का ये सवाल रहता है कि मेरा दूध बहुत कम है पहले दिन, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि खाने से उसका कोई मतलब नहीं है, माँ सब कुछ खाए पिए दूध अपने आप बन जाएगा।
0: जी
1: आपको सिर्फ खाना पीना है। और खाने में एक चीज बोलूंगी कि अगर आप मछली खाते हैं तो माँ को भी वो दीजिए हफ्ते में 3 बार, उससे दूध में अच्छी मात्रा जाती है जिससे कि बच्चे का दिमाग तेज होता है।
0: जी डॉक्टर।
1: तो कोई भी परहेज नहीं करना है, हाँ सिर्फ एक परहेज है, वो है बाहर का खाना, वो नहीं खाना है।
0: जी जी डॉक्टर। मेरा एक और सवाल है कि माँ का पहला गाढ़ा दूध नवजात शिशु के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है, इसके बारे में भी बहन को बताइए।
1: ये शुरू में जो वो एक दो बूंदी आता है इसको बोलते हैं कोलोस्ट्रम, और हिंदी में इसको, इसी को अमृत बोला जाता है बच्चे के लिए। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें माँ को जितनी भी बीमारियां अभी तक हुई होंगी उसके खिलाफ लड़ने की क्षमता होती है, जिसे कि एंटीबॉडीज बोला जाता है। वो सोचिए, वो माँ अपने दूध के द्वारा अपने बच्चे को देती है, कितनी अच्छी बात है कि बच्चे को वो एंटीबॉडीज मिल जा रही हैं।
0: जी डॉक्टर।
1: तो और ऊपर से वो इतना गाढ़ा दूध होता है कि उसको मतलब उसकी 2-3 बूंद ही पर्याप्त है बच्चे के लिए।
0: जी।
1: इसीलिए जो मैंने पहले सवाल में बताया कि जिन माओं की ये शिकायत रहती है कि मुझे दूध बहुत कम आ रहा है, वो दूध कम इसीलिए आता है क्योंकि वो एक तो गाढ़ा होता है और उसमें बच्चे की भूख मिटाने की प्लस बीमारियों से लड़ने की क्षमता उसमें भरपूर मात्रा में होती है। तो वो दूध बहुत ही ज्यादा जरूरी है, एक तरीके से उसकी तुलना अमृत के बराबर की गई है।
0: जी
1: तो
0: डॉक्टर,
1: वो जरूर अपने बच्चे को पिलाएं।
0: जी बहुत ही अच्छी बात है डॉक्टर। मेरे एक और सवाल है कि नवजात शिशु के नाल की यानी नाभि की देखभाल कैसे करें कि बच्चे की नाभि का घाव जल्दी से ठीक हो जाए?
1: नाभि पे कुछ लगाना नहीं होता है, कुछ
0: जी।
1: भी नहीं लगाना होता है
0: जी।
1: क्योंकि कुछ भी लगाने से वो इन्फेक्शन कर सकता है, शरीर में रोग पैदा कर सकता है,
0: जी डॉक्टर,
1: है ना? इसीलिए उसको साफ रखना चाहिए और सूखा रखना चाहिए।
0: वो खुद
1: तो
0: भी
1: वो अपने आप ही अप हाँ जी अपने आप ही 1 से 2 हफ्ते में वो सूख करके गिर जाएगा।
0: जी डॉक्टर, डॉक्टर एक और सवाल है कि नवजात शिशु के शरीर का तापमान सही रहे और बच्चा गहरी नींद में आराम से सोए, इसके लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
1: सवाल के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है।
0: जी
1: जैसा कि मैंने बताया कि बच्चे पैदा होते ही 2 इम्पोर्टेंट चीजें चेक करनी होती है, माँ
0: जी
1: का दूध तुरंत चालू करना और दूसरा अपने शरीर से चिपकाना, शरीर
0: जी
1: की गर्माहट, है
0: जी
1: ना,
0: जी
1: क्योंकि बाहर का तापमान तो कम रहता है इसलिए। तो अब बच्चे को उसके बाद गर्म कैसे रखा जाए, तो एक सिंपल सा नियम याद रखना है सारी महिलाओं को, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, माँ जितने कपड़े पहनती है उससे एक कपड़ा बच्चे को ज्यादा पहनाना है बस।
0: जी डॉक्टर
1: उदाहरण के लिए अगर माँ ने एक साड़ी ब्लाउज पहना हुआ है तो
0: जी
1: बच्चे को ऊपर 2 टी-शर्ट पहनाइए,
0: जी डॉक्टर
1: नीचे एक पैंट पहनाइए या लंगोट और मोजा ये टोपी ये पहना के रखिए। तो सर्दी होगी तो माँ एक्स्ट्रा कपड़े पहनेगी तो बच्चे को उसी के अकॉर्डिंग एक लेयर एक्स्ट्रा पहनानी है।
0: जी
1: तो बस ये चीज का ध्यान रखना है। और एक और चीज, जो दूसरा सवाल है आपका कि बच्चा अच्छे से सोए,
0: जी
1: उसके लिए क्या करना है, देखिए बच्चा क्यों बेड पे रखते बिस्तर पे रखते रोने लग जाता है, गोदी
0: जी
1: में रखते ही चुप हो जाता है, माओ का ये
0: डॉक्टर
1: सवाल रहता है। तो उसके लिए क्या करना है, बच्चा जब पेट में था तो
0: जी
1: एकदम ऐसे हाथ पर सिकुड़ के रहता है और जैसे ही हम उसको बिस्तर पे लिटाते हैं तो उसे लगता है कि अरे मुझे माँ से दूर कर दिया गया है।
0: जी डॉक्टर
1: तो इसलिए क्या करना है, जब आप बिस्तर पे सुलाएंगे तो उसको चारों तरफ से तकिया लगा दीजिए, तो
0: जी
1: उसको लगे उसका हाथ पैर ऐसे मुड़ के रहेगा तो उसको लगेगा कि हाँ माँ मेरे पास में ही है, तो
0: जी
1: उससे बच्चा ज्यादा समय तक आराम से सो पाएगा।
0: जी डॉक्टर, डॉक्टर मेरा एक और सवाल है कि जन्म के समय शिशु को कौन सा टीका लगता है और ये टीका लगवाना क्यों जरूरी है?
1: 3 टीके लगते हैं जन्म के तुरंत बाद में,
0: जी
1: BCG, हेपेटाइटिस बी एंड ओपीवी। वो तुरंत 3 ओपीवी मुंह से पिलाया जाता है और हेपेटाइटिस बी और BCG का दोनों का टीका लगता है, क्योंकि बीमारी से बचाना हमारे बच्चे को ये बहुत जरूरी है। तो
0: जी
1: अगर कोई ऐसी चीज है जो हमारे बच्चे को बचा सकता है बीमार होने से, और वो भी सीरियस बीमारी होने से, तो
0: जी
1: जानलेवा बीमारियों से, तो वो तो
0: डॉक्टर
1: हमको लगाना ही चाहिए, है ना। तो
0: जी
1: हेपेटाइटिस बी भी लिवर में इन्फेक्शन को बचाता है, तो वो भी बहुत जरूरी होता है लगाना, और पोलियो का टीका। हाँ, मैं माँ बहनों को एक चीज और बोलना चाहूंगी कि आंखों में काजल न लगाएं, नवजात शिशु को आंखों में काजल नहीं लगाना है और पाउडर नहीं लगाना है, ये 2 चीजों का ध्यान रखिए, उससे बच्चे को इन्फेक्शन और होने का चांस रहता है। और एक आखिरी चीज, माँ का दूध कभी भी कम नहीं होता है, ये बस चाहे ऑपरेशन से हुआ है आपका बच्चा या नॉर्मल डिलीवरी से बच्चा पैदा हुआ है, आप सिर्फ और सिर्फ अपना दूध पिलाइए क्योंकि वो अमृत है और बच्चे को जिंदगी भर बीमारियों से बचाता है।
0: डॉक्टर, बच्चे को कितने महीने तक सिर्फ माँ का ही दूध देना चाहिए?
1: ये बहुत जरूरी सवाल है। 6 महीने सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध देना चाहिए। 6 महीने के बाद में माँ के दूध के साथ साथ हम लोग घर का बना हुआ भोजन हम लोगों को शुरू करना चाहिए।
0: जी डॉक्टर, जी डॉक्टर बहुत ही अच्छी जानकारी दी है आपने। प्रसव के बाद माँ और नवजात शिशु की उचित देखभाल कैसे करें, इस विषय पर बहुत ही अच्छे से और विस्तार से आपने पूरी जानकारी दी डॉक्टर मधुमाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद कृष्णा जी, धन्यवाद बहनों।
2: प्रसव के बाद माँ और नवजात शिशुओं की उचित देखभाल कैसे करें, ये अभी बता रही थी डॉक्टर मधुमाला, उनसे बात कर रही थी कृष्णा कावेरी। बनो आइए अब एक नजर डाले कल के मौसम पर। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, क्षेत्रीय प्रभाग रांची और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार कल यानी 4 जून दिन गुरुवार को जिला पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा और इसके आसपास के क्षेत्रों का मौसम कुछ इस प्रकार होगा। अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस। सापेक्षिक आर्द्रता अधिकतम 72% और न्यूनतम 39%। हवा पश्चिम उत्तर से दक्षिण की ओर 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी और 0.8 मिलीमीटर तक बारिश होने की भी संभावना है।
3: नीलू मौसम को ध्यान में रखते हुए इस समय हमारी बहनें हरी खाद के लिए सनई ढेंचा की बुआई कर सकती हैं। बहनों, एक हेक्टर खेत के लिए सनई के बीज 60 से 70 किलोग्राम और ढेंचा का 50 से 60 किलोग्राम तक ले सकती हैं। अच्छा अंकुरण हो इसके लिए खेत में नमी बनाए रखें। बहनों, आजकल गर्मी ज़्यादा है, इसलिए तैयार सब्जी की तुड़ाई सुबह या शाम को करें और छायादार स्थान पर रखें ताकि सब्जी सूखे नहीं।
2: कृष्णा, केवल बातें ही करती रहोगी या हमारी बहनों को कोई गीत भी सुनवाओगी?
3: अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। चलिए बहनों, अब कुछ मनोरंजन हो जाए तो लीजिए, सुनिए मैथिली लोकगीत। कलाकार हैं नीलांबर चौधरी।

0: बहनों, इस मैथिली लोकगीत के बाद आइए कार्यक्रम का रुख बदलते हैं और जानते हैं कि सहकारी समितियों में महिलाओं की क्या भूमिका है। कृष्णा, क्या तुम्हें पता है हमारी बहनें जब सहकारी समिति बनाती हैं तो वे आर्थिक रूप से मजबूत बनती हैं। हमारी बहनें दुग्ध उत्पादन, हस्तशिल्प, कृषि और इसके जैसे ही कई क्षेत्रों में सहकारी समितियाँ बनाती हैं तो बिचौलिए नहीं होते और उन्हें अपने उत्पाद का उचित मूल्य भी मिलता है। ये समितियाँ महिलाओं को किफ़ायती दरों पर आसान ऋण उपलब्ध कराती है जिससे वे छोटे व्यवसाय शुरू कर सके। मानो ये समितियाँ महिला सदस्यों को व्यावसायिक प्रशिक्षण, वित्तीय साक्षरता और तकनीकी ज्ञान प्रदान करती है। इसमें अगर आप काम करती हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप अपने अधिकारों के प्रति भी जागरूक होती है। बहनो, समितियों के मुनाफे का एक हिस्सा अक्सर समुदाय के विकास, बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च किया जाता है।
1: नीलू, कुछ सरकारी योजनाएं भी महिलाओं को सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही हैं। स्वयं शक्ति सहकार योजना, महिला स्वयं सहायता समूह को बैंक ऋण और कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने में मदद करती है। एक और योजना है नंदिनी सहकार योजना, जो राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा चलाई जा रही है, जिसके तहत महिला सहकारी समितियों को व्यवसाय करने के लिए जो ऋण दिया जाता है उसमें छूट भी मिलती है।

0: बहनों, आजकल साइबर फ्रॉड बहुत ही बढ़ गया है और इससे जुड़ी हुई धोखाधड़ी भी प्रायः हो रही है। ऐसे में बहनों, साइबर धोखाधड़ी से बचने के लिए किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ अपने बैंक खाते की जानकारी, पासवर्ड, OTP, UPI पिन कभी साझा न करें। किसी भी अनजान मैसेज, ईमेल या सोशल मीडिया पर आए संदिग्ध लिंक पर क्लिक ना करें।
1: हाँ नीलू, बहनों अगर फिर भी कभी साइबर धोखाधड़ी हो जाए तो साइबर हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करके शिकायत दर्ज करें। आपकी शिकायत आधिकारिक नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर भी दर्ज करा सकते हैं।
0: बनो, इस जानकारी के बाद ही आज के हमारे कार्यक्रम को अब समाप्त करने का समय करीब आ गया है, तो अब दीजिए हमें इजाजत।
1: जोहार, जोहार।

महिलाओं का साप्ताहिक कार्यक्रम घर गृहस्थी अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 MHz पर। शाम के 6:55 हुए हैं। आइए शामिल होते हैं रांची के प्रसारण में, जहां से 7 बजे सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और 7:10 पर जिले में आज कल।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो पीएम सूर्य घर .gov.in पर।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने नई दिल्ली में प्रदान किए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार। पाकुड़ के झिकरहट्टी पूर्वी पंचायत को महिला हितैषी पंचायत श्रेणी में देश भर में दूसरा स्थान। मुख्यमंत्री ने की खान एवं भूतत्व विभाग की समीक्षा। 300 बालू घाटों को जल्द चालू करने और राज्य में गोल्ड माइनिंग तथा नए कोल ब्लॉकों के ऑक्शन की प्रक्रिया तेज करने के दिए निर्देश। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने बालू की किल्लत और कालाबाजारी के लिए राज्य सरकार को ठहराया जिम्मेदार। पूरे मामले की CBI जांच कराने की मांग। राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान के तहत राज्य भर के कृषि विज्ञान केंद्रों में किसान जागरूकता कार्यक्रम शुरू। किसानों को मिट्टी की सेहत सुधारने और संतुलित खाद के उपयोग के लिए किया जा रहा जागरूक। और अंडर 18 एशिया कप हॉकी में भारतीय पुरुष टीम ने चीनी ताइपे को 13-1 से हराकर सेमीफाइनल में किया प्रवेश। झारखंड के आशीष तानीपूर्ति ने दागी शानदार हैट्रिक। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार समारोह में देश की 42 पंचायतों को सम्मानित किया। इसमें झारखंड के पाकुड़ जिले की झिकरहट्टी पूर्वी पंचायत ने महिला हितैषी पंचायत श्रेणी में देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त किया। महिला सशक्तिकरण और कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए पंचायत को यह गौरव मिला है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खान एवं भूतत्व विभाग की समीक्षा बैठक में राजस्व बढ़ाने के लिए 300 बालू घाटों को जल्द चालू करने और नीलाम कोल ब्लॉकों को सक्रिय करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अवैध खनन और बालू माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। साथ ही राज्य में गोल्ड माइनिंग को बढ़ावा देने, नए खदानों के ऑक्शन में तेजी लाने और JSMDC और JMECL को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची में बालू की किल्लत और कालाबाजारी के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बालू के अवैध कारोबार में कमीशन फिक्स है और इस पूरे मामले की CBI जांच होनी चाहिए।
1: जब जब कांग्रेस सपोर्ट से JMM की सरकार बनी है तब तक बालू का है, बालू सोना बन गया।
2: ये दुर्भाग्य है।
1: क्यों? कभी बंबई के व्यापारी को बेच दिया, कभी किसी को दे दिया और कमीशन फिक्स है। इस जो कमीशन खोरी बालू की चल रही है इसमें लाखों नहीं रोजाना करोड़ों रुपए कमीशन में जाते हैं। जांच होनी चाहिए।
0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एक मुश्त बजटीय सहायता देने की मंजूरी दी है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह कोष विमानन टरबाइन ईंधन ATF की कीमतों को स्थिर करेगा। इस महत्वपूर्ण फैसले से भारतीय एयरलाइंस को वित्तीय मजबूती मिलेगी और विमानन क्षेत्र से जुड़े करीब 77 लाख रोजगार सुरक्षित रहेंगे।
3: 6 बड़े फैसले लिए गए हैं जिसमें सबसे पहला फैसला है आज की जो वेस्ट एशिया क्राइसिस के कारण जो ATF एविएशन टर्बाइन फ्यूल उसका जो प्राइस बढ़ा है और उसका जो इम्पैक्ट आ रहा है एविएशन सेक्टर पे उसको मिटिगेट करने के लिए 10,000 करोड़ रुपीस का एक ATF प्राइस स्टेबिलाईजेशन फंड क्रिएट किया गया।
0: रांची में आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा एक दिवसीय मीडिया प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत ने किया। राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कांग्रेस के गौरवशाली इतिहास की चर्चा करते हुए कहा कि देश में IIT, एम्स, PSU, परमाणु परीक्षण और पंचायती राज व्यवस्था जैसी ऐतिहासिक उपलब्धियां कांग्रेस शासनकाल की ही देन है।
4: कांग्रेस पार्टी ने अपनी स्थापना से लेकर के आज तक जितने काम किए पार्टी को उस पर गर्व है। पंडित नेहरू ने वहाँ पर भाखड़ा नंगर डैम बनाने की स्थापना करी थी, IIT बनाई थी, रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाए थे, एम्स बनाए थे, इंजीनियरिंग कॉलेजेस बनाए थे और ललित कला अकादमी बनाई थी। तमाम तरीके की हैवी इंजीनियरिंग यहाँ पे HES बनी थी, जितने PSUs थे वो सारे के

0: xhandle@xhandle.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार xhandle@AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के xhandle@AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। गढ़वा सहित राज्य भर के कृषि विज्ञान केंद्रों में केंद्र सरकार के राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान के तहत विशेष किसान जागरूकता कार्यक्रम शुरू हो गया है। 30 जून तक चलने वाले इस महाअभियान का उद्देश्य पंचायत स्तर पर मिट्टी की जांच को बढ़ावा देना और फसलों को संतुलित मात्रा में पोषक तत्व उपलब्ध कराना है। गढ़वा के डुमरो और नारायणपुर गांवों में आयोजित सत्र के दौरान कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को मिट्टी की जल धारण क्षमता और फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए अजोला, नीलहरित शैवाल और PSB के उपयोग की महत्वपूर्ण सलाह दी। चक्रधरपुर मंडल के DRM तरुण होरिया ने आज सरायकेला खरसावां के कांड्रा जंक्शन का निरीक्षण किया। उन्होंने तीसरी और चौथी रेलवे लाइन के कार्यों की समीक्षा की। DRM ने बताया कि कांड्रा जंक्शन को आधुनिक स्टेशन के रूप में विकसित करने के लिए प्लेटफॉर्म की लंबाई बढ़ाने और लिफ्ट लगाने की योजना पर काम जारी है।
1: लंबे होंगे, वेटिंग हॉल जो है वो ठीक होंगे, टॉयलेट एक्वाटिक होगा, पैसेंजर की अम्यूनिटी बनेगी, तो वही चीज देखने आए थे कि वो थर्ड लाइन फोर्थ लाइन भी आ जाए, पार्किंग भी हो जाए और प्लेटफॉर्म में लिफ्ट भी लग जाए, पैसेंजर का वेटिंग हॉल भी अच्छा हो जाए, वही सब चीज देखने के लिए।
0: धनबाद में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संविदा पर 120 स्वास्थ्य कर्मियों को आज नियुक्ति पत्र सौंपे गए। 18 विभिन्न पदों के लिए आयोजित परीक्षा के बाद चयनित ANM स्टाफ, नर्स और फार्मासिस्टों की तैनाती ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के अस्पतालों में की जाएगी। इस अवसर पर उपायुक्त आदित्य रंजन ने कहा कि इन नियुक्तियों से जिले के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक बेहतर चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित होंगी।
2: 100 प्लस और बहाली होना है, 120 आज हो गया, उसमें भी 20 वैकेंसी रह गया, तो उस वैकेंसी को फिर हम लोग भरेंगे। कुल लगभग 250 से 300 के बीच में NHM में बहाली होनी है, पर अनदर आउटसोर्स से 300 से 400 के बीच वाली वहां हो जाए। कुछ लोग ज्वाइन नहीं भी किए क्योंकि राज्य स्तर की नियुक्ति में कुछ लोगों ने अपना एग्जाम क्लियर कर लिया है, तो वो वाली वैकेंसी हम लोग मेधा सूची से भर देंगे।
0: विश्व साइकिल दिवस पर आज राज्य भर में कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। रांची में करीब 50 साइकिल चालकों ने 35 किलोमीटर लंबी जागरूकता रैली निकाली। इस रैली के जरिए साइकिल चालकों ने स्वस्थ जीवन, स्वच्छ पर्यावरण और साइकिल अनुकूल शहर निर्माण का संदेश दिया। उधर सिमडेगा में भी मेरा युवा भारत द्वारा साइकिल रैली निकाली गई। इस अवसर पर प्रतिभागियों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश पेट्रोल बचाने का है, जिसमें साइकिल चलाकर हम सब अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं।
3: आज विश्व साइकिल दिवस पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री के द्वारा भी यह बताया गया है कि हम लोगों को पेट्रोल की थोड़ी सी बचत करनी है, उसको लेकर के ये आयोजन भी काफी सराहनीय रहा। सैकड़ों बच्चे बच्चियों ने बताया कि साइकिल का उपयोग यदि किया जाए तो पेट्रोल की बचत तो होगी होगी, साथ ही साथ सेहत का भी अच्छा फायदा मिल पाएगा।
0: और अब मौसम का हाल। राजधानी रांची सहित राज्य के कई जिलों में भीषण गर्मी और उमस का प्रकोप बढ़ गया है। पिछले 24 घंटों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। मौसम विभाग के अनुसार डाल्टनगंज में सर्वाधिक 40 डिग्री तापमान दर्ज किया गया, जबकि हजारीबाग में सबसे ज्यादा 2.4 मिलीमीटर बारिश हुई। अंडर 18 एशिया कप हॉकी में भारतीय पुरुष टीम ने चीनी ताइपे को 13-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इस मुकाबले में झारखंड के आशीष तानीपूर्ति ने शानदार हैट्रिक जमाते हुए 3 गोल दागे, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। झारखंड के ही प्रेमचंद सोय ने भी 1 गोल कर भारत की ऐतिहासिक जीत में अहम योगदान दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने नई दिल्ली में प्रदान किए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार। पाकुड़ की झिकरहट्टी पूर्वी पंचायत को महिला हितैषी पंचायत श्रेणी में देश भर में दूसरा स्थान। मुख्यमंत्री ने की खान एवं भूतत्व विभाग की समीक्षा। 300 बालू घाटों को जल्द चालू करने और राज्य में गोल्ड माइनिंग तथा नए कोल ब्लॉकों के ऑक्शन की प्रक्रिया तेज करने के दिए निर्देश। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने बालू की किल्लत और कालाबाजारी के लिए राज्य सरकार को ठहराया जिम्मेदार। पूरे मामले की CBI जांच कराने की मांग। राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान के तहत राज्य भर के कृषि विज्ञान केंद्रों में किसान जागरूकता कार्यक्रम शुरू। किसानों को मिट्टी की सेहत सुधारने और संतुलित खाद के उपयोग के लिए किया जा रहा जागरूक। और

0: अंडर 18 एशिया कप हॉकी में भारतीय पुरुष टीम ने चीनी ताइपे को 13-1 से हराकर सेमीफाइनल में किया प्रवेश। झारखंड के आशीष तानीपूर्ति ने दागी शानदार हैट्रिक। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे खूंटी जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारी खूंटी संवाददाता।
1: खूंटी पुलिस आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए प्रयासरत है। इस हफ्ते साइको थाना क्षेत्र में हुए डबल मर्डर मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को डॉग स्क्वाड और FSL की मदद से गिरफ्तार कर जेल भेजा। इस संबंध में खूंटी पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग ने बताया।
2: साइको थाना क्षेत्र अंतर्गत एक अप्रिय घटना घटी थी, जिसमें कि एक लड़का थी और एक लड़की था, इनकी हत्या हो गई थी। उसमें हम लोगों को कल एक ब्रेक थ्रू हासिल लगा थी, जिसने कि ये घटना को अंजाम दिया था, उसको भी हम लोगों ने गिरफ्तार किया। और 2 लोग और थे जिनका कि रोल था कि इन्होंने वो लाशें जो थी उनको एक जगह से उठा करके दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट किया था, उनको भी हम लोगों ने अरेस्ट किया है और अब हम लोग उनको न्यायिक अवरक्षा में भेज रहे हैं।
1: खूंटी जिले में पलायन बड़ी चुनौती बन गई है। रोजगार की तलाश में हजारों महिला पुरुष हर साल दूसरे राज्यों का रुख करते हैं। इसे रोकने के लिए सरकारी और गैर सरकारी संगठन लगातार कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में खूंटी में लीड्स संस्था प्रवासी श्रमिक परियोजना के तहत स्थानीय युवतियों को काथा स्टिच का प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार से जोड़ने में जुटी है। इस संबंध में कोलकाता से आई ट्रेनर मैत्रेयी धर और प्रकाश कुमार ने बताया।
3: काफ्रा स्टिच के अलावा दूसरा स्टिच भी हम सिखाए, तो गांव के जो महिला है जो काम करने के बाद खुले टाइम बैठे रहते हैं, उनको ये चीज सिखा कर अपने रोजगार का कुछ दिशा दिखाए। गांव के लड़कियां सब बैठ के ये सब काम करके अपने घर को चला रही है।
4: जो गांव की लड़कियां हैं जो बेरोजगार हैं या जो पलायन करने की तैयारी कर रही थी, तो उनका पलायन रोकने का भी एक हम लोग का मकसद है कि उनका पलायन रोके और उनका आजीविका कैसे बढ़े, किस तरह से उनका इनकम जनरेट हो, इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। और ये जो प्रशिक्षण हो रहा है ये हम लोग का माइग्रेंट लेबर प्रोजेक्ट एक चल रहा है 3 डिस्ट्रिक्ट में, खूंटी सिमडेगा और रामगढ़, तो उसके तहत ये इन लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
1: मुरहू के पेरका में काथा स्टिच का प्रशिक्षण ले रही महिलाओं ने बताया कि काथा स्टिच और एप्लिक वर्क की बाजार और मेला में जबरदस्त डिमांड रहती है। प्रशिक्षण ले रही नेहा देवी, सरानी ब्यूटी और अनस्तासिया तीडू ने बताया।
5: मेरा नाम नेहा देवी है और मैं खूंटी से आई हूँ। हम लोग यहाँ काथा स्टिच का सिलाई कर रहे हैं, तो घर बैठने से अच्छा है वहाँ बैठ के ट्रेनिंग कीजिए आप लोग, जो आप लोग स्वरोजगार कर सकते हैं, घर घर अपना चला सकते हैं, अपने पर आश्रित रह सकते हैं।
6: मेरा नाम है सरानी मुंडू, मैं मोरू डूडरी की रहने वाली हूँ। संस्था की ड्रेस दीदी हम लोगों को बताई थी कि यहाँ पे काठा स्टेज का ट्रेनिंग होगा, 18, 19, 20 ऐसे कुछ सिखाई है।
7: मेरा नाम है अनस्ताशिया तेडू, मैं खूंटी जिला के छोटा पांडु गांव से हूँ और हम लोग यहाँ 2 महीने से काथा स्टिच सीख रहे हैं। और हम लोगों को यहाँ पर हमारी ट्रेनर 16-17 स्टिचेस सिखाई है, जैसे कि हेरिंग बोन, एप्लिक, रन स्टिच, नेक स्टिच और बहुत सारे ऐसे स्टिचेस सिखाई है।
1: इस हफ्ते खूंटी में ईद उल अजहा पर भाईचारे और सौहार्द की मिसाल देखने को मिली। जिले के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक नमाज के बाद लोगों से मिले और उपस्थित बड़े छोटे सभी लोगों का मुंह भी मीठा कराया। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी।
0: अभी आप सुन रहे थे खूंटी जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

जिले में आजकल अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 MHz पर। शाम के 7:15 और 32 सेकंड हुए हैं। अब आइए सुनते हैं बांग्ला कार्यक्रम।

बांग्ला कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 MHz पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम जिज्ञासा।

0: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोता दोस्तों को संतोषी का नमस्कार। साप्ताहिक विज्ञान पत्रिका जिज्ञासा में एक बार फिर आप सबों का स्वागत है। दोस्तों, आसमान की उस जंग में जहां दुश्मन के राडार और मिसाइल सिस्टम हमारे लड़ाकू विमानों को निशाना बनाने के लिए घात लगाए बैठे हो, वहां भारत का एक लड़ाकू विमान पलक झपकते ही पासा पलट सकता है। अब भारतीय वायुसेना बिना दुश्मन के मिसाइल रेंज में आए उसके पूरे एयर डिफेंस सिस्टम को मलबे के ढेर में तब्दील करने का दम रखती है। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने मिलकर पूरी तरह से स्वदेशी एंटी रेडिएशन एयर टू सरफेस मिसाइल रुद्रम 2 का बेहद चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में सफल परीक्षण किया है। स्वदेशी ताकत की नई मिसाइल रुद्रम 2 पूरी तरह से एक स्वदेशी एयर टू सरफेस मिसाइल है। ये एक अत्याधुनिक एंटी रेडिएशन मिसाइल है जिसका काम दुश्मन के सर्विलांस रडार, ट्रैकिंग सिस्टम और कम्युनिकेशन टावरों से निकलने वाले सिग्नलों को पकड़कर उन्हें हवा में ही नेस्तनाबूद कर देना है। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान से इस मिसाइल को बेहद जटिल और विपरीत युद्ध जैसी परिस्थितियों में दागा गया जहां इसने 100% सटीकता दिखाई। इस मिसाइल को मुख्य रूप से भारतीय वायुसेना के अग्रिम पंक्ति के लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI से जोड़कर परखा जा रहा है, जिससे इसकी मारक क्षमता कई गुना बढ़ गई है। दोस्तों, ये आत्मनिर्भर भारत और उन्नत स्वदेशी रक्षा तकनीक की दिशा में एक क्रांतिकारी मील का पत्थर बताया जा रहा है। न सिर्फ आधुनिक समय में बल्कि प्राचीन काल से ही भारत का वैज्ञानिक अवदान काफी समृद्ध रहा है। प्राचीन भारत का वैज्ञानिक अवदान, इसी विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं अशोक कुमार झा। तो आइए सुनते हैं ये वार्ता।
1: वैश्विक स्तर पर मानव जीवन के रहस्यों को सुलझाने एवं जीवन से संदर्भित आवश्यकताओं की सहज उपलब्धि हेतु प्रारंभ से ही मानव मस्तिष्क क्रियाशील रहा है। मानवीय आकांक्षाओं की पूर्ति, रहस्योद्घाटन की जिज्ञासा, चमत्कारिक प्राकृतिक घटनाओं के उत्स एवं कारणों को समझने की उत्कंठा ने तर्क अनुमान प्रमाण युक्त वैज्ञानिक अवधारणा को विकसित किया। निसंदेह प्राचीनतम विकसित सभ्यताओं में से एक भारतीय सभ्यता की वैज्ञानिक सोच एवं महत्वपूर्ण अवदान आश्चर्यचकित करती है। वैज्ञानिक अवधारणा एवं जीवन शैली को सहज एवं अर्थपूर्ण बनाने वाले उपकरणों, उपादानों आदि के साथ विधियां विकसित करने में प्राचीन भारत के मनुष्यों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। चिकित्सा विज्ञान का क्षेत्र हो या पर्यावरण विज्ञान से संदर्भित अवधारणाओं का विकास, वनस्पति विज्ञान या भौतिक विज्ञान, खगोल विज्ञान आदि के क्षेत्र में अप्रतिम उपलब्धियां हो या फिर गणित, रसायन, सैन्य विज्ञान से संदर्भित गुत्थियों को सुलझाने का सफल प्रयास आधुनिक विज्ञान के लिए भी अचंभा का कारण बनती है। ऋग्वेद के 23 मंत्र औषधियों से ही संदर्भित हैं। शुद्ध पेय जल के महत्व को तो ऋग्वेद एवं अथर्ववेद दोनों में ही स्वास्थ्य के लिए उपादेय माना गया है। शुद्ध जल को विश्व भेषजी अर्थात जिसे सभी प्रकार के रोगों का निदान संभव है के रूप में निरूपित किया गया है। ऋग्वेद में अश्विन देव के द्वारा आंखों का इलाज, विकलांगता का इलाज तथा युद्ध में आहत विश्वपला के कटे पांव के स्थान पर लोहे का पांव लगाने का उल्लेख शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में प्राचीन भारत के उपलब्धियों को दर्शाता है। अथर्ववेद में कुष्ठ यानी किलास, तकमन यानी शीत ज्वर, खांसी यानी काश, राजयक्षमा आदि रोगों के साथ साथ कई प्रकार के कीटाणुओं तथा चतुरक्ष, अर्जुन, सारंग, विश्वरूप आदि कृमियों का उल्लेख है जो उस समय के रोग, रोग के कारण एवं निदान से संदर्भित स्पष्ट ज्ञान को स्पष्ट करता है। एक भ्रूण के कोशिकीय विभाजन से 100 पुत्रों के जन्म की कथा जो कौरवों से संदर्भित है तथा द्रोण से द्रोणाचार्य के जन्म का उल्लेख आधुनिक विज्ञान की खोज बताए जाने वाली परखनली शिशु की अवधारणा एवं रोहिणी के गर्भ में देवकी के गर्भ का प्रत्यर्पण की कथा एतद् संबंधी शोध को चुनौती प्रदान करता है। कृषि से संदर्भित उन्नत विधियों एवं विविध अनों की खोज, उपयुक्त मौसम, आवश्यक उपकरणों आदि का अन्वेषण मानवीय सभ्यता के विकास के दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा है।

0: पुरातात्विक प्रमाणों के आधार पर 9000 ईसा पूर्व के करीब कृषि आधारित सामाजिक आर्थिक व्यवस्था का सूत्रपात माना जाता है। भारतीय संदर्भ में कोलाडी हवा एवं बुर्जहोम से प्राप्त अन्न के दानों जो धान के हैं को ईसा पूर्व 6000 का माना गया है। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पोलियोबॉटनी ने C14 कार्बन तिथि मापन प्रणाली के आधार पर इसे निर्धारित किया है। ऋग्वेद में प्रयुक्त कृषि से संबंधित सीता खनित्र खोदला सीर फावरा दारांत दांत्र यव शुनि लांगल आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसमें लांगल शब्द मुंडारी भाषा परंपरा में प्रयुक्त होता है। स्पष्ट है कि प्राचीन भारत की वेद एवं लोक परंपरा कृषि कार्य के लिए आवश्यक उपकरणों एवं विधियों से सुपरिचित थे। यजुर्वेद के 18वें अध्याय के 12वें सूक्त में ब्रीह यव मांस तिल मूंग खल्व प्रियंगु अणु श्यामक निवार गोधूम आदि का उल्लेख किया गया है। कृषि वैज्ञानिक ग्रिफिथ ने भी खल्ब को वेचेज प्रियंगु के लिए माइलेट अणु के लिए पेनकम आदि शब्दों का उपयोग किया है। अग्नि और अन्न मानवीय व ब्रह्मांडीय विकास यात्रा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अन्वेषण है जिसका श्रेय प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक व्यवस्था को जाता है। इन दोनों आविष्कारों ने प्रारंभिक यायावर अवस्था से एकाएक व्यवस्थित मानवीय बस्ती स्वाद सुपच स्वास्थ्य आधारित जीवन शैली की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। यजुर्वेद के 10:34, 10:104, 5, 10:117-7 आदि मंत्रों में हल अश्व रथ व्यवस्थित एवं योजनाबद्ध कृषि व्यवस्था का उल्लेख आश्चर्यचकित करता है। यजुर्वेद के 11वें अध्याय के 21वें सूत्र मानव मात्र की समष्टीय घोषणा वयं श्याम सुमतो पृथिव्या अग्नि खनंत उपस्ये अस्याह तात्पर्य कि पृथ्वी के गर्भ से हम अनवरत अग्नि का खनन करते रहेंगे के वैज्ञानिक महत्व को भला कौन नकार सकता है। आज दूषित अन्न एवं दूषित जल हमारे लिए चिंता का विषय बना हुआ है। हमारे वैज्ञानिक इस दिशा में निदान मूलक अवधारणाओं उपचारों एवं उपकरणों के विकास की दिशा में निरंतर क्रियाशील हैं। उपलब्ध व्यवस्था समस्त मानवों तक सहज नहीं हो पाई है परंतु यजुर्वेद के सूक्त 11:83 द्वारा व्यक्त विचार इस दिशा में मार्गदर्शक हो सकता है। अन्न पते अनस्य नो देहि अनविवस्य सुस्मिना तात्पर्य कि हमारा अन्न प्रदूषित नहीं हो या रोगों के उत्पादक न होकर ऊर्जायुक्त अर्थात शक्ति प्रदाता हो। इसी प्रकार अथर्ववेद के मंत्र 192:1-2 में हिमालय के जल सतत प्रवाहमान जल वर्षा से प्राप्त जल मरुभूमि में उपलब्ध जल भूजल आदि के अतिरिक्त विविध प्रकार के बर्तनों यथा मिट्टी तांबा स्वर्ण लौह आदि में रखे जल के गुण एवं उपयोग की चर्चा करता है जो अनुपम वैज्ञानिक अवदान है। यजुर्वेद के मंत्र 6:22 के माध्यम से तो मानव मात्र को सावधान करते हुए निर्देशित किया गया है कि मापो मौषधि हिंसी तात्पर्य की जल एवं औषधियों के साथ हिंसा नहीं कर अर्थात इसे प्रदूषित नहीं कर। ऋग्वेद के 7:49 मंत्र में जल शोधन के उपाय भी सुझाए गए हैं। खगोल विज्ञान के क्षेत्र में प्राचीन भारतीय विज्ञान का अवदान तो और भी गौरव प्रदान करने वाला है। वेद ऋचाओं में सूर्य को अर्थात ऊर्जा को जीवन का मूल माना गया है। सूर्य आत्मा जगतस्तस्थयुश्च 13:4-1:13 अथर्ववेद द्वारा सूर्य की ऊर्जा को जीवन जगत अर्थात सृष्टि की आत्मा मूल आधार जीवन शक्ति बताया गया है। आज तक इस वैज्ञानिक उपस्थापन में कोई परिवर्तन परिलक्षित नहीं हो पाया है। ग्रहों की स्थिति उसके रंग प्रभाव आदि की जानकारी भारतीय मनीषा ने ज्ञान विज्ञान की वर्तमान प्रयोगशाला आधारित वैज्ञानिक प्रणाली के विकसित होने से पूर्व ही प्राप्त कर लिया था। चंद्रमास सौरमास सौरवर्ष मधुमास मेघ संक्रांति से वर्ष गणना चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण उल्कापात सूर्य के सुषुम्ना नामक किरण से चंद्रमा का प्रकाशित होना उल्कापात प्रकाश की गति ब्रह्मांड के रहस्य असंख्य सूर्य अनगणित पिंड असीम अंतरिक्ष 14 लोकों में जीवन आदि के संबंध में वेदों के अतिरिक्त सायन के भास्कराचार्य के सिद्धांत शिरोमणि वराह मिहिर की बृहत संहिता, जैमिनीय उपनिषद, तांड्य ब्राह्मण आदि ज्योतिषीय खगोलीय ग्रंथों में वर्णित तथ्य एवं दृष्टिकोण इतना व्यापक है कि आज के खगोलविद उस पर शोध करने हेतु विवश हैं। 1514 ईस्वी में कोपरनिकस ने प्रतिपादित किया, पृथ्वी स्थिर नहीं है, यह अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है, परंतु तथ्य तो यह है कि लगभग इससे हजारों वर्ष पूर्व उपलब्ध भारतीय भाषा परिवार की प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद में उल्लिखित तथ्य वर्तमानम प्रतिक्रियेव रोदसी मंदम, तात्पर्य की मंद गणों की ऊर्जा से पृथ्वी चक्री के समान घूर्णित है अर्थात घूमती है, स्पष्ट है कि यह भी प्राचीन भारत का महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अवदान है। वैमानिक अन्वेषण के क्षेत्र में प्राचीन भारत के वैज्ञानिकों ऋषियों के ज्ञान की परिधि अधुनातन जंतवों से भी व्यापक है। अत्रि, वत्स, नारद, जैमिनी, स्फोटयन, साक्टायन, भारद्वाज आदि वैमानिकी उपकरणों एवं सिद्धांतों के जानकार के लिए वैज्ञानिक ऋषियों से भारद्वाज के तन संबंधी वैमानिकी प्रकरण आज भी उपलब्ध हैं। 1903 ईस्वी में राइट बंधुओं के विमान निर्माण और 1766 ईस्वी में टीना, लौह एवं जस्ता को गंधक तथा एसिड से मिश्रित कर हाइड्रोजन के अन्वेषण से हजारों वर्ष पूर्वी भारद्वाज के वैमानिकी प्रकरण जो यंत्र सर्वस्व ग्रंथ का हिस्सा है, अगस्त के अगस्त विमान संहिता, राजा भोज के सम्रांगन सूत्रधार आदि में विमानों के प्रकार, गति, निर्माण आदि की विस्तृत जानकारी उपलब्ध है। अगस्त ऋषि के द्रव्य मंत्र सर्वस्व में तो वायुयान एवं नौकायान का भी विस्तृत चर्च की गई है। ऋग्वेद के 6:88:5 मंत्र में जलयान जो वायु एवं जल दोनों में चल सकता था, 9:14:1 में कारा यह भी वायु और जल दोनों में चल सकता था, 4:36:1 में त्रिताला, 3:14:11 में विद्युत रथ तथा चित्रक रथ की चर्च 5:41:6 में किया गया है। ऋषि भारद्वाज ने तो 97 प्रकार के विमानों का उल्लेख करते हुए सौर ऊर्जा से इसके परिचालन एवं आवश्यकता अनुकूल अतिरिक्त ऊर्जा को संरक्षित रखने पर भी जोर दिया है। इसी प्रकार ऋग्वेद के 10वें मंडल के 114वें सूक्त में वाक का उल्लेख एवं विवरण, ध्वनि विज्ञान, विद्युत तरंग, रसायनों के प्रकार एवं उपयोग, विविध प्रकार के शस्त्रों तथा अग्निवर्षक यंत्र यथा मिसाइल आदि के संबंध में प्राचीन भारत के अवदान को रेखांकित करता है। इस दिशा में चारों वेदों के अतिरिक्त सैकड़ों अन्य ग्रंथ हैं जो निरपेक्ष, पूर्वाग्रह रहित तथ्य तर्क परक शोध की अपेक्षा रखता है। कनाद के पारमाणविक सिद्धांत हों या अगस्त भारद्वाज की भौतिक यंत्रों के विस्मयकारी उल्लेख, प्राचीन भारत की प्राकृतिक प्रयोगशाला आधारित जन कल्याणकारी वैज्ञानिक चिंतन एवं प्रायोगिक प्रणाली को स्पष्ट करता है। आवश्यकता है उन उपलब्धियों अवदानों के सम्यक विवेचन एवं सम्यक उपयोग की। यह विश्व भर में प्रचारित प्रसारित अधिकांश वैज्ञानिक आविष्कारों के समय एवं आविष्कारकों के संबंध में भ्रमों का निवारण कर वास्तविक तथ्यों को स्थापित करने में सहयोगी हो सकता है, जो भारत की पारंपरिक वैज्ञानिक अवदानों को प्रतिष्ठित करेगा।
1: प्राचीन भारत का वैज्ञानिक अवदान, इस विषय पर जानकारी दे रहे थे अशोक कुमार झा। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आज का ये कार्यक्रम आपने सुना संतोषी झा के साथ। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए आज्ञा, नमस्कार।

विज्ञान पत्रिका कार्यक्रम जिज्ञासा अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM की 102.4 मेगाहर्ट्ज़।

हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 8 बजे हैं। आइए सुनते हैं विशेष श्रृंखला की पहली कड़ी, मोदी सरकार के 12 साल।

0: years. Now, when we get this phenomena, the first thing that happened is that not only did the cylinders reach, but authorities were pleasantly surprised by what is called the incidental benefit, which is that, there was a sharp reduction in bronchial problems of women. So basically, in any village household, the big problem was the kitchen would typically be highly smoke-laden. And from there, a clean fuel was doing a substantial change in the health conditions of the people, of the women. Now, this was studies that was done by independent agencies, and frankly, it was something that wasn't even thought of initially as how significantly it will change the needle in terms of the health benefit. So this is surprisingly useful and a surprisingly refreshing add-on of the PM Ujjwala scheme, because Ujjwala did its primary role, which was that it ensured that a steady supply of fuel reached the households. This immediately not only did, the health benefits, as I said, came along and caught everybody pleasantly surprised. The larger, the basic thing that it was supposed to do was to cut down the time that women spent collecting firewood, getting cow dung, and so on and so forth. In fact, the third benefit that had happened was it released a lot of manure for use in what is called the biofuel changes, which has actually now become a very significant add-on. So there's been a lot of what we should say cascading impact of the Ujjwala benefit. As you would have noticed, that what has happened is that this has also led to a very strong financial security in those households. So together, it has been a very impressive package of reforms that have been delivered, impressive package of benefits that have been delivered. Yes,
1: absolutely. Shubham, Aditi, Shubham abhi baat kar rahe the, kis tarah se ye BPL household ko khas karke Ujjwala yojana ne benefit pahunchaya hai rural women folk ko khas karke. उन्होंने चर्चा की कि किस तरह से स्मोक लेडन हमारा किचन हुआ करता था और सो ऑन एंड सो फोर्थ. लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज अगर हम बात करें वो है जल जीवन मिशन का. टैप वाटर ये एक बहुत बड़ा कारण होता है हमारे खास करके भारत देश में सीजनल रेन्स एंड ऑल यू नो एंड वाटर बोर्न डिजीजेज, ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करता था. जल जीवन मिशन एक ऐसा एक स्कीम मतलब ये लेकर आए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने जहाँ पर कि हर घर नल योजना की शुरुआत की गई. कैसे देखते हैं आप, खास करके अगर हम हेल्थ की बात करें, हेल्थ को प्रायोरिटी देने की बात करें, तो
2: ये बहुत एक महत्वपूर्ण योजना है सरकार की, जिसके तहत सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया गया है एक हाउस होल्ड की महिला को. क्योंकि हम जानते हैं कि इतने साल हो गए हमारी इंडिपेंडेंस को, लेकिन फिर भी अभी भी इतने सारे हाउस होल्ड्स ऐसे थे रूरल एरियाज में, ये रूरल हाउस होल्ड्स को जोड़ने की स्कीम है ज़्यादातर, और इतने सारे हाउस होल्ड्स थे कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते थे, पढ़ते थे. आज तक ऐसी खबरें छप रही थी कि 8-8, 9-9 घंटे तक लोगों को चल के जाना पड़ता है पानी लेने के लिए, या बहुत किलोमीटर्स का सफ़र तय करके दूर दराज इलाकों में लोगों को जाना पड़ता है. जो हिली टेरेन्स हैं उसमें पानी की बहुत ज़्यादा समस्या थी. जो डेजर्ट एरियाज हैं खासकर जैसलमेर, राजस्थान और गुजरात, कच्छ के साइड में बहुत सारे ऐसे हमें एविडेंस मिलते थे कि जहाँ पानी की समस्या इतने साल बाद भी आज़ादी के, मतलब ये एक किसी भी देश के लिए कोई अच्छी कन्वीनियंट स्थिति नहीं है, कन्वीनियंट पिक्चर नहीं है कि आप एक बेसिक सुविधा, जैसे आप पावर की बात कर लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लीजिए, या पानी की बात कर लीजिए, टॉयलेट्स की बात कर लीजिए, ये बड़ी बेसिक चीज़ें हैं जो आम तौर पर अभी तक हो जानी चाहिए थी, लेकिन किसी वजह से जो नहीं हो पाई. और आपने सही कहा कि अगर आप स्वास्थ्य लाभ भी देखें इस योजना से तो बहुत ज़्यादा लाभ होता है, और इस पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ, बहुत लोगों ने बहुत सारे रिसर्च और एविडेंस बेस्ड पेपर्स भी निकाले हैं, जिससे ये भी कहा है कि इससे जल जीवन मिशन की वजह से बीमारियों में बहुत कमी आ रही है, चाइल्ड हेल्थ इंडिकेटर्स इम्प्रूव हो रहे हैं, महिलाओं की स्वास्थ्य स्थिति इम्प्रूव हो रही है, और सबसे इम्पोर्टेंट गर्भवती महिला के लिए ये एक बून की तरह आया है. क्योंकि बहुत सारी वाटर बोर्न डिजीजेस गर्भवती महिला को गंदे पानी की वजह से बहुत कुछ सहना पड़ता था, और जल जीवन मिशन से क्या हुआ है, ना सिर्फ पेयजल घर तक गया है, बल्कि बहुत सारी मतलब प्रोडक्टिव टाइम जो महिला का पानी इकट्ठा करने में जाता था वो अब और चीज़ों में वो व्यस्त हो सकती है, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप की मेंबर बन सकती है, वो लखपति दीदी योजना का लाभ उठा सकती है, क्योंकि उसके पास अब वक्त है, घर में पानी आ रहा है. ये सुनने में बहुत छोटी बात लगती है लेकिन बहुत बड़ा प्रभावी कदम है.
1: जी जी जी अदिति, और इसी क्रम में हम आगे बढ़े. शुभ

0: सैनिटेशन की अगर बात करें, स्वच्छ भारत मिशन ये एक फ्लैगशिप मिशन जिसे कहें, और जब भी इसे इम्प्लीमेंट किया गया था उसके पहले शायद पता नहीं इस तरह की योजना कभी सुनने को नहीं मिली थी। सैनिटेशन की बात करें, स्वच्छ भारत मिशन जिसे ओपन डेफिकेशन एलिमिनेट ऑलमोस्ट कर दिया गया, मास कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस होल्ड एंड कम्युनिटी टॉयलेट्स, ये कोई छोटी बात नहीं है। शुभ, मैं क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में?
1: हाँ, ये वाला चीज जो आप देखेंगे
0: जी
1: कि पानी का सप्लाई, स्वच्छ भारत मिशन, इन सभी चीजों से जो बदलाव अभी दिख रहा है वो है काफी सिग्निफिकेंट। आप इसके पहले एक आम बात थी कि बहुत सारी जगहों पे ओपन डेफिकेशन और उससे चलते जितने सारे तरह की बीमारियां, उनका खासकर मानसून में फैल जाना, बाकी समय में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, ये सब चीजें एक आम तरफ चीज था कि भाई होता है, क्या किया जाए। इसमें जो अभी जो नेशनल हेल्थ सर्वे के जब डेटा देखेंगे तो सबसे बड़ी बदलाव आप उस डेटा से देख सकते हैं कि ये एक से कहते हैं आपका एक मेजरमेंट आ गया है कि कितना और कितना प्रभावी ये सारे बदलाव हुए हैं। अभी आप मैं आग्रह करूंगा कि कोई आकाशवाणी के जो लिसनर्स हैं, कभी अगर वो ट्रेन का सफर करे, दूर दराज के रास्ते में चलते हुए एक जो कॉमन साइट था ओपन डेफिकेशन का, वो करीब एकदम वैनिश हो गया। और ये बहुत ही बड़ा बदलाव है, इसमें टाइम लगा, इसमें करने में शुरुआत में बहुत सारे हिचक आए, बहुत सारे बिहेवियरल चेंजेस करने पड़े, लोगों को बहुत सारे हिदायतों के साथ साथ बहुत सारे आग्रह का भी इंटरेस्ट चीजें दिया गया, इधर उधर की जिसे कहते हैं शॉर्टकमिंग्स भी आई, लेकिन इतने साल के बाद अब जाके उनका इफेक्ट लोगों के जिंदगी के ऊपर अभी दिख रहा है। और ये एक मैं समझता हूँ कि बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंज इसलिए है कि ये एक तरफ एक सिविक चेंज आ गया है हमारे देश में, बहुत सारे इलाकों में। अब जिन सारी चीजों की बात करें, जैसे ओपन डेफिकेशन, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन के साथ उज्ज्वला, या उसके पहले जब जैम ट्रिनिटी, इन सब के चलते लोगों में जो एक नया वार्तालाप का एक सिस्टम आ गया, एक नया जैसे कहते हैं आइडियाज का एक कॉम्बिनेशन बन गया है कि ये सारी चीजें तो जिंदगी में होनी चाहिए। इनका ना होना ही आज आश्चर्य की बात लगता है बहुत काफी जगहों पे। ये जिसे कहते हैं सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, एक बहुत बड़ा चीज है डेमोक्रेसी के लिए, बहुत बड़ा चीज है लोगों में अपना भरोसा बनाने के लिए, अपना कॉन्फिडेंस बनाने के लिए कि हम इससे आगे चल सकते हैं। ये सारी चीजों के लिए हमें डेली का जो लड़ाई है वो जूझना नहीं पड़ेगा, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ ये सब हमारे लिए ये सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी और वो उपलब्ध रहेंगी।
0: Absolutely, Shubham. Aditi, talking of social security and safety nets, of course, Shubham also mentioned about, you know, the health aspect. Now, health is one thing which just cannot be ignored, that is one. And of course, the importance of it cannot be overstated. If you look at the Western countries, the more advanced economies, they have their own safety nets, they have their own social healthcare schemes and so on and so forth. In India, if you talk of, you know, maybe let's say 10, 12 years or 15 years back or even more, probably there was not much to offer by any of the governments, if I may say, over the years, over the decades, in fact, that they could offer something like that to the common man, especially the poor or maybe the lower middle income group, that kind of. Now, with the Ayushman Bharat scheme coming in, you know, it again revolutionized, you know, the kind of safety net which was so very much required for the common man. Now, this, in fact, has turned out to be the world's largest government-funded health insurance scheme, offering up to 5 lakh rupees per family. Now, how important this is, how significant is this?
2: See, this is extremely significant in the sense that it has helped in very deep penetration of cutting-edge health services across the country. Earlier, what was happening is that for even a very small procedure or a small facility visit, people had to come all the way to AIIMS, New Delhi, or in the north part of the country, they had to go to PGI, Chandigarh. In south, they used to throng Jipmer, Puducherry. You know, these are institutes of excellence in health. Mm-hmm. Everybody would have to rush to these institutions because there was no healthcare available next door. See, the concept of healthcare delivery becomes important and successful if you take healthcare services where people are living. So the entire infrastructure under the Ayushman Bharat scheme was conceived around these pillars. The first thing was that you set up health and wellness centers. which are now known by the name of Arogya Mandir. Different states of the country have it. Some states which did not have it, for instance, West Bengal, where election has just ensured that BJP has won. So they are now going to roll out the Ayushman Bharat landscape there also. So there are two main pillars of the scheme that you mentioned. First is that you have the community health service through Arogya Mandirs, where you provide basic screening facilities for the community dwellers. Villagers will come there, and they will be able to screen themselves for even some of the major cancers, for example, the most common ones. You can get screenings for cancer of the cervix, for breast cancer, for, you know, these kind of cancers. You can get screening and basic facilities. Now, if a referral is found at that level and you are found to be in need of better healthcare delivery, so then you are referred to a higher facility, which could either be a district hospital, a community health center, or if there is a more complicated procedure to be done, then to an even better hospital. And as we know, under Ayushman Bharat, so many private hospitals, not only government hospitals, which are in the government system, have been empaneled. So now empanelment is being institutionalized. It is not something that can happen overnight. These institutional mechanisms will take years to get working smoothly. But at least a beginning has been made, and there is a lot of evidence available in the Ayushman system, which tells us that major surgeries, for example, knee transplants are happening, cancer care is happening, stents are being provided at a much lower cost. Then you also have a structure of Jan Aushadhi Kendras, where you have, you know, subsidized medicines available for the poor. So the attempt that the government is making is to ensure affordable healthcare delivery, quality healthcare delivery. Why was it done? It was done because there was a lot of study and research that indicated that people who have managed to beat poverty and come out of the poverty line are being pulled back in because of hefty expenditure, out-of-pocket expenditure on health costs. We all know, you know, how costly health can get. God forbid if a certain family has a cancer patient or two patients, we all know that the entire life savings of that person can go in that one treatment. Then you see kidney dialysis centers have been set up across the country. Free dialysis are being provided in government health system. So there's a whole infrastructure being laid down to ensure that the poor are not you know, feeling challenged or debilitated because they have to pay so much from their pocket for health.
0: Correct. Aditi, health, of course, food, जैसा कि हम सभी जानते हैं, एक कहावत जो है, रोटी कपड़ा और मकान. Now, the need for housing, again, you know, this is another one thing which, again, cannot be overstated. Now, Pradhan Mantri Awas Yojana, PMAY, both the rural and the urban, you know, the urban poor as well. Now, this is another big thing which has really kind of, you know, the entire, you know, the idea, you know, of the government, of the welfare schemes rather, is to instill a sense of security, you know, within citizens, especially when we talk of the rural people and the urban poor as well, rather across the spectrum. Now, PMAY, both rural and urban, how do you see this kind of revolutionizing, especially when we talk of PMAY Urban 2 also now launched, 2.0 also now launched. Now, this is something which is really phenomenal.
2: Yeah, I think like we discussed earlier, you know, the overall policy impetus of the government is basically to create a landscape where the poor not only come out of poverty, but they have a means of dignified living. For dignified living, housing is very important. You know, people are being helped to get access to affordable housing. Like you said, Pradhan Mantri Awas Yojana Grameen is particularly remarkable in the scale that it seeks to achieve. If you look at the sheer numbers, I think Grameen Yojana targets around 5 crore houses by the year 2029. And so far, the data suggests that almost, you know, 3.90 crore houses have been sanctioned and nearly 3 crore have actually been completed and are being distributed through the state system. What is even more important is that these houses are going to people who do not own any immovable assets, like who do not own any property or any land or any house at all. And the system also now is artificial intelligence driven. There are a number of monitoring tools that have been deployed to ensure that the anomalies get detected in time, that only the very genuine beneficiaries get houses, and there's Aadhaar face authentication happening. And what is most important is geotagging of the structures is happening, structures that are being created. Everything is digitally driven. So what is important also is that there is seamless coverage being provided to the beneficiaries of PM Awas Yojana with other schemes of the government. Whoever comes into the system of PM Awas Yojana will automatically get linked to Swachh Bharat Mission, Grameen, Jal Jeevan Mission, Ujjwala Yojana, Surya Ghar Mission and Muft Bijli Yojana.
0: Correct.
2: So there's a seamless coordination and integration of the government system. All that has happened only because of the digital platforms that have been created for the purposes. There are portals where people can apply. Aadhaar is already there, like we discussed, the Jam Trinity.
0: Yes.
2: So everything is in place and now the foundation has been laid and now building blocks are being created.
0: True. Shubha, agar hum baat karein, Pradhan Mantri, ye Mudra Yojana ki. Mudra Yojana ek aisi yojana hai jahan ki humne dekha hai ki lagbhag abhi tak 57 crore se jyada लोन ये डिसबर्स किए जा चुके हैं और ये खास करके महिलाओं के लिए एक बहुत बहुत ही बड़ा एक सहारे का काम कर रहा है, उन्हें अपने पैरों पे खड़ा होने का मौका दे रहा है. वी ऑल नो दैट नो कंट्री, नो इकोनॉमी और नो सोसाइटी रादर कैन यू नो एडवांस विदाउट टेकिंग इनटू द लूप द अदर 50% ऑफ द पॉपुलेशन. नाउ मुद्रा योजना, जैसा कि हमने अभी चर्चा की, 57 करोड़ प्लस लोन अभी तक डिसबर्स किया, कितना इम्पोर्टेंट है, कितना सिग्निफिकेंट है खास करके महिलाओं के लिए अगर हम बात करें.
1: द इफेक्ट दैट इज हैपनिंग इज यू नो अगेन समथिंग व्हिच इज समथिंग व्हिच वी डिडंट एक्सपेक्ट अर्लियर. सो द वे टू पुट इट इन इज दैट दिस इज समथिंग, दिस वाज समथिंग दैट वाज एक्सपेक्टेड अगेन टू हैपन एट अ लेटर लेवल ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी. दैट has begun to happen now. Why? Because Mudra Yojana essentially says that somebody who is able to take a loan for self or for entrepreneurship should have the financial literacy to be able to carry that sort of a enterprise. Now, typically, or somebody who's poor and who's doing an enterprise because she or he has been forced to do it is different from somebody who's doing a financial enterprise out of share, out of because he wants or she wants to do it. There's a difference. That difference, because of the fact that a ecosystem of support, partially again through the Jam Trinity, has come in where people are confident that they can run a financial enterprise seamlessly. You know, because otherwise, what has been happening is that there are several types of interventions to create entrepreneurship which had been tried, which had not worked, primarily because people lack the confidence that whether the back end of an enterprise will be something that they can sustain. It's actually a very big thing because unlike a salaried person who gets some money at the end of the month, does the work and is all assured and comfortable that you'll get a salary and so that's about it. Here a person is daily selling his ware, services, manufactured products, whatever it is, and earning income and keeping a track of it and then also being able to sustain it and being able to pay repay loans. And then because the Mudra loan, as we can see, is of three stages: the Shishu, then Kishore and then Tarun. So there are three stages in which, so you graduate from one to another. To be able to do that sort of a thing, you need a considerable amount of financial, what I should say, architecture in place. And that is a very interesting innovation that has been created. Obviously, compared to, say, Ujjwala or Sakshatkar Mission or missions like the Swachh Bharat Mission, this is relatively more recent. So it'll start showing its effect later. But already you can see from the PLFS survey, the Periodic Labor Force survey, that about 50% of Indians are now reporting self-employment. And that self-employment is not distress employment. It is employment, self-employment that is being made possible for a large number percentage of them because they are confident that they can take on these enterprises and can take on expansion of their products and services, which wasn't possible earlier. How it will pan out is a very big thing. Remember, we are talking about a population base, which is the largest population base in the world. To be able to create self-employment in that sort of a large population, being able to support themselves, being able to support their families, being able to carry on the business for long length of time, not being drawn into the race for getting a job. Here, there we are talking of plenty of changes, which is not very easy to think of as just, you know, suddenly that we've done it and it's one-time support. It's not a one-time support. It's something which is actually a result of series of interventions, which brings a scheme like Mudra into being a success, that it is being envisaged.
0: Yes. Right, Shubham. देखिए अभी शो मैंने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात की, स्टैंड अप इंडिया स्कीम भी एक ऐसी स्कीम है जिसके तहत 15,000 प्लस करोड़ लोन अभी तक डिसबर्स किए जा चुके हैं, इस बारे में भी थोड़ा हमें बताएं। और पीएम स्वनिधि योजना जो कि एक बहुत ही, जिसे कह सकते हैं एक फ्लैगशिप स्कीम जिसे कहते हैं, ये भी एक बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को ये लाभान्वित कर रहा है, कैसे देखते हैं आप?
2: देखिए, ये जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है ये एक बहुत कॉन्सिक्वेंशियल रिफॉर्म है। वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे याद है कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के साथ साथ ही इसका आरंभ किया गया था COVID-19 के दौरान। जून 2020 में ये शुरू की गई थी। उस वक्त मंशा ये थी कि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो बहुत बुरी तरीके से हिट हुए थे, जिनकी वजह से हम और आप कोविड से लड़ पाए थे, क्योंकि वो सब्जी बेच रहे थे, वो वेयर्स बेच रहे थे, तो हम उसको खरीद रहे थे।
0: इवन अगर गिग वर्कर्स की बात करें,
2: बिल्कुल गिग वर्कर्स की भी स्वनिधि में वो भी काफी हद तक कवर होते हैं, तो उनके लिए ये स्कीम लाई गई थी कि बेसिकली आइडिया था कि वर्किंग कैपिटल जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको दी जा सके, ताकि वो ऐसा ना हो कि COVID-19 की वजह से बिल्कुल ही त्रस्त हो जाएं। तो तब से इतनी इम्पोर्टेंट बन गई स्कीम और इसका लाभ इतना दिखाई देने लगा फाइनेंशियल सिस्टम में कि स्ट्रीट वेंडर्स को डिग्निटी मिली, फाइनेंशियल इंक्लूजन मिला। सबसे इम्पोर्टेंट होता है वर्किंग कैपिटल हाथ में है तो आप 10 तरीके की चीज़ें कर सकते हैं। तो अब क्या किया गया है, हाल ही में 2025 में यूनियन कैबिनेट ने इस स्कीम को रिस्ट्रक्चर भी किया है और लोन देने की जो अवधि है वो 2030 तक बढ़ा दी गई है। और ना सिर्फ ये किया गया है, 3 लेवल्स पर लोन दिया जा रहा है स्वनिधि में स्ट्रीट वेंडर्स को। पहले लेवल पर आप ये 10,000 से बढ़ाकर 15,000 कर दिया गया है, वैसे ही दूसरे लेवल पे 20,000 से 25,000 कर दिया गया है, और फाइनल लेवल जो है वो 50,000 है। और इंटरेस्ट सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है उन लोगों को जो टाइमली रीपेमेंट कर रहे हैं। प्लस एक बहुत महत्वपूर्ण जो इस स्कीम का बिंदु है वो ये है कि अगर आप डिजिटल ट्रांजैक्शन ज़्यादा से ज़्यादा कर पा रहे हैं तो उस स्थिति में आपको कैशबैक इंसेंटिव भी दे रही है ये स्कीम। तो अभी तक अगर आप आंकड़े उठा के देखेंगे तो आप पाएंगे कि करीब 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स पूरे देश में हैं जो इसमें लाभान्वित हो चुके हैं, और करीब 17,000 करोड़ तक का जो लोन है वो दिया जा चुका है। 122 लाख लोन्स दिए जा चुके हैं करीब 17,000 करोड़ के।
0: राइट अदिति, लेट्स टॉक द वेमेन फोक, लखपति दीदी अभियान। ये लगभग 2 करोड़ से ज्यादा महिलाएं बन चुकी हैं लखपति दीदी, और 3 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य भी है, कुछ बताएं इसके बारे में।
2: जी, ये एक बहुत बड़ी मुहिम है सरकार की। और किसान सम्मान निधि की जो बात हुई उसमें बस छोटी सी एक चीज जोड़ना चाहूंगी कि जब ये अमाउंट तय हो रहा था तब एक स्टडी करवाई गई थी कि फार्मर्स का कॉस्ट इनपुट क्या है, उनकी कॉस्ट कवर करने का ये कवायद है जो 6,000 की रकम तय की गई है। ऐसा पाया गया कि अगर ये दे दी जाए तो एटलीस्ट उनका जो इनपुट है वो कवर हो जाएगा, इस वजह से ये 6,000 पे तय हुई थी। पर अब जो महिलाओं की आप बात कर रहे हैं, महिलाओं को क्या किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बहुत सारे वक्तव्यों में ये कहा है कि विकसित भारत के 4 स्तंभ होंगे, जिसमें से पहले हम चर्चा कर चुके हैं गरीबों की, उसके बाद हम चर्चा कर चुके किसानों की, तीसरा यूथ, आपने स्टैंड अप इंडिया की बात की, और अब चौथी आप बात कर रहे हैं महिलाओं की। ये 4 स्तंभ हैं, जब तक आप इनको फाइनेंशियली एम्पावर नहीं करते तब तक ये पॉसिबल नहीं है कि आप विकसित भारत के गोल को अचीव कर पाएं। जिसकी वजह से ये हुआ है कि एक सेल्फ हेल्प ग्रुप की मूवमेंट इस देश में चल रही है, करीब 80 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इस वक्त कार्यरत हैं। उन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में महिलाएं जो भाग ले रही हैं, लखपति दीदी योजना उसके तहत ये कोशिश कर रही है कि हर महिला 1 साल में 1,00,000 रुपए अपने बलबूते पर कमा सके। उसमें तरीके तरीके के प्रावधान किए गए हैं, जैसे द्रोण दीदी का प्रोग्राम भी उसके साथ इंटीग्रेट किया गया है। कुछ महिलाएं द्रोण दीदी प्रोग्राम के तहत ट्रेनिंग लेकर खेतों में ड्रोन के माध्यम से मतलब पेस्टिसाइड्स छिड़काव कर रही हैं या और बहुत चीज़ें कर रही हैं। सिमिलरली कुछ लोगों को आप हॉर्टिकल्चर में इन्वॉल्व कर रहे हैं, इस तरीके से डाइवर्सिफाई किया जा रहा है। फिशरीज में भी इन्वॉल्व कर रहे हैं महिलाओं को। उनका फाइनेंशियल जो इक्वेशन है, फाइनेंशियल जो एम्पावरमेंट है, उसको बढ़ाने की कवायद है। और एक चीज़ की वर्ल्ड बैंक की अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई थी जिसको हम जिनी इंडेक्स के नाम से जानते हैं, वो देशों को मापती है इस माध्यम से कि कितनी इक्वल सोसाइटीज़ हैं और जो फ्रूट्स ऑफ पावर हैं वो कितनी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं लोगों में। ये जितना कम होता है इसका वैल्यू, उतना एक सोसाइटी को इक्वल माना जाता है। तो वहाँ मैं पढ़ रही थी कि भारत का जो वैल्यू है जिनी इंडेक्स में वर्ल्ड बैंक की वो 25.5 है और चाइना का 35.7 है और यूएस का 41.8 है। कहने का मतलब है कि ये जो सरकार ने एक लैंडस्केप तैयार किया है वेलफेयरिज्म का, इससे ये प्रूव हो रहा है और ये थर्ड पार्टी ऑडिट है, दुनिया की बहुत बड़ी एजेंसी है वर्ल्ड बैंक, ये हम और आप नहीं कह रहे हैं या सरकारें नहीं कह रही हैं यहाँ बैठकर, ये एक थर्ड पार्टी ऑडिट एक इम्पॉर्टेंट एजेंसी कह रही है कि भारत में अब धीरे धीरे वेलफेयर बेनिफिट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने लगे हैं। और जैसा आपने अपने वक्तव्य में कुछ देर पहले कहा कि एक्सट्रीम पावर्टी जिसका मेजर क्या है, उसका मेजर है कि $3 से कम पर प्रतिदिन कितने लोग इस देश में रहते हैं, उसकी जो संख्या है वो 16.2% 2011-12 में थी और अब घट के 5.3% रह गई है। तो धीरे धीरे एविडेंस क्रिएट हो रही है। इसी वजह से बहुत सारी एजेंसीज जो सरकारी ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल एजेंसीज भी अपने एविडेंस बेस्ड पेपर्स में ये कह रही है कि भारत अब उस तरफ बढ़ रहा है जहां उसको विकसित भारत बनने के लिए जो मैकेनिज्म्स चाहिए थे वो इन प्लेस हैं। विकसित भारत का क्या मतलब है? विकसित भारत का मतलब है कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ानी है हमने अपनी
0: जी।
2: अभी हम लो मिडिल इनकम कंट्री के कैटेगरी में हैं, हमें हाई इनकम कंट्री बनना है 2047 तक। वो बनने के लिए चर्चा की है आपने जिन तबकों की, उनको आपको धीरे धीरे फाइनेंशियली इंक्लूसिव बनाना है, उनको एम्पावर
0: करना है। राइट राइट। थैंक यू सो वेरी मच शुभमा आदिति, बोथ ऑफ यू फॉर हैविंग जॉइंड अस एंड शेयर्ड योर व्यूज ऑन द टॉपिक। थैंक यू सो वेरी मच।
2: थैंक यू।
3: विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आप सुन रहे थे मोदी सरकार के 12 साल प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं और उनका जमीनी असर। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक सुभमोय भट्टाचार्य जी और वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे निशित कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIR@nsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: In the special series, you are listening to a discussion on 12 years of the Modi government, key welfare schemes and their grassroots impact. Participants were Shubhamoy Bhattacharjee, economic analyst, and Aditi Tandon, senior journalist. Moderator was Nishit Kumar. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app, News on AIR. This program is available on our YouTube channel, News on AIR Official. You may share your feedback about this program through email at airnsdtalks@gmail.com or WhatsApp on 9289094044.

0: मोदी सरकार की 12 साल। अभी आप सुन रहे थे इस विशेष श्रृंखला की पहली कड़ी। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। फिल्म संगीत ये कार्यक्रम सुनेगा बस थोड़ी ही देर में।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में सलामी फिल्म का ये गीत आपने सुना। इस गीत को लिखा था समीर ने और धुन बनाई थी नदीम श्रवण ने। और इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। नमस्कार।

फिल्म संगीत अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM की 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 8:45 होने को है। अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा। आप सुनेंगे समाचार संध्या, न्यूज एट 9 और 9:15 पर स्पॉटलाइट। तो आइए शामिल होते हैं दिल्ली के प्रसारण में।

आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए 10,000 करोड़ रुपए के विमानन ईंधन स्थिरता कोष को मंजूरी दी। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को भी स्वीकृति मिली। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी को राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया। कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार ने कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। दिल्ली के मालवीय नगर में

0: भीषण आग में 21 लोगों की मौत। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में तेज वर्षा की चेतावनी दी। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी चीन के वेंग होंग यांग को हराकर सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा।
1: ATF प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया है। ATF प्राइस फॉर द एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
0: मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बसें BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
2: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कॉन्ट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है। और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
0: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी है। इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा का समय घटकर लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा।
2: ओडिशा में कोस्टल हाईवे जो स्टेट की बहुत लंबे समय से एक डिमांड रही है, बिकॉज कोस्टल एरियाज का बार बार साइक्लोन से इम्पैक्ट होना, कोस्टल एक्टिविटीज जो है, फिशिंग हो, पान की खेती हो, धान की खेती हो, कई तरह के इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, और साथ ही साथ जो टूरिज्म और श्रद्धा के बड़े केंद्र हैं, जैसे पुरी हो गया, चिलिका हो गया, इन सब की कनेक्टिविटी अलोंग द कोस्ट कैसे हो, ये एक लंबे टाइम से ओडिशा की डिमांड रही है। तो इस डिमांड को आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट में अप्रूव किया।
0: मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बैनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बाकी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। एक रिपोर्ट।
2: ऋतव्रत बनर्जी पहले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्यसभा सांसद थे और बाद में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। उन्हें लगभग 60 विधायकों का समर्थन मिल गया है। यह संख्या दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत आवश्यक 2/3 बहुमत के आंकड़ों से अधिक है। ममता बनर्जी गुट ने इससे पहले शोभन देव चट्टोपाध्याय को विपक्ष नेता नामित किया था। इससे पहले पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति के लिए जमा किए गए हस्ताक्षरों से जुड़े विवाद में पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में विधायक ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साह को निष्कासित कर दिया था। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
1: इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज नबन्ना में सामाजिक सुरक्षा योजना अन्नपूर्णा की शुरुआत की। इसके अंतर्गत 28 लाख से अधिक महिलाओं के खातों में 3,000 रुपए भेजे गए। योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को पंजीकरण कराने के लिए 90 दिन का समय दिया गया है। 25 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाएं योजना के लिए पात्र।

0: होगी। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धारमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉक्टर जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार द्वारा शपथ ग्रहण के बाद एक्स साइट में कहा कि इस बदलते टेक्नोलॉजी के युग में कर्नाटक नए आइडियाज के साथ अपने विकास पथ में सबसे आगे बढ़े। लोकभवन से विधानसौध पहुंचने के बाद उन्होंने महात्मा गांधी, डॉक्टर बीआर अंबेडकर, जगत ज्योति बसवन्ना और अन्य महान पुरुषों की पुतली पर पुष्प नमन किया। उसके बाद उन्होंने विधानसौध के नॉर्थ गेट पर झुककर नमस्कार किया। अपने पहले कैबिनेट मीटिंग में वह कुछ नए समाज कल्याण कार्यक्रमों की घोषणा करने की संभावना है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री डी के शिव कुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। दिल्ली के मालवीय नगर के एक होटल में आज सुबह आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में कई विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। 40 से अधिक लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। एक रिपोर्ट।
2: दिल्ली पुलिस ने दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर में होटल में आग लगने की घटना में गैर इरादतन हत्या के आरोप में FIR दर्ज किया है। इस हादसे में कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई, 26 लोगों का अभी इलाज चल रहा है। दिल्ली नगर निगम ने भी घटना की जांच के आदेश दिए हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत संधू ने कहा है कि कल से जिला मजिस्ट्रेटों, पुलिस उपायुक्तों और नगर निगम के उपायुक्तों की संयुक्त नेतृत्व में 1 महीने तक चलने वाला प्रवर्तन और रोकथाम अभियान शुरू किया जाए। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार बनकर उभरा है। श्री यादव ने बताया कि 2025 तक वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि के मामले में देश ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत देश में पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल शुरू की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार के कदमों की।
3: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं GST ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाया है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत स्वीकृत 1,25,00,000 घरों में से 98 लाख से अधिक घर बनकर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अभिषेक कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि इस योजना के जरिए गरीबों को अपना घर मिल रहा है और किराए के मकान से मुक्ति मिल रही है।
4: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित हो। स्कीम बहुत ही बढ़िया है जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं, सबको सहूलियत हो रही है।
3: वही आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही है जो बाजार से 50-80% सस्ती दरों पर उपलब्ध है। बिहार के रहने वाले ब्रह्मदेव ने बताया कि इन केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिलती है।
5: लगभग 1 साल से ले रहा हूँ, तो सस्ती दवाई मिलती है, डॉक्टर का विश्वास है कि जन औषधि से दवाई खरीदे।
3: वहीं 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक लाभार्थियों को 40 लाख करोड़ रुपए के ऋण दिए जा चुके हैं। भारत के मध्यम वर्ग के लोगों की आय बढ़ने और नए अवसर मिलने के कारण अब वे देश की आर्थिक प्रगति, विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
6: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी अगले दो दिन तेज वर्षा हो सकती है। भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गौर ने कहा है कि प्रस्तावित भारत अमरीका अंतरिम व्यापार समझौते का 99% काम पूरा हो चुका है। मुंबई में उन्होंने कहा कि दोनों देश बाकी बचे मुद्दों को सुलझाने में लगे हैं और अगले कुछ सप्ताह में समझौते को अंतिम रूप दिया जा सकता है। ईरान ने कुवैत और बहरीन में स्थित अमरीकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया है। इसमें एक भारतीय की मौत हो गई है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष ने चीन के वेंग होंग यांग को हराया। रोहन कपूर और ऋत्विका ने चीनी ताइपे के हु लिंग फांग और यांग पो ह्यूआन को पराजित किया। प्रवर्तन निदेशालय ने आज पंजाब और उत्तर प्रदेश में भारत और कम्बोडिया से संचालित मानव तस्करी गिरोह मामले में तलाशी अभियान चलाया। ईडी ने बताया कि इस गिरोह के मानव तस्करी, साइबर धोखाधड़ी और अवैध गतिविधियों में शामिल होने का संदेह है। निदेशालय ने बताया कि दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर और चार्जशीट के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत जांच शुरू की गई। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
7: बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 304 अंकों की गिरावट से 74,346 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 78 अंक कम होकर 23,406 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज डॉलर के मुकाबले 44 पैसे कमजोर होकर 95.70 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए 10,000 करोड़ रुपए के विमानन ईंधन स्थिरता कोष को मंजूरी दी। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को भी स्वीकृति दी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी को राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया। कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार ने कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण आग में 21 लोगों की मौत। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में तेज वर्षा की चेतावनी दी। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी चीन के वेंग होंग यांग को हराकर सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। The headlines. Union Cabinet approves 10,000 crore rupee ATF price stabilization fund to support Indian Airlines. Also gives nods to National Capital Region Planning Board for old trucks and buses replacement in Delhi NCR area. Expelled TMC MLA Rituprata Banerjee appointed as leader of opposition in West Bengal Legislative Assembly. Congress leader D.K. Shivakumar sworn in as 25th Chief Minister of Karnataka. Dr. G. Parmeshwar becomes Deputy Chief Minister while 12 legislators also take oath as Cabinet Ministers. Massive fire in Malviya Nagar in Delhi claims 21 lives. Police file FIR under charges of culpable homicide. Met Department warns of very heavy rainfall in Kerala and Mahe tomorrow. And in badminton, India's Ayush Shetty enters second round of Indonesia Open Super 1000 after defeating China's Wang Hongyang. The Union Cabinet has approved one-time budgetary support of 10,000 crore rupees for oil marketing companies to provide aviation turbine fuel ATF price stabilization support to Indian Airlines for their domestic and international operations. The support will be provided to companies to facilitate stable ATF pricing for airlines during the ongoing period of exceptional fuel price volatility arising from the West Asia crisis. Briefing media in New Delhi today, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said this is a self-sustaining revolving fund which will help to stabilize ATF prices for scheduled Indian carriers.
9: ATF price stabilization fund mein
10: a self-sustaining revolving fund has been established under the ATF price stabilization fund. Airline carriers who want to participate in this will be provided aviation turbine fuel at a stable price during the current crisis. This is expected to significantly reduce the adverse impact on the aviation sector, where over 70 lakh jobs had started to be affected by the ongoing stress in the industry.
9: Because of the stress in the sector, wo isse significantly mitigate hoga.
8: The Union Cabinet has also approved a scheme for support to the National Capital Region Planning Board for replacement of all trucks and buses in Delhi NCR area. The scheme, with a total financial outlay of 9,585 crore rupees, seeks to incentivize owners of trucks and buses registered in the Delhi NCR region that comply with BS4 or earlier emission norms to replace them with BS6 or electric vehicles. Mr. Vaishnav also informed that the Cabinet Committee on Economic Affairs has approved the construction of a new coastal highway from Rameshwar to Paradip in Odisha.
9: Odisha mein coastal highway.
10: In Odisha, the phase 1 of the coastal highway was approved today. It will extend from Rameshwar through Konark up to Paradip, covering the stretch from the southern tip of Odisha to its central region, reaching Paradip. Additionally, a very important highway project has been approved in Bihar, that is the four-laning of the road between Khagaria and Purnia.
9: Khagaria se Purnia ke beech mein four-laning.
8: In West Bengal, Social Security Scheme Annapurna Yojana was formally launched in the state today by Chief Minister Shubhendu Adhikari, transferring 3,000 rupees directly into the bank accounts of over 28 lakh women. Five women were symbolically handed approval letters during the ceremony. In a major political development in West Bengal, Rituprata Banerjee has been appointed as the leader of the opposition in the West Bengal Legislative Assembly. The appointment follows the Assembly Speaker's reported recognition of a rebel group of Trinamool Congress legislators as a separate legislature party. More from our correspondent.
11: Rituprata, a former CPIM Rajya Sabha MP who later joined the Trinamool Congress, secured the backing of nearly 60 MLAs, enough to cross the two-thirds mark required under the anti-defection law. The move has triggered a major split within the Trinamool Congress. Mamata Banerjee's faction had earlier nominated Shobhandeep Chattopadhyay as leader of the opposition. Speaking to reporters after meeting the speaker, Rituprata claimed that the dissident legislatures now constitute the real and main opposition in the House. He said his group will act as a constructive opposition, supporting the government when needed, but standing firm against policies they oppose. The development comes amid an intense political crisis within the Trinamool Congress, which has been facing internal dissension following the recent assembly elections. The party had earlier expelled MLA Rituprata and Sandipan Shaha over alleged anti-party activities. Political observers are calling this one of the most significant challenges to Mamata Banerjee's leadership since she came to power, drawing comparisons to the Shiv Sena split in Maharashtra. Legal battles and further defections are expected in the days ahead. Sandipan Dashgupta, Akashvani News, Kolkata.
8: To strengthen surveillance and infrastructure along the India-Bangladesh border, the West Bengal government has approved the transfer of nearly 32 acres of land to the Border Security Force. At today's cabinet meeting in Nabanno, Approval was given for the permanent transfer of this land for building border fences, security posts and other facilities. After the meeting, Minister Dilip Ghosh announced that a total of around 32 acres across several border districts have already been transferred to the BSF. In Karnataka, senior Congress leader

0: चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है मॉनसून पूर्वानुमान, कृषि क्षेत्र के लिए संभावनाओं और चुनौतियों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर जेपीएस डबास। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: जब तपती धरती की दरारें आसमान की ओर उम्मीद से देखती हैं, जब किसान की निगाहें खेत से ज्यादा क्षितिज पर टिक जाती हैं, जब गांव की चौपाल से लेकर देश के बाजार तक एक ही सवाल गूंजने लगता है, मॉनसून कब आएगा, तब ये सिर्फ मौसम का इंतजार नहीं होता, ये इंतजार होता है नई फसल का, नए अवसरों का, नई उम्मीदों का। भारत में मॉनसून महज बारिश नहीं है, ये खेतों की धड़कन है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है और करोड़ों लोगों के सपनों का आधार है। इसकी चाल तय करती है कि खेतों में कितनी हरियाली होगी, गांव में कितनी खुशहाली होगी और अर्थव्यवस्था की रफ्तार कितनी तेज होगी। यही वजह है कि मानसून का हर पूर्वानुमान

0: केवल मौसम विज्ञान का विषय नहीं बल्कि कृषि, ग्रामीण विकास और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से जुड़ा एक महत्वपूर्ण संकेत बन जाता है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, मॉनसून का पूर्वानुमान, कृषि, ग्रामीण विकास और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। हमारे साथ हैं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव और प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर जेपीएस डबास। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो इस कार्यक्रम में हम जानेंगे कि इस वर्ष का मानसून क्या संदेश लेकर आ रहा है, किसानों के लिए इसमें क्या संभावनाएं हैं और ग्रामीण भारत और अर्थव्यवस्था पर इसके क्या दूरगामी प्रभाव पड़ने वाले हैं। शुरुआत करते हैं अखिल जी आपके साथ, आपसे ये समझना चाहेंगे कि इस साल मौसम विभाग ने जो मानसून का पूर्वानुमान जारी किया है उसमें डायनेमिक और सांख्यिकीय मॉडल के क्या संकेत हैं? क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में हमारी पूर्वानुमान तकनीक भी बदली है और उसमें बहुत ज्यादा एफिशिएंसी भी देखने को मिली है।
2: जो भारत मौसम विज्ञान विभाग जो नॉर्मल फोरकास्ट को हम बोलते हैं, जो मानसून की वर्षा के लिए फोरकास्ट जारी करता है, इसके लिए अब भारत मौसम विज्ञान विभाग जो है पिछले कुछ वर्षों से एक डायनेमिक जो है मॉडल का उपयोग कर रहा है। इसमें स्टैटिस्टिकल यानी कि सांख्यिकीय से संबंधित जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है उसके साथ साथ जो डायनेमिकल मॉडल्स होते हैं क्लाइमेट के वो भी रन किए जाते हैं। फिर उन दोनों को आधार बना करके जो वर्षा का क्या रेंज रह सकता है आने वाले मॉनसून के सीजन के दौरान, ऋतु के दौरान, उसको वह फिर जारी किया जाता है। तो अभी अगर हम देखेंगे तो पिछले कुछ वर्षों से अगर आप उसके डेटा को भी देखेंगे तो जो ये मॉनसून का जो पूर्वानुमान जा रहा है यानी कि फोरकास्ट में जो एक्यूरेसी है उसमें भी काफी जो है इम्प्रूवमेंट हुआ है, काफी बेहतर।
0: जी डॉक्टर डबास, चूंकि आप कृषि वैज्ञानिक हैं और जब आप बोलते हैं तो भारत के किसान बहुत गौर से सुनते हैं, आपसे ये जानना चाहेंगे कि मौसम विभाग के इस पूर्वानुमान को देखते हुए इस खरीफ के मौसम में किसानों को किस तरह की फसल योजना अपनानी चाहिए? क्या कम पानी वाली या जल्दी पकने वाली किस्मों पर ध्यान देना उन्हें चाहिए?
3: आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस बार हमें उम्मीद है कि उत्तरी वर्षा कम है, 10% के करीब कम बता रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि वर्षा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा, क्योंकि फसल जो है पानी से ज्यादा जरूरी तो कौन कौन से स्टेज पे उसको कोई सूखा ना पड़े, तो वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जहाँ तक हमारी कृषि विज्ञान का सवाल है, इस समय हमारे पास 700 से अधिक कृषि विज्ञान केंद्र हैं, लगभग 80 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं और आईसीएआर इंस्टीट्यूट हैं जो कि किसानों को गाइड करने के लिए और भारत सरकार की तरफ से किसान कॉल सेंटर 24/7 काम कर रहा है। हमारे पास ऐसी किस्में हैं जो कम पानी में तैयार हो जाती हैं, हमारे पास कुछ ऐसी विधियाँ हैं जिसमें कम पानी लगता है और पैदावार अच्छी मिलती है, और साथ साथ में हमारे जो किसान है उसको हमें शिक्षित करना है कि जो भी पानी जमीन पे गिरे उसमें कम से कम रन ऑफ से मतलब फ्लड के तौर में बहे और ज्यादा से ज्यादा पानी हमारी जमीन मिट्टी के अंदर जाए और उसका सदुपयोग कर पाए। और पानी जो फसल को होता है उसके साथ साथ में उससे फसलों के बहुत सारे दुश्मन है जो उस पानी को चुराने की कोशिश करते हैं, इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहता है खरपतवारों का। तो अगर हम हमारी जो किस्म क्रिया ऐसे करेंगे जिससे कि पानी की भी बचत हो, खरपतवार का नियंत्रण हो, तो ये जो 10% पानी की जो वर्षा इस बार हमें कम पूर्वानुमान है, इसके बावजूद भी हम खरीफ के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं और अपनी मिट्टी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रख सकते हैं। तो मैं अपने किसान भाइयों को ये जरूर कहना चाहूंगा कि बीज के साथ साथ हमें एक तो जितने भी हमारे पास देसी खाद है, खासकर चाहे कुरडी का खाद हो, चाहे हमारे पास वर्मी कम्पोस्ट हो, चाहे बायोगैस की सलरी हो, अगर बायोगैस की सलरी और वर्मी कम्पोस्ट है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये खाद न केवल हमारी फसलों को पोषण देते हैं बल्कि हमारी जमीन की जलधारण क्षमता को बढ़ाते हैं और साथ साथ में बरसात से पहले ही हमें अपने खेतों की जुताई भी करनी है और जुताई करने के साथ साथ में उसकी मेड़बंदी को मजबूत करना है कि जो भी बूंद गिरे वो या तो हमारे खेत में मिट्टी में नीचे जाए, जमीन के अंदर जाए, या हमारी फसल को मिले और कम से कम जो पानी का ह्रास जो है वो रन ऑफ के तौर पर हो या खरपतवार ले पाए, तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। दूसरी ध्यान रखने वाली बात होती है, जो भी हम फसल लेते हैं उसमें कुछ क्रिटिकल अवस्थाएं होती हैं जिसमें हमारे किसानों को जो भी बरसात का पानी होता है वो इकट्ठा करके उसमें अगर हम प्रयोग कर पाते हैं तो उसके बावजूद भी हम अपना फसल का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि हमारा जो कृषि विज्ञान तंत्र है और साथ साथ में जो हमारा मौसम विभाग है, ये जब दोनों मिलकर क्योंकि काम कर रहे हैं, इस समय मौसम विभाग की तरफ से हर आईसीएआर इंस्टीट्यूट को, हर कृषि विज्ञान केंद्रों को काफी सूचना जाती है कि हफ्ते में के दो दिन बाद मंगलवार को शुक्रवार को कि नेक्स्ट 5 डे कैसा मौसम रहने वाला है, क्या पूर्वानुमान है, उसी के आधार पे हमारे कृषि वैज्ञानिक हर एक सब्जेक्ट के बैठते हैं और वो बताते हैं कि हमारे किसानों को कौन सा बीज बोना है, कब बोना है, कैसे बोना है, बीज की ट्रीटमेंट किससे करना, उपचार कैसे करना है और हमें इस हालात से निपटने के लिए हमारे साथ में हमारा जो प्रसार तंत्र है, खासकर हमारा दूरदर्शन मास मीडिया है और हमारे ऑल इंडिया रेडियो है और साथ में दूसरी जो चीजें हैं वो भी किसानों को एजुकेट करने के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हम इसका लाभ उठाएंगे, हम इससे किसी तरह हरास नहीं होने देंगे और इस विपरीत परिस्थिति को भी हम एक अपॉर्चुनिटी में बदलने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारा उत्पादन भी बढ़े, उत्पाद की गुणवत्ता भी बेटर हो, हम कीड़े मकोड़े बीमारियों का भी ठीक से प्रबंध कर पाए और साथ साथ में हम मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हुए हर बूंद का सदुपयोग करके अधिक से अधिक अन्न सब्जी फल और सभी फूल और सभी चीजें उगाएं।
0: डॉक्टर श्रीवास्तव आपसे ये समझना चाहेंगे कि अक्सर देखा जाता है कि देश में सामान्य मानसून का औसत तो ठीक रहता है लेकिन कुछ राज्यों में सूखा और कुछ में बाढ़ आ जाती है। इस बार वर्षा के जो स्थानिक वितरण को लेकर मौसम विभाग का क्या आकलन है?
2: मॉनसून जो है वो हर साल एक नई तरह की परिस्थिति को लेकर के आता है, तो इस वर्ष भी जो मॉनसून में जो वर्षा है पूर्वानुमान दिया गया है उसके अनुसार वो करीब करीब 90% रहने की संभावना है, जो लॉन्ग टर्म एवरेज है यानी दीर्घावधि औसत का, जिसमें प्लस माइनस 4% की कमी भी हो सकती है। अब ये जो वर्षा का पूर्वानुमान किया गया है ये अगले 4 महीनों के लिए जो है वो किया गया है, यानी कि जून से लेकर के सितंबर तक का। अब इसमें ये बात समझने की बहुत जरूरत है कि जैसे आपने अभी बताया कि कुछ राज्यों में जो मानसून की वर्षा है वो कम हो सकती है, कुछ राज्यों में ज्यादा हो सकती है। इसमें अभी तक का जो स्थानिक जो हमारा प्रण है पूर्वानुमान का, उसमें ये है कि जो पूर्वोत्तर राज्य है यानी कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, वहां पर जो वर्षा है वो करीब करीब सामान्य रहने की संभावना है उत्तर पूर्व भारत में, यानी कि जो लॉन्ग पीरियड एवरेज दीर्घावधि औसत का 94 से 106% तक की रेंज में वर्षा हो सकती है। वहीं मध्य भारत में और दक्षिण वैली भारत में 94% जो है दीर्घावधि औसत का उससे कम वर्षा रहने की संभावना है, उत्तर पश्चिम भारत में 92% यानी कि 92% से कम वर्षा रहने की संभावना है, यानी कि वर्षा जो है वो सामान्य से कम रहने की संभावना है। हालांकि इसमें ये भी जरूरत समझने की बात है कि ये जो वर्षा है ये बहुत ही इवन तरीके से चारों महीनों में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहती है, कभी किसी समय में ज्यादा वर्षा मिल जाती है, इसके कई बार फ्लड की सिचुएशन देखने को मिलती है, कई बार मॉनसून ब्रेक कंडीशन भी आती है जब वर्षा काफी घट जाती है। तो इसके लिए भारत मौसम विभाग लगातार पूर्वानुमान देता रहता है। इसमें जैसे कृषि के लिए अगर बात करें तो सप्ताह में 2 बार जो अगले 5 दिनों का विवरण दिया जाता है, इसके साथ साथ हर बृहस्पतिवार को बारिश से संबंधित जो है एक्सटेंडेड रेन फोरकास्ट जारी किया जाता है। इसमें अगले 4 हफ्तों के लिए सप्ताहवार यानी कि हर सप्ताह में कैसा वर्षा रह सकती है उसका भी पूर्वानुमान जारी किया जाता है। इसमें मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि इसमें जो हमारा मुख्य रूप से जो मॉनसून कोर जोन है यानी कि वो क्षेत्र जो कि ज्यादातर मौसमी वर्षा पर जो निर्भर करता है कृषि के लिए, वहां पर जो है वर्षा का पूर्वानुमान भी जो हमारे अभी मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है उसमें सामान्य से कम वर्षा की संभावना जो है वो दर्शाई गई है। तो इसको देखते हुए जो मौसम की जो पूर्वानुमान किए जा रहे हैं स्थानिक स्तर पर भी और डिफरेंट टाइम फ्रेम के लिए यानी कि जो हर दिन दैनिक रूप में पूर्वानुमान किए जाते हैं, इसके साथ साथ में जो एक्सटेंडेड रेंज यानी कि विस्तारित रेंज का जो पूर्वानुमान भारत मौसम विज्ञान विभाग करता है उसका भी बहुत अच्छे से उपयोग होना बहुत जरूरी है, ताकि बहुत कुशल रूप से जो ये प्रिपरेटरी चीजें हैं उनको मैनेज किया सके, एग्रीकल्चर रिलेटेड चीजों को मैनेज किया जाए।
0: जी बिल्कुल डॉक्टर डबास, आपने अभी कुछ देर पहले बताया कि जहां पर कम बारिश होने की आशंका जताई जा रही है वहां किसान किस तरीके से अपनी फसल का ध्यान रखें, और जैसा कि अभी डॉक्टर श्रीवास्तव बता रहे हैं कि कुछ राज्यों में ज्यादा बारिश की भी संभावना है, यदि मानसून के दौरान अचानक बहुत भारी बारिश होती है तो जल भराव से फसलों को बचाने के लिए किसानों को कौन से बुनियादी वैज्ञानिक उपाय पहले से कर लेने चाहिए?
3: हमारे जो किसान है वो हमें क्षेत्र वाइज उनको बात करते हैं, जैसे राजस्थान पूरा एरिया है, इसमें हम लोगों ने बहुत किसानों को आगाह किया हुआ कि उन्होंने खेतों पे टैंक बना रखे, तालाब बना रखे, उनकी कोशिश होती जो भी ज्यादा बारिश हो उसको टैंक में जाए। और इसी तरह से हमारे पूरे देश में सभी नदियों पे बांध बने हुए हैं, हमारी कोशिश ये रहती है कि अपने आवश्यकता के अनुसार पानी को इकट्ठा रखें और पानी को पूरा कितना हमारे पास पानी है, कितने आगे बारिश होने वाली है, कितना भी छोड़ना है, तो ये बैराज से हम लोग नियंत्रण करने की कोशिश सरकार करती है और इसी का फायदा उठा के किसानों को भी हम गाइड करते हैं कि जिन क्षेत्रों में अधिक बारिश होने वाली है वहाँ पे हम धान की फसल या जो फसलें ज्यादा पानी चाहिए उसका रिकमेंड करते हैं। और ये भी हम किसान को आगाह करते हैं कि जो पानी खेत से निकालना, क्योंकि जल निकासी भी बहुत जरूरी है, अगर हमें फसल अच्छी लेनी है और बरसात ज्यादा है तो वहाँ पे जल निकासी का भी होना बहुत जरूरी है, लेकिन जब जल निकासी किसान करे तो इस आधार पे करे कि उसकी जो उपजाऊ मिट्टी भी ना जाए, फसल को नुकसान ना हो और मौसम विभाग को ध्यान में रखते हुए इन बातों के, क्योंकि किसान की जितनी भी कृत्रिम क्रियाएं आगे जो पूरे चार मानसून के जो महीने रहेंगे वो हम लोग हर वीक में दो बार बताते हैं किसानों को, और सभी कृषि विज्ञान केंद्र भी और सभी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी हम ये बताना चाहते हैं अगर बरसात की संभावना है तो उसमें किसान को क्या करना है क्या नहीं करना है और कौन सी विधि अपनानी है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा धान का ही, अगर धान की सबसे क्षेत्र नीचे है जिसमें पानी खड़ा होता है तो हमारे पास धान के अलग अलग किस्में हैं जो अलग अलग ऊंचाई में भी और पानी को भी सहन कर सकती हैं। अगर बरसात कम हो रही है लेकिन हमें धान फिर भी पैदा करना है खासकर नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ वेस्ट में जहाँ पे क्योंकि बासमती का हमारा एक्सपोर्ट लगभग 30,000 करोड़ से ज्यादा का है और इसमें हमें लगातार भी पैसा मिलता है और हमारा देश बासमती के नाम से काफी जाना भी जाता है, तो बासमती के में भी हमें एक तो डायरेक्ट सीडिंग के लिए बहुत सारी नई किस्में निकालनी है जिसमें कि 35% पानी बचता है। इसी तरह से SRI विधि से भी अगर हम बासमती के चावल की खेती करते हैं तो 30-35% पानी बचता है और साथ में फसल भी अच्छी होती है, कीड़े बीमारी का प्रकोप भी कम होता है। तो हमारी कोशिश ये रहेगी हम किसान को पहले से एजुकेट करके रखें जिससे कि किसान अपनी बचत करते हुए और जहाँ पानी की संभावना बहुत कम है तो वहाँ हम किसानों को कहेंगे धान जैसी फसल ना लगा के या तो मक्का लगाएं या मोटे अनाज लगाएं या दलहनी फसल लगाएं, लेकिन जो भी फसल लगाएं उनमें खरपतवार नियंत्रण और निराई गुड़ाई ये एक विशेष योगदान है, इसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है क्योंकि खरपतवार तो पानी के साथ साथ में न्यूट्रिएंट भी चुराई करते हैं, मतलब किसान से फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन जो निराई गुड़ाई है वो एक फसल की जड़ों को एक ऐसा एटमोसफियर प्रदान करती है जिससे कि पौधे की जड़ें काफी ग्रोथ करती हैं और वो दूर तक के पानी के खींच लेती है और पानी एकदम से सीधा वाष्पीकरण से उड़ता नहीं है बल्कि जमीन में बना रहता है। और कुछ क्रिटिकल अवस्थाओं पर हम किसानों को बार बार ध्यान देते हैं कि इस समय हमें पानी की वो विधि अडॉप्ट करनी है जैसे ड्रिप सिंचाई है या स्प्रिंकलर विधि है जहाँ पे हम कम पानी से भी ज्यादा लाभ उठा पाए, खासकर जब आपने दक्षिण भारत की बात या मध्य भारत की बात की जहाँ पे इस बार बारिश की थोड़ी संभावना कम लग रही है तो वहाँ पे हम किसानों को उस किस्म की सलाह देते हैं। तो हमारे जो कृषि वैज्ञानिक वो भी तैयार है, साथ साथ में भारत सरकार ने अभी लास्ट तो लगभग एक हफ्ता पहले ही एक मीटिंग ली है जिसमें सभी राज्यों के कृषि विभाग के जितने भी अधिकारी थे साथ साथ में हमारी क्या योजना होनी चाहिए, हमारे पास कौन सी चीजों के कितने सीड हैं और किसान को सही समय पर सीड भी मिले साथ साथ में उसके पास हमारे उर्वरक भी पहुंचे और किसान को सब सुविधाएं मिले, तो उसके लिए सरकार पहले से तत्पर होके ऑलरेडी कार्य योजना बना रही है। और इस समय जो हमारी कृषि अनुसंधान परिषद भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICR जो है ये पूरे देश में इस महीने को किसानों को एजुकेट करने के लिए यूज कर रही है और कृषि वैज्ञानिक गाँव में जा रहे हैं उनको एजुकेट कर रहे हैं, तो हमारी तैयारी पूरी है और वो हमारे प्रयास रहेगी किसानों को हम किस तरह से लागत को कम करने में मदद करें, कैसे पानी के संरक्षण में मदद करें, कैसे किसानों को तालाब और सब चीजों में गाइड करें, मल्चिंग इसमें एक बहुत बड़ा योगदान
0: जी बिल्कुल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं
3: आप, तो उन सब चीजों को हम काफी जोर दे रहे हैं और मुझे लगता है कि हमारा देश जो है तकनीकी के तौर पे और उसमें हमारा सक्षम है और आप लोगों के सहयोग से हम बहुत अच्छे से कर पाएंगे।
0: डॉक्टर श्रीवास्तव, जब जलवायु परिवर्तन की हम बात करते हैं और जलवायु परिवर्तन के दौर में अल नीनो और ला नीना के जो संकेतक हैं वो तेजी से बदल रहे हैं, दो छोटे छोटे सवाल। पहले तो हमारे श्रोताओं के लिए अल नीनो और ला नीना को थोड़ा आप एक्सप्लेन कर दें और साथ ही उसी से जुड़ा एक सवाल ये है कि इस साल के मानसून पर इनका क्या और कितना असर देखने को मिल सकता है।
2: अगर हम एल नीनो को बहुत ही सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें तो ये एक तरह से ऐसी सिचुएशन होती है, ये इस तरह का सिचुएशन डेवलप होता है जो कि काफी दूर से ही भारतवर्ष के जो मौसम को प्रभावित कर सकता है, भारतवर्ष के कहे या अगर कॉज बृहद रूप में समझे तो ये पूरे ग्लोबल जो वेदर सिस्टम है जो वेदर के इवेंट्स हो रहे होते हैं प्रभावित करता है। इसमें मुख्य रूप से अगर हम एल नीनो की बात करते हैं तो जो प्रशांत महासागर जो भूमध्य रेखा के पास का प्रशांत महासागर है वहां पर जो समुद्र की सतह है उसमें जो टेम्परेचर है उसका तापमान जो है उसका धीरे धीरे वो बढ़ जाता है, यानी कि वो असामान्य रूप से गर्म हो जाता है। जब प्रशांत महासागर का जो भूमध्य रेखा के पास समुद्र सतह का तापमान असामान्य रूप से गर्म हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं अल नीनो, और जब ये समुद्र की सतह का तापमान असामान्य रूप से ये ठंडा हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं ला नीना। तो ये जो दो इवेंट है ये एक तरह से प्राकृतिक इवेंट है जो कुछ सालों के बाद जो हमें देखने को मिलते रहते हैं। जब समुद्र का पानी गर्म हो जाता है भूमध्य रेखा प्रशांत महासागर में तो इसका सबसे बड़ा असर ये होता है कि जो हवाएं हैं जो हवा की जो एक नेचुरल जो डायरेक्शन होता है उसमें उनका जो रुख होता है ये उसको बदलने का काम करता है। हवा जो भारत में जो मानसून को खींच कर लाने वाली हवाएं हैं ये उनको कमजोर करने का एक तरह से कार्य करता है, इसलिए एल नीनो का बहुत असर जो है काफी हद तक भारत के मानसून पर देखा जाता है। इन जनरल अगर हम बात करें तो जब भी एल नीनो कंडीशन होती है तो भारत में जो वर्षा है उसमें कमी देखी जाती है, हालांकि कुछ वर्ष ऐसे भी देखे गए हैं जब एलिनो के बावजूद भी काफी अच्छी वर्षा भारत वर्ष में देखने को मिली है। इसमें हमें ये भी समझने की जरूरत है कि जब लानिना कंडीशन होती है तब भारत वर्ष में जो वर्षा है उसका जनरल ट्रेंड अगर देखें एक तरह जनरली हम बात करें उसके बारे में तो वो वर्षा के लिए सहायक सिद्ध होता है, जबकि एलिनो कंडीशन यानी कि जब समुद्र की सतह का तापमान असामान्य रूप से गर्म हो जाता है तो वो वर्षा के लिए नेगेटिवली काम करता है, नकारात्मक रूप से उसको प्रभावित करता है। लेकिन जो मॉनसून सिस्टम है वो अपने आप में बहुत रहित सिस्टम है, इसमें सिर्फ एक फैक्टर का जो है यानी कि एक जो इवेंट है जैसे एलिनो सिर्फ इसका ही असर नहीं होता है, बहुत सारे अन्य कारक हैं जो भारत के मॉनसून को प्रभावित करते हैं, जैसे कि इंडियन ओशन डायपोल यानी कि जो हमारा जो हिंद महासागर में जो डायपोल स्थिति बनती है उसका भी असर होता है कई बार। तो सिर्फ एक कारक से भारत के मॉनसून का जो है डायरेक्शन तय नहीं होता है, लेकिन एलिनो को इन जनरल देखा जाता है तो ये एक काफी ज्यादा जो है प्रभाव डालता है भारत के मॉनसून के ऊपर। अगर हम बात करें 2026 की यानी कि जो आने वाले जो अभी मॉनसून का सीजन हमारा शुरू हो गया है लगभग, इसमें तो अभी जो एलिनो की कंडीशंस है वो अभी न्यूट्रल कंडीशंस से एलिनो की वीक कंडीशंस की ओर जो है ट्रांजिशन चल रहा है, यानी कि मॉनसून के दौरान एलिनो कंडीशंस जो है डेवलप करने के गाइडेंस जो है वो सारे मॉडल दिखा रहे हैं और यही पूर्वानुमान भी दिया गया है, यानी कि मानसून के दौरान एलिनो कंडीशंस जो है वो डेवलप हो सकती है, प्रशांत महासागर में समुद्र की जो सतह तापमान है वह असामान्य रूप से गर्म होगा जो कि हवाओं के रुख को निर्धारित तौर पर प्रभावित करेगा और हम इसका असर भी मौसम की जो मानसून की जो वर्षा है इसमें भी हमें देखने को मिल सकता है। और इसी को देखते हुए ये भी कारक रहा है कि जो वर्षा का पूर्वानुमान है वो बिलो नॉर्मल यानी कि सामान्य से कम वर्षा का पूर्वानुमान में इसकी बहुत बड़ा योगदान रहा है।
0: जी डॉक्टर डबास, उन किसानों के लिए आप क्या कहेंगे जहां पर जल संरक्षण, सूक्ष्म सिंचाई और वर्षा जल संचयन को लेकर कुछ किसान काफी सजग रहते हैं, उन किसानों को किन व्यवहारिक उपायों पर ध्यान देना चाहिए?
3: ये जो हमारे किसान हैं जिनके पास में जल सिंचाई की बहुत अच्छी विधियां हैं और साथ साथ में सजग हैं, इनको मैं ये कहना चाहूंगा सबसे पहले तो एक अच्छी किस्म का चुनाव करना है, बीज का सही समय पर प्रबंध करना है। प्रबंध करने के बाद में हमारे न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए क्योंकि कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं जो हमारी फसल को सूखे से लड़ने की भी ताकत देते हैं और उसकी जड़ों के विकास को महत्वपूर्ण योगदान देते हैं जिससे कि उसको फायदा होता है। तो एक संतुलित मात्रा में खाद का उपयोग करना है, उसमें केवल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर ही नहीं करने, साथ साथ में फास्फोरस, पोटाश और दूसरी चीजों का भी देख करना है। और जो सरकार ने हमें एक योजना दी है सॉयल टेस्टिंग की, उसके आधार पर अगर खाद का प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। उसके बाद आती है कि हमें किस्म का चुनाव, क्योंकि इस समय हमें उस किस्म का चुनाव करना है जो जल्दी पक के तैयार हो, जिसका अनाज भी अच्छा हो, साथ साथ में कम पानी ले। हमें विधि भी वो चुननी है कि उसका प्रॉपर प्लांट पॉपुलेशन हो। कई बार हम जब बुआई करते हैं तो बीज की मात्रा ज्यादा होती है लेकिन पौधे काफी सघन हो जाते हैं, तो हमें अगर पौधों की संख्या सही रखेंगे तो कम पानी में हम ज्यादा पैदावार ले पाएंगे। और साथ साथ में खरपतवारों का प्रबंध बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान प्ले करता है क्योंकि खरपतवार काफी मात्रा में बीमारी भी फैलाते हैं, कीड़े भी फैलाते हैं, साथ साथ में पानी का बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। तो अगर हम खरपतवारों का प्रबंध कर लेते हैं उससे भी बहुत बड़े पानी की बचत होती है और साथ साथ में हमारी मिट्टी का अच्छा रहता है। और निराई गुड़ाई समय पर होना बहुत ही जरूरी है। और इसके साथ साथ में हमें जो पानी हमारे पास है वो सही टाइम है, मोस्टली अगर आपके पास अपनी इरिगेशन फैसिलिटी है तो पानी का सुबह और शाम इस्तेमाल करना है। और क्रिटिकल स्टेजेस पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है, जैसे कि बाली निकलनी है, बाली आने वाली है, उग रहा है या फुटाव चल रहा है। और कई बार कुछ किसान भाई ज्यादा खेत में पानी खड़ा रखते हैं, उससे नुकसान भी होता है खासकर धान की फसल में। तो अगर हम पानी सूखने दें और फिर पानी लगाएं तो उससे लगभग 30-35% पानी की बचत होती है और पैदावार भी अच्छी आती है, कीट और बीमारी का प्रकोप भी कम होता है। तो मैं उन किसानों को ये कहना चाहूंगा कि उसका उपयोग करना बहुत ही जरूरी है। इसी तरह से मक्का की फसल में भी कुछ खास क्रिटिकल स्टेजेस होती है, उसका विशेष ध्यान रखना है, खासकर जब उसमें फुटाव हो, जब टेसल बने, उसमें फ्लावरिंग आए, तो उस समय पानी की कमी ना हो तो बहुत अच्छा रहता है। और खरपतवार प्रबंधन यहाँ भी करना है और साथ साथ में मक्का के में कीट प्रबंधन पे भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि आजकल एक फॉल आ रहा है जो काफी नुकसान करता है। तो उसको हम समय से पहले अगर टैकल कर लेंगे तो हम ज्यादा पैदावार ले पाएंगे। साथ साथ में जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक लगातार संपर्क में बने रहें और जितना भी अधिक से अधिक मात्रा में देसी खाद का प्रयोग करेंगे उससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी, मिट्टी की जल धारण क्षमता भी बढ़ेगी और साथ साथ में मिट्टी का जब उर्वरा शक्ति बढ़ेगी तो हमारी फसल अच्छी पैदा होगी। तो वह हमें विशेष ध्यान रखना है और संतुलित मात्रा में खाद का प्रयोग करें, किसी भी हालत में घबराएं नहीं। और हमें अपने किसानों पर पूरा विश्वास है कि किसान हमारा बहुत सक्षम है, सरकार की योजनाएं अच्छी हैं और आपका जो विस्तार तंत्र है खासकर मास मीडिया है वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
3: और साथ में जो हमारा मौसम विभाग का जो सहयोग है, तो इसके सहयोग का हम इसकी सूचनाओं का जानकारी का उपयोग करते हुए मुझे लगता है कि हम स्थिति में बहुत अच्छी तरह उभर के आएंगे और अच्छा काम कर पाएंगे।
0: जी डॉक्टर श्रीवास्तव, एक और बड़ा बदलाव ये दिख रहा है कि अब कम दिनों में बहुत भारी बारिश जिसे एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स कहते हैं वो हो जाती है और शुष्क दिन यानी ड्राई स्पेल्स बढ़ रहे हैं। मौसम विज्ञान इस नए पैटर्न को कैसे देख रहा है?
2: तो इसमें हमें ये बात समझने की जरूरत है कि जैसे जैसे धरती का एटमॉस्फेयर का तापमान धीरे धीरे बढ़ता है तो इसके जो मॉइस्चर को होल्ड करने की यानी कि ये कितनी अपने अंदर पानी को हवा के अंदर ऐसा वेपर या नमी को अपने अंदर रख सकता है वो भी बढ़ जाता है। हर एक डिग्री राइज पर लेते ह्यूमिडिटी है तो रिटेन करने की कैपेसिटी करीब करीब 7% जो है बढ़ जाती है। यानी कि अभी जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो अवेलेबिलिटी है पानी की वाटर वेपर की वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और जब इस तरह के जो गर्म एनवायरनमेंट कंडीशन होती है ये लगातार कन्वेक्टिव एक्टिविटीज को जो कि सडनली गर्मी की वजह से एकदम से क्लाउड डेवलपमेंट को और एसोसिएटेड उसके साथ में बहुत ही इंटेंस बारिश को जो है काफी ज्यादा सहायक होता है। और क्योंकि ऑलरेडी इसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है एटमॉस्फेयर में तो इस तरह की जो घटनाएं हैं जहां पर बहुत सारी वर्षा एक बहुत ही सीमित समय में हो जाती है और उसके बाद में काफी कई दिनों तक फिर ड्राई स्पेल देखने को मिलता है, इस तरह की घटनाएं जो है वो देखने को मिल रही है। तो जैसे कि ये सब मौसम बदलाव हो रहे हैं इसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए ताकि जो भी ये वर्षा है, एक तो घटना इतनी वर्षा हो रही है, ये जो पानी जो हमें मिल रहा है इसका ये रन ऑफ के जरिए इसका थोड़ा वेस्टेज ना हो और इसको हम सदुपयोग कर सके तो इसका एकत्रित करने के लिए भी कुछ ना कुछ उपाय पहले से बनाए जाते
0: हैं। जी डॉक्टर डबास, आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक अच्छा मॉनसून ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्रय शक्ति यानी परचेजिंग पावर को कैसे बढ़ाता है और इसका असर ट्रैक्टर, FMCG और अन्य उद्योगों पर कैसे पड़ता है।
3: जैसे ही किसान की आमदनी बढ़ती है, किसान को अच्छी फसल मिलती है, किसान पहले से तत्पर होता है क्योंकि उसको और आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ना है, अपने सपने देखता है, तो सपनों में वो चाहता है कि उसके पास अच्छी मशीनरी होनी चाहिए, अच्छी तकनीकियां होनी चाहिए और आगे के मौसम को रक्षा करने के लिए उसके पास सभी संसाधन होने चाहिए, तो वो पैसा जो है बाजार में लगाता है, बाकी चीजें बाजार में नहीं लगती हैं। तो जब भी किसी का उत्पादन बढ़ता है, किसान को पैसे ज्यादा जाते हैं, तो आपके जितने भी ट्रैक्टर हैं या मशीनरी है या फार्म इक्विपमेंट है या सीड है या दूसरी चीजें हैं और इसके साथ साथ में हमारे जो उपभोक्ता को भी अच्छी किस्म का भोजन मिलता है और जब हमारी एक्सपोर्ट बढ़ती है तो देश का नाम होता है। क्योंकि आपने देखा होगा पिछले कोई कम से कम 20 साल से हमारी एक्सपोर्ट धान बासमती धान में हम आप पूरे वर्ल्ड में एक बहुत अच्छा काम कर पा रहे हैं और इससे और भी अच्छा करने की संभावना है। तो किसान हमारा सक्षम है, हमारी खेती में भी जान है और गवर्नमेंट भी चाहती है, गवर्नमेंट ने काफी अच्छी परिस्थितियां बनाई है जिससे कि किसान एक्सपोर्ट कर सके। जो हमारे भारतीय किसान संगठन बने हैं, किसान उत्पादक संगठन बने हैं, वो भी इस तरफ काफी आगे बढ़ रहे हैं और सरकार ने पहले से डिसाइड कर रखा है कि कौन से जिले से कौन सा प्रोडक्ट की ज्यादा प्रोडक्शन हो सकता है, उसमें क्या क्या प्रोसेसिंग हो सकती है, कैसे हम उसको जिले को सक्षम कर सकते हैं। तो सरकार की जो योजनाएं हैं, किसान की मेहनत है और जो भी किसान का उत्पादन बढ़ता है वो सारा का सारा बाजार में आता है। जब बाजार में आता है तो पूरे देश में रौनक आती है। तो एक किसी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे जो भी पैसा गवर्नमेंट अलॉट करती है तो उसका फायदा सबसे ज्यादा होता है। ये हमारे जितने भी अर्थशास्त्री कृषि अर्थशास्त्री हैं उन्हें काफी प्रेजेंट किया गया, अगर हम कृषि में 1 रुपया खर्च करते हैं तो हमारी आमदनी और बाकी क्षेत्रों से कहीं ज्यादा होती है। तो इसको देखते हुए मैं कहूंगा कि कृषि के क्षेत्र में सरकार को और अधिक ध्यान देने की जरूरत है और किसान को और अधिक सक्षम बनाने की जरूरत है। और साथ साथ में हमें ये देखना मंडी में भाव क्रैश ना करें। जब किसान कई बार मेहनत करता है, अच्छा उत्पादन लेता है तो जब भाव क्रैश कर जाता है तो किसान टूट जाता है। तो सरकार को जब भाव अधिक होते हैं तो उसको तो कम करने की कोशिश करती है, लेकिन सरकार को ये भी कोशिश करनी है कि किसान को उत्पादन लागत से अधिक पैसा मिले। और ये खाली हमारी वो नहीं मिनिमम सपोर्ट प्राइस वाली फसलें ही नहीं बल्कि जो सब्जियां हैं, फल हैं, फूल हैं, क्योंकि देश को हर चीज की जरूरत पड़ती है। तो हमें सरकार को उस तरफ भी थोड़ा सजग होने की जरूरत है।
0: डॉक्टर श्रीवास्तव, दुनिया भर की तकनीकों पर चर्चा होती है, जब कोई भी नए गैजेट्स मार्केट में आते हैं तो हम चर्चा करते हैं कि अमेरिका में ये चल रहा है, यूरोप में ये चल रहा है, दुनिया के दूसरे देशों में ये चल रहा है। मौसम पूर्वानुमान के क्षेत्र में आपसे समझना चाहेंगे कि दुनिया के अलग अलग देशों में किस तरह की तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है और भारत ने पिछले 1 दशक में पूर्वानुमान की तकनीकों में किस तरह का बदलाव किया है और उसके क्या प्रभाव दिख रहे हैं, बहुत संक्षेप में।
2: जी देखिए, पहले तो भारत मौसम में अगर हम पूरे वैश्विक स्तर बात करें सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट जो हो रहा है वो ऑब्जर्वेशन के क्षेत्र में हो रहा है। अभी जितने भी तरह तरह के मैकेनिज्म है जो मौसम को ऑब्जर्व करने के, उसमें काफी ज्यादा वृद्धि हो रही है। इसको साथ साथ में जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है एटमॉस्फेरिक प्रोसेस को लेकर के वातावरण में, एटमॉस्फेयर में जो भी एक्टिविटीज हो रही है उसमें काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से जो हमारे न्यूमेरिकल मॉडल्स हैं जिनको हम हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स पर रन करते हैं और हमें गाइडेंस मिलता है जिसके बेसिस पर हम लोग फोरकास्ट इशू करते हैं, तो इसमें भी काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट जो है वो देखने को मिल रहा है। जहां तक बात है भारत मौसम विज्ञान विभाग की, तो पिछले 10 वर्षों में आप देखेंगे कि जो हमारा ऑब्जर्विंग नेटवर्क है, ऑब्जर्वेशन नेटवर्क है, बहुत ज्यादा उसमें बढ़ोतरी देखी गई है। जो हमारे सैटेलाइट सिस्टम्स है उसमें बढ़ोतरी हुई है, बहुत उन्नत हुए हैं। साथ साथ में रडार है उसका कवरेज भी काफी बढ़ गया है। उसकी वजह से जो ये अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे जो काफी इंटेंस रेनफॉल एक्टिविटी को, उसको भी ट्रैक करने में काफी ज्यादा रियल टाइम में मदद मिलती है। इसके साथ साथ जो मॉडल्स हैं, जो न्यूमेरिकल मॉडल्स हम लोग यहाँ रन कर रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग में भी, और साथ साथ में जो अन्य संस्थान है भारत सरकार के, वहां पर भी वो जो मॉडल्स रन किए जा रहे हैं उसमें काफी ज्यादा रिजोल्यूशन में परिवर्तन हुए, इम्प्रूवमेंट हुआ है, और काफी हाई रिजोल्यूशन मॉडल जो फ्रेमवर्क है वो डेवलप किए गए हैं और उनके बेसिस पर जो गाइडेंस मिल रही है उसको उपयोग करके पूर्ण दिया जा रहा है।
0: जी।
2: इसके साथ साथ में AI का भी काफी ज्यादा इस्तेमाल अब शुरू हो गया है, और AI ML को यूज करके, यानी कि जो कृत्रिम जो इंटेलिजेंस है इसका भी काफी भरपूर उपयोग किया जा रहा है ताकि पूर्वानुमान को और अधिक सटीक बनाया जाए।
0: जी हाँ, बिल्कुल। मॉनसून भारत के लिए केवल एक मौसम नहीं बल्कि जीवन, जीविका और विकास का आधार है। इसकी हर बूंद खेतों में अन्न, गाँव में अवसर और अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा लेकर आती है। आज की चर्चा से ये साफ है कि मॉनसून का पूर्वानुमान केवल बारिश का अनुमान नहीं बल्कि कृषि उत्पादन, ग्रामीण रोजगार, बाजार की मांग और देश की आर्थिक गति से जुड़ा एक महत्वपूर्ण संकेतक है। साथ ही बदलती जलवायु परिस्थितियों में वैज्ञानिक पूर्वानुमान, आधुनिक कृषि तकनीकों और जल संरक्षण के उपायों का महत्व पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। डॉक्टर श्रीवास्तव और डॉक्टर डबास, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
3: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे मॉनसून पूर्वानुमान कृषि क्षेत्र के लिए संभावनाओं और चुनौतियों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप News on AIR और YouTube चैनल News on AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
4: चर्चा का विषय है
5: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 MHz पर। रात्रि के 10 बजे हैं। अब प्रस्तुत है साहित्यिक पत्रिका कार्यक्रम स्वर्ण रेखा।

0: सुवर्ण रेखा। साहित्य में रुचि रखने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है साहित्यिक पत्रिका सुवर्ण रेखा में। मैं शिखा कौरी ले चलती हूँ आपको आज की साहित्यिक यात्रा पर। आज के मुख्य आकर्षण है विजय शर्मा की वार्ता, महादेवी वर्मा का रचना संसार, आभा विश्वकर्मा की कविताएं और जनंदन की कहानी मोहपाश। कहते हैं कि कविताएं और कहानियां समाज का आईना होती हैं, अर्थात कविताओं और कहानियों का सृजन समाज में घटित घटनाओं के आधार पर ही होता है। शायद ही कोई ऐसा हो जिसने कभी कविताओं या कहानियों का मजा न लिया हो। भले ही हम कविताओं और कहानियों के गूढ़ अर्थ को समझने में असक्षम हो, परंतु कहीं न कहीं ये रचनाएं हमें जीवन का मूल मंत्र सिखा जाती हैं। हिंदी साहित्य के कई कवि और लेखक हुए हैं, परंतु उनमें से कुछ ऐसे हैं जो अपनी अमिट छाप छोड़ गए हैं। हिंदी साहित्य जगत में ऐसा एक नाम है श्रीमती महादेवी वर्मा का। तो आइए आज विजय शर्मा से सुनते हैं उनकी वार्ता, महादेवी वर्मा का रचना संसार।
1: आधुनिक युग की मीरा के नाम से जानी जाने वाली महादेवी वर्मा का परिवार बड़ा विशाल है। उनके परिवार में मनुष्य, विशेष रूप से वंचित शोषित मनुष्य, पशु पक्षी और प्रकृति शामिल है। उन्होंने अपने साहित्य में अपने इस परिवार पर काफी कुछ लिखा है, मुख्य रूप से कविता और गीतों के लिए। वेदना की अपनी सघन अभिव्यक्ति के लिए वे जानी जाती हैं। लेकिन कविता तथा गीतों के अलावा उन्होंने कहानी, निबंध, रेखाचित्र, संस्मरण की रचना भी की है। मुख्य रूप से कवयित्री महादेवी वर्मा के 8 काव्य संकलन प्राप्त होते हैं, निहार, रश्मि, नीरजा, सांधी गीत, दीपशिखा, सप्तपर्णा, प्रथम आयाम, अग्निशिखा उनके काव्य संकलन के नाम है। इसमें से सप्तपर्णा अनुदित कविताओं का संकलन है। इसमें उन्होंने वैदिक, लौकिक, संस्कृत तथा बौद्ध साहित्य का अनुवाद किया है। इन काव्य संकलनों के अलावा कुछ और काव्य संग्रह प्रकाशित हैं, जो इन संग्रहों की कविताओं से ही तैयार हुए हैं। आत्मिक, निरंतरा, परिक्रमा, यामा, दीपशिखा, स्मारिका, हिमालय, आधुनिक कवि महादेवी, ऐसे ही काव्य संकलन है। उनके काव्य उनके अध्ययन मनन की अभिव्यक्ति मिलती है। वे भारतीय संस्कृति तथा भारतीय जीवन दर्शन की अध्येता थी। भगवान बुद्ध के जीवन ने उन्हें विशेष रूप से प्रभावित किया था। एक समय था जब वे बौद्ध भिक्षुणी बनना चाहती थी, इसी कारण उनके काव्य में करुणा और दुख की भरपूर छाया मिलती है। उनके गीतों का मुख्य स्वर वेदना है। उनके काव्य का प्रारंभ और अंत दोनों असीम दुख से होता है। महादेवी वर्मा छायावाद की एक प्रमुख कवयित्री हैं। छायावाद के कवियों में भी महादेवी की अपनी अलग और विशिष्ट पहचान है। रहस्यवाद के काव्य में भी इनका महत्वपूर्ण स्थान है। अपनी रहस्यवादी कविताओं में ये संत परंपरा को आगे बढ़ाती हैं। ये महादेवी ही हैं जिन्होंने गद्य में ही कविता के मर्म को उकेरा, और जैसा कहा जाता है, गद्यम कविना निकष, गद्य कवि की कसौटी होता है, उसे भी अपनी लेखनी से साधा है। महादेवी वर्मा ने ना तो उपन्यास लिखा और ना ही नाटक लिखे, फिर भी वे हिंदी साहित्य में अपने सुस्पष्ट गद्य के लिए जानी जाती हैं। काव्य के साथ साथ महादेवी वर्मा ने कई मार्मिक कहानियां भी लिखी हैं। गिल्ली उनकी एक बहुत ही संवेदनशील कहानी है। गिल्लू तथा अन्य कहानियां उनके कहानी संग्रह का नाम है। इंग्लिश में जिसे स्केचेस कहते हैं, हिंदी में उसे ही रेखाचित्र के नाम से जाना जाता है। इसमें रचनाकार किसी व्यक्ति का शब्दांकन ऐसे करता है मानो उस व्यक्ति का चित्र बना रहा हो। हिंदी में बहुत कम रचनाकारों ने रेखांकन शैली में कविताएं की हैं। महादेवी वर्मा ने हिंदी साहित्य को अपने रेखांकन से समृद्ध किया है। इन्होंने अपने अतीत के चलचित्र में बड़े और महान लोगों का शब्दांकन नहीं किया है। वनन, बेनाम, गरीब, हाशिए पर पड़े लोगों के चरित्र का रेखांकन किया है। अतीत के चलचित्र में स्त्रियों का रेखांकन उन्होंने उस समय किया जब हिंदी में स्त्री विमर्श का बोलबाला ना था। उन्होंने अभागी स्त्री के रूप में भाभी, बिंदा, सबिया, बिट्टो, बालिका माँ, अलोपा आदि कुछ स्त्रियों से पाठकों का परिचय करवाया है। ये स्त्रियां महादेवी वर्मा ने अपनी कल्पना से नहीं गढ़ी हैं, बल्कि उन्होंने इन्हें अपने जीवन से खोज निकाला है। ये स्त्रियां किसी न किसी भांति रचनाकार के जीवन से जुड़ी रही हैं, अतः लेखन प्रामाणिक व विश्वसनीय बन पड़ा है। इस रेखांकन विधा को हिंदी साहित्य में मजबूती से स्थापित करने वाली महादेवी वर्मा के रेखा चित्रों की एक प्रमुख विशेषता चरित्र चित्रण है। उनके यहाँ कथ्य इसी चरित्र चित्रण का एक हिस्सा मात्र होता है। साथ ही साथ वे अपने रेखा चित्रों में गंभीर लोक दर्शन का उद्घाटन भी करती चलती हैं। इसे हमारे जीवन के सांस्कृतिक प्रवाह का भी ज्ञान होता है। वे अपने अतीत के चलचित्र में दिखाती हैं कि पति परायणता का गुण किसी खास वर्ग या जाति की स्त्री की वपौती नहीं है। एक भंगन सबिया भी यह गुण रखती है। सबिया बहुत सहनशील स्त्री है। वे रामा की सेवा भावना को स्मरण करती हैं। अंधे अलोपी का सरल व्यक्तित्व उन्हें लिखने को प्रेरित करता है। वे इनमें कुम्हार बदलू और रधिया के सरल दाम्पत्य के जीवन को कीर्ती हैं। पहाड़ी लक्ष्मा के अपने प्रति अनुराग और प्रेम से वे अभिभूत हैं। इन चित्रण को पढ़कर पाठक को महादेवी वर्मा की मानवीय भावनाओं का ज्ञान होता है, उनकी लेखन

0: वरन यहाँ पुरुषों पर भी उन्होंने लेखनी चलाई है। सेवक रामा का सेवा भाव, घीसा की गुरुभक्ति, अंधे अलोपी का सहर सजल व्यक्तित्व, कुली जंग बहादुर की मेहनत, महादेवी वर्मा की नजरों से कुछ नहीं चूकता है। इन अकिंचन लोगों पर ही भी उन्होंने बड़ी आत्मीयता से लिखा है। मनुष्यों के साथ साथ महादेवी वर्मा ने पशु पक्षियों पर बहुत संवेदनशीलता और आत्मीयता के साथ लिखा है। गिल्लू, सोना और नीलकंठ इसी ऐसी ही रम्य रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा के परिवार में कई पीढ़ी से लड़की पैदा नहीं हुई थी। यदि पैदा होती भी थी तो उसे जिंदा नहीं रहने दिया जाता था, लेकिन इनका परिवार पढ़ा लिखा और शिक्षित तथा सुसंस्कृत परिवार था। महादेवी वर्मा के बाबा फारसी के विद्वान थे और पिताजी उर्दू एवं अंग्रेजी के ज्ञाता। इनकी माताजी हिंदी में शिक्षित महिला थी। महादेवी का जन्म 26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद नामक स्थान में हुआ था। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा था, वे पेशे से वकील थे। इनकी माँ का नाम हेमरानी देवी था। महादेवी वर्मा ने इंदौर, जबलपुर, इलाहाबाद में शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा प्राप्त करने के दौरान ही इनके काव्य संग्रह प्रकाशित हो गए थे। उसी समय इनमें संकलित कविताओं की भूरी भूरी प्रशंसा हुई। वैसे महादेवी बचपन से कविता रच रही थी और पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो रही थी। शिक्षा में, खासकर स्त्री शिक्षा में उन्हें विशेष लगाव था। उन्होंने अपने प्रयासों से इलाहाबाद में प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की। वे इस विद्यापीठ की प्रधानाचार्य तथा कुलपति के पद पर भी रहीं। शिक्षा और काव्य के अलावा महादेवी वर्मा ने संपादन का काम भी किया। इलाहाबाद से निकलने वाली महिलाओं की प्रमुख पत्रिका चांद का संपादन दायित्व कुछ दिन इन्होंने संभाला। इसी तरह कुछ दिन इन्होंने साहित्यकार नामक मासिक पत्र का भी संपादन किया। हिंदी प्रेम इन्हें अपनी माताजी से विरासत में मिला था। जीवन भर इन्होंने हिंदी की सेवा की। हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने प्रयाग में साहित्यकार संसद तथा नाट्य संस्था रंगवाणी की स्थापना की। वैसे तो इनका स्वभाव एकाकी था, मगर अपने समकालीन रचनाकारों से इनका बड़ा आत्मीय संबंध था। ये साहित्यकार भी इनका बहुत सम्मान करते थे। इनकी एक सहेली स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाली कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान थी। इनसे महादेवी का आजीवन बहनापा बना रहा। दोनों अंतरंग सहेलियां थीं, एक दूसरे से अपना सुख दुख साझा करती थीं। महादेवी एक बहुत सरल और निश्चल प्रतिस्पर्धा की बात बताती हैं। एक बार दोनों ने गोबर से आंगन लीपने की प्रतियोगिता की थी। ऐसी सरल थी ये दोनों, जीवन में छोटी छोटी खुशियों में मगर रहने वाली। इसी तरह छायावाद के प्रमुख स्तंभ महाप्राण महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से उनका बहुत निकट का संबंध था। वे महाप्राण निराला को राखी बांधा करती थीं। प्रकृति प्रेमी कवि सुमित्रानंदन से उनकी निकटता थी। शहर के साहित्यकार उनके यहाँ बराबर आते जाते थे। बाहर से आने वाले समकालीन साहित्यकार भी उनके यहाँ मिलने अवश्य आते थे। महादेवी का हृदय बहुत कोमल था। वे दुखियों का दुख दूर करने की भरसक चेष्टा करती। अक्सर पास के ग्रामीण इलाकों में जाती और निःशुल्क दवाई वितरित करती। जनता के प्रति यही प्रेम और लगाव उन्हें इन लोगों पर लिखने की प्रेरणा भी देता था। साहित्य सृजन के लिए उन्हें अनेक पुरस्कार व सम्मान प्राप्त हुए। विक्रमशिला विश्वविद्यालय ने उन्हें डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया। उन्हें पद्म भूषण सम्मान, शेखसरिया सम्मान, द्विवेदी पदक, मंगला प्रसाद पुरस्कार, भारत भारती जैसे पुरस्कारों के साथ ही साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। वे उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य भी मनोनीत की गयी। महादेवी जैसे अनूठी रचनाकार सदियों में कभी कदा पैदा होती हैं और साहित्य को समृद्ध करती हैं। 11 सितंबर 1987 को इलाहाबाद में महादेवी वर्मा का निधन हुआ।
1: महादेवी वर्मा का रचना संसार। अभी आप सुन रहे थे विजय शर्मा की वार्ता और अब आइए सुनते हैं आभा विश्वकर्मा से उनकी कविताएं।
2: मेरी पहली कविता है अभी पलाश का मौसम है। अभी पलाश का मौसम है, शहर के भीड़ और भागम भाग से दूर सड़क के दोनों ओर लंबी कतार में तनकर खड़े हैं पलाश के पेड़, और जहां तक नजरें जाती हैं जंगल के आग ही दिखाई देते हैं। सावन के आने की आहट, टेसू के मुलायम पुष्प, खुशनुमा और प्रफुल्लित वातावरण, उल्लास और खुशहाली की ओर इंगित करते हैं।

0: सावन के आने की आहट, टेसू के मुलायम पुष्प, खुशनुमा और प्रफुल्लित वातावरण उल्लास और खुशहाली की ओर इंगित करते हैं। मेरे किंगसुक के कुछ मंजरी को तोड़ने पर वृक्षों को कोई आपत्ति नहीं है, इसलिए ढाक के कुछ फूलों को उनके शाखों से दूर कर दिया है और तुम्हारे जल में भिगो दिया है स्वर्ण रेखा। इनके कोमल पंखुरियों को तुम्हारे पानी में उंगलियों से स्पर्श करना मुझे ऊर्जा और प्रेरणा से भर देता है और मैं पलाश की तरह कुछ कुछ लाल और पीला बन जाती हूँ। अभी पलाश का मौसम है। मेरी दूसरी कविता है कटाक्ष की तरह। कटाक्ष की तरह तुम्हारे जल के छींटे मेरे चेहरे पर पड़े हैं स्वर्ण रेखा। दोहरे अर्थ वाले शब्दों को हलक से उतारना नागवार हो गया है। मैंने तो अलग थलग कर ली है खुद को रिश्ते नातों से, सगे संबंधियों से, आसपास के लोगों से, मेरे अकेलेपन से, एकाकीपन से, अलगाव से। क्यों परेशान और हैरान रहती है दुनिया, मेरे समझ से परे है और नामुमकिन भी। खुदगर्ज होना, इसलिए अकेले जीना ही रास आता है। मेरे अकेलेपन से, एकाकीपन से, अलगाव से क्यों परेशान और हैरान रहती है दुनिया, मेरे समझ से परे है और नामुमकिन भी। खुदगर्ज होना, इसलिए अकेले जीना ही रास आता है। आज तुम्हारे पानी में ठंडक और राहत नहीं है। तानों से भीगा है तुम्हारा जल और मेरे क्रंदन से भारी हो गई है तुम्हारी गर्भ। पीड़ा और कष्ट से मेरे पांव में छाले पड़ गए हैं। शायद तुम बहुत व्यस्त हो आज, इसलिए उदास और बोझिल मन से वापस चल पड़ी हूँ घर की ओर स्वर्ण रेखा। मेरी अगली कविता है मैं तुम में शिव और शक्ति। मैं तुम में शिव और शक्ति दोनों रूपों को देखती हूँ स्वर्ण रेखा। तुम्हारी जल की धारा शिव की जटा से निर्मित होकर अनंत सागर में समाहित हो जाती है, जो सर्वव्यापी और सार्वभौम है। उसकी शांत शीतल नील वर्ण तुम्हारे जल को गौरवान्वित करते हैं। अचिंत्य, अनिकात्मा, अनघा, अष्टमूर्ति जो कल्पना और परिकल्पना से परे हैं, तुम्हारे धवल उज्जवल नीर की मर्यादा हैं। मैं उस शिव को देखती हूँ, निहारती हूँ तुम्हारे बहते पानी में स्वर्ण रेखा। अचिंत्य, अनिकात्मा, अनघा, अष्टमूर्ति जो कल्पना और परिकल्पना से परे हैं, तुम्हारे धवल उज्जवल नीर की मर्यादा हैं। मैं उस शिव को देखती हूँ, निहारती हूँ तुम्हारे बहते पानी में स्वर्ण रेखा। वीरूपाक्ष के मस्तक का हंसुली जैसा चांद जब तुम्हारे पानी में प्रतिबिंबित होता है, वह क्षण मेरे लिए शिवरात्रि का होता है। इसलिए मैं बार बार तुम्हारे जल को नतमस्तक करती हूँ, अंजुरी में भरती हूँ, ताकि उस मृत्युंजय और महेश्वर की कृपा और आशीर्वाद का पात्र बन सकूं। मेरे लिए तो तुम्हारे जल का स्पर्श मात्र ही शिवरात्रि है स्वर्ण रेखा।
1: अभी आप आभा विश्वकर्मा से उनकी कविताएं सुन रहे थे और अब आइए सुनते हैं जयनंदन की कहानी मोहपाश।
2: लड़की का नाम किदकी था और उसके पालनहार पिता रामजस ठाकुर हाई स्कूल से रिटायर्ड हेडमास्टर थे। ठाकुर जी के दो बेटे थे, अमित और सुमित, दोनों इंजीनियर। अमित अमेरिका में और सुमित कनाडा में। दोनों ने परिवार के साथ उन्हीं देशों की नागरिकता ले ली। गांव के हवेली नुमा घर में वयोवृद्ध ठाकुर दंपति अकेले रह गए। चाहते थे कि कोई चूल्हा चौका और झाड़ू बुहारू कर देने वाली ऐसी मिल जाए जिसे वे स्थायी तौर पर घर की सदस्य जैसा बना लें। कई लड़कियों को उन्होंने आजमाया लेकिन कोई टिक नहीं सकी। साल दो साल में महीने डेढ़ महीने के लिए गांव में डेरा जमा देने वाले घुमंतु एक गुलगुलिया से उन्होंने उसकी बेटी मांग ली। उसे कुल 7 बेटियां थी। फटेहाल जीवन था, अतः एक बेटी सुपुर्द कर देने में उसने तनिक संकोच नहीं किया। उन्होंने उसे विश्वास दिला दिया कि हम तुम्हारी लड़की को अपनी बेटी की तरह रखेंगे, उसे पढ़ाएंगे जहां तक पढ़ेगी, सयानी हो जाने पर उसकी शादी का जिम्मा भी उठाएंगे। तितकी उनके घर आ गई। वयोवृद्ध ठाकुर दंपति के एक रस और बेरंग दिनचर्या में एक उत्साहवर्धक संगीत समा गया। उसे प्यार देने में दोनों पति पत्नी निछावर हो गए। लड़की भी उनकी एक एक इच्छा पर बलि बलि जाने लगी। उन्होंने कपड़ों, आभूषणों और श्रृंगार प्रसादों से उसका हुलिया किसी राजकुमारी जैसा बना दिया। अपरूप सुंदर तो वह थी। वह स्कूल भेजे जाने लगी और खूब मन लगाकर पढ़ने लगी। बदले हुए परिवेश में मानो उसका पुनर्जन्म हो गया था। इसी तरह समय महीने और वर्ष में ढलते चले गए। तितकी ने बीए पास कर लिया और उम्र के 13वें पायदान पर पहुंच गई। ठाकुर जी 79वें में प्रवेश कर गए। गहराती उम्र की वजह से दोनों पति पत्नी दुर्बल और अशक्त होते चले गए थे और अक्सर बीमार रहने लगे थे। उनकी स्थिति नाजुक और डगमग होते देख अमेरिका से सुमित आ गया। तय कर लिया कि अपने साथ इन्हें अब अमेरिका ही ले जाना ठीक रहेगा, क्या पता कब आंखें मूंद लें। वीजा बनवाने की प्रक्रिया उसने शुरू कर दी। ठाकुर जी ने पूछ लिया, वीजा तितकी के लिए भी बनवा रहे हो ना? चौंकते हुए अमित ने कहा, तितकी अमेरिका जाकर क्या करेगी? तो क्या यहाँ वह अकेली रहेगी? आप तो ऐसा कह रहे हैं जैसे वह आपकी सगी बेटी हो। यहाँ घर में रहेगी, जमीन जायदाद देखेगी, मन नहीं लगेगा तो उसका पूरा परिवार घूमते हुए कभी तो यहाँ आएगा ही, उसके साथ हो लेगी। ये कैसी बात कही कर रहे हो अमित? बेशक उसे मैंने बेटी ही बना लिया है, उसकी दुनिया बसाने का पूरा दायित्व मेरा है, तो बीच मझधार में ऐसे कैसे छोड़ देंगे? ठीक है, हम कहाँ कह रहे हैं कि उसे निकाल दीजिए, यहाँ ठाट से मालकिन बनकर रहेगी घर में। अमेरिका जाने के लिए ऐसा नहीं है कि टिकट कटवाया और ट्रेन में बैठा दिया। वीजा, पासपोर्ट, एयर टिकट आदि की बहुत सारे झमेले हैं, बहुत सारे खर्च हैं। ठाकुर जी ने कहा, लेकिन कोई अस्थायी हल तो निकालना ही होगा। जवान जहान हो गई है, इसकी शादी कराने की उम्र हो गई है, इसने जी जान से हमारी जितनी सेवा की है उसका भुगतान क्या यही है कि उसे छोड़कर हम चले जाएं? जिस उम्र में हम जा रहे हैं उसमें वापसी की भी भला क्या कोई गारंटी है? 8-10 महीने में आकर उसके लिए कोई अच्छा लड़का ढूंढकर शादी करा दूंगा, या फिर उसे अपने साथ अमेरिका लेता जाऊंगा, या मेरा पक्का वादा है बाबूजी, आप यकीन कीजिए। ठाकुर जी अपनी मर्जी पर लगाम लगाकर रह गए। जवान बेटे से कितनी बहस करते। तितकी को समझा बुझाकर और पक्का भरोसा देकर वे जाने लगे तो उसकी आंखें हरहरा कर बरस पड़ी। चेहरे पर कई सवाल उभर आए। किसी नतीजे पर पहुंचाने के लिए आपने मुझे अपने घर लाया था? एक जवान लड़की कैसे रहेगी बिना किसी की निगहवानी के, बिना किसी के सुरक्षा संरक्षण के? वह तो खुश थी अपने कुनबे के साथ। एक खानाबदोश गुलगुलिया की बेटी समझ उसकी तरफ गांव के लड़के कसाई की तरह यूं देखते हैं जैसे उसके हुस्न को रौंदने के लिए अपने जालिब मंसूबे पर सान चढ़ा रहे हों। अब वह घूमते रहने वाले अपने बाप को कहां ढूंढे? इस घर में आने के बाद तो बाप के कुनबे ने यहां आना भी छोड़ दिया है। तितकी को रोते हुए देखकर ठाकुर जी भी खुद को रोक नहीं सके। खुद के आंसू बहाते हुए उसके आंसू पोंछने लगे। तितकी समझ गई कि बाबूजी की लाचारी में यह कदम उठाना पड़ रहा है। उनके गए कुछ ही महीने गुजरे थे कि ठाकुर जी के गोतियारे के ही पहले से ही जीव लपलपा रहे 3 कलमुहे लौंडों ने मिलकर उसका सामूहिक बलात्कार कर दिया और उसे खत्म कर देने के मकसद से रेल की पटरी पर बांध देने का उपक्रम करने लगा ताकि रेल से वह कट जाए और दुष्कर्म का राज खत्म हो जाए। उसके मिट जाने से खेतों की पैदावार पर कब्जा जमा लेना भी एक मकसद था उनका। रात की निस्तब्धता में ट्रेन से उतरकर एक जवान लड़का रेल पटरी से सटे रास्ते से चलकर अपना घर जा रहा था कि एक लड़की की चीख सुनाई पड़ी। उस लड़के ने आवाज की टोह लेते हुए उसे बचाने के लिए दौड़ लगा दी। उसने पाया कि लड़की को 3 मुस्टंडे मिलकर रेल की पटरी पर बांध रहे हैं और कुछ मिनटों में ही उस पटरी से ट्रेन गुजरने वाली है। वह भिड़ गया उन तीनों से। लड़की उनके चंगुल से छूटकर निकल भागी तो तीनों बदमाश उसके ऊपर पिल पड़े। तीन दिन शहदों

0: के आगे अकेले वह लड़का जिसका नाम प्रमोद था कब तक टिकता। मार खाते खाते वह धराशायी हो गया। जब वह पूरी तरह निश्चिष्ट व पस्त हो गया तो बदमाशों ने पासी में पड़ा 30-40 किलो का एक पत्थर उठाकर उसकी पीठ पर पटक दिया। अंतहीन वेदना से प्रमोद चित्कार कर उठा। लगा जैसे शरीर दो हिस्सों में विभक्त हो गया हो। अब उसमें खड़े होने की भी ताकत नहीं थी। सुबह तक वह रेल की पटरी के किनारे बेजान सा पसरा रहा। बगल से ट्रेनें गुजरती रहीं। सुबह गांव वालों को लेकर लड़की आई तो उसे टांग कर घर लाया गया। उसकी कमर के नीचे का भाग सुन्न हो गया। रीढ़ की हड्डी और रक्त संचार की धमनियां निष्क्रिय हो गईं। वह चलने फिरने से लाचार होकर बिस्तर पर ढह गया। उसकी दुनिया एक चारपाई पर महदूद हो गई। उसके दोनों पैर सूखते चले गए और किसी बेजान लकड़ी जैसे हो गए। मलमूत्र त्याग की कोई अनुभूति नहीं। कई बड़े अस्पतालों के बड़े डॉक्टरों से इलाज कराया गया लेकिन कोई फायदा नहीं। वह अस्थायी रूप से अपंग घोषित हो गया। लड़की ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। तीनों दुष्कर्मी उसके पड़ोस घर के गोतियारे से ही थे। वे गिरफ्तार कर लिए गए। प्रमोद की अधमरी हालत देखकर उसे खुद का बचा रहना एक गुनाह जैसा लगने लगा। प्रमोद पड़ोस के ही गांव से था। तितकी वहां जाकर उसके गले से लिपटकर बिलख पड़ उठी। क्यों बचाया मुझे अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर? मर जाने देते मुझे। मेरे मर जाने से कुछ भी तो फर्क नहीं पड़ने वाला था, लेकिन तुम्हारे इस हालत में आ जाने से तुम पर आश्रित तुम्हारा पूरा परिवार कैसे जिएगा? प्रमोद ने कहा, जो होना था हो गया तितकी, अब तुम अपना ख्याल रखो। आदमी के जीने का कुछ तो मकसद होता है, शायद मेरा यही मकसद था। तितकी ने उसकी हथेलियों को अपने सीने से लगा लिया और कहा, तुम्हारे साथ ही अब जीना मरना है। तुम्हें मैं बेसहारा नहीं होने दूंगी। मैं अपना सुख जितना दे सकती हूँ दे दूंगी और तुम्हारा दुख जितना ले सकती हूँ ले लूंगी। प्रमोद क्या कहता, जब तक सांस चल रही थी जरूरत तो थी ही उसे एक सहारे की। तितकी ने उसकी हर जरूरत के लिए खुद को समर्पित कर दिया। वह कभी उसके सीने से लिपट जाती, उसके गालों पर अपना कपोल रख देती। वह कहता, जब तुम इतना प्यार करती हो तो मेरे अधूरेपन की प्रतीति मानो कहीं गुम हो जाती है। एक दिन अचानक अमेरिका से अमित ठाकुर आ गया। तितकी के साथ घटित जघन्य दुष्कर्म और उसे खत्म कर देने के निर्मम अत्याचार की खबर किसी शुभचिंतक ने चिट्ठी लिखकर ठाकुर जी तक पहुंचा दी थी। पढ़ते ही वे अतिशय बेचैन और व्याकुल हो गए। उसे अपने साथ ले न ला पाने पर अपना सिर पीटने लगे और अमित को कोसने लगे। इस बात पर अड़ गए कि मुझे अभी और इसी वक्त जहाज में बैठा दो। उन्हें बहुत निहोरा और मान मनोवल करके रोका गया और अमित को इंडिया आना पड़ा। प्रमोद से मिलकर अमित ने उसकी हालत पर दुख जताया और तितकी से कहने लगा, मैं खास तुम्हारे लिए इंडिया आया हूँ। बाऊजी ने एकदम सत्याग्रह कर दिया है कि तितकी को मेरे पास लाओ या नहीं तो मुझे उसके पास पहुँचा दो। चलने फिरने से वे एकदम लाचार हो गए हैं और उनका यहाँ आना अब मुमकिन नहीं है। रात दिन तुम्हें याद करते हैं और कहते हैं कि तितकी को भारत में बेसहारा छोड़कर मैंने भारी गुनाह कर दिया है। मैं यहाँ आया हूँ कि तुम्हें अपने साथ अमेरिका लेते जाऊं ताकि वहीं बाऊजी के सामने किसी अच्छे लड़के से तुम्हारी शादी कराई जा सके। तितकी के चेहरे पर इनकार का रुक्ष भाव और एक कटाक्ष की मुस्कान उभर आई। मुझे छोड़कर बाऊजी गुनाह महसूस करते हैं, वैसे ही मैं अगर प्रमोद को छोड़ दूंगी तो मैं भी गुनहगार बन जाऊंगी। प्रमोद को छोड़ देने का मतलब है उसे मिटा देने का पाप करना। मैं ऐसा हरगिज हरगिज हरगिज नहीं करूंगी। अमित ने बहुत समझाया, अपने खर्चे पर उसकी देखभाल के लिए नौकर रख देने की बात कही। प्रमोद से कहा कि तुम ही से कहो तो यह मानेगी। अपने साथ रखकर इसकी जिंदगी क्यों खराब कर देते हो? इसके न जाने पर बाऊजी या तो पागल हो जाएंगे या मर जाएंगे। प्रमोद ने समझाने की कोशिश की कि मैं जी लूंगा किसी तरह, तुम चली जाओ, तुम्हारी जिंदगी सवर जाएगी, ठाकुर जी तुम्हारे बिना नहीं जिएंगे। तितकी जरा भी टस से मस न हुई। अमित ठाकुर को मन ही मन बहुत कोपत हुई कि नाहक बाऊजी की जज्बाती जिंदगी और जिद के कारण एक फालतू सिरफिरी लड़की का बकवास सुनना पड़ रहा है। तितकी ने जो कहा उसे जानकर अमित को ताज्जुब नहीं हुआ। अब उसने एक ब्रह्मास्त्र ढूंढ लिया। प्रमोद से कहने लगा, प्रमोद अगर वाकई तुम तितकी का भला चाहते हो, उसे प्यार करते हो, तो एक आखिरी निवेदन मैं तुमसे करना चाहता हूँ। जिस तरह किसी पर बोझ बनकर तुम जीवन जी रहे हो, क्या करोगे जिगर, न कोई हंसी न खुशी, न कुछ पाना न गवाना, न कोई लुत्फ न कोई आकांक्षा, न इच्छा न कामना, महज एक निरुद्देश और निरर्थक जीवन। प्रमोद भौचक होकर उसका मुंह देखता रह गया। उसने उसके हाथ में एक पुड़िया देते हुए आगे कहना जारी रखा, अगर तुम दिल से चाहते हो कि तितकी को एक नया भविष्य मिल जाए और मेरे बाबूजी की छाती से एक बोझ उतर जाए, तो आज रात इसे खा लेना प्लीज, मैं चलता हूँ। प्रमोद अवाक होकर पुड़िये को देखता रह गया। उसकी आंखें भर आई, उसने पुड़िये को तकिए के नीचे छुपा लिया। मन में सोचने लगा, अमित ने ठीक ही सुझाया कि तितकी को अपने मोह पास से मुक्त करने के लिए इस नश्वर दुनिया को छोड़ देना ही एकमात्र रास्ता है। ठाकुर साहब इसके भविष्य को लेकर इतना बेचैन है, भला आज के खुदगर्ज जमाने में कौन एक पराई लड़की के लिए इस शिद्दत से चिंता में हलकान होता है। उसके गुजर जाने से उनकी इच्छा पूरी हो जाएगी और बेहद प्यारी न्यारी ममतामयी और किसी विश्व सुंदरी की तरह हसीन तितकी को एक नया स्वप्न लोक मिल जाएगा। उसके घिसटते जीवन के साथ रहकर वह नाहक घिसटती रहेगी। रात को सोने के पहले शौच और सूसू जाने के कारण चादर बदलने के दरमियान पुड़िया पर तितकी की नजर पड़ गई। पुड़िया पर साफ लिखा था, चूहा मारने की दवा। तितकी का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। तो वह इस नीचता पर उतर गया कि तुम्हें मरने के लिए जहर की पुड़िया थमा दी और तुमने उसकी बात मान भी ली। कल उसकी दुर्गति करके मैं रख दूंगी। नहीं नहीं दीदी, उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। उसने सोचा कि मेरा जीना तो एक तरह से मरने जैसा ही है। बहुत गलत सोचा उसने। किसी का अपंग या विकलांग हो जाना जीवन का निरुद्देश और निरर्थक हो जाना नहीं है प्रमोद। जो ऐसा सोचते हैं वो आदमी नहीं हैवान है। हम जानवर नहीं है कि झुंड में से कोई एक जमीन पर धराशायी हो गया तो उसे अपने हाल पर छोड़कर आगे बढ़ जाएं। अगर ऐसा ही होता तो तुम्हें क्या जरूरत थी मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डाल देने की। मुझे मेरे हाल पर छोड़कर तुम अपने रास्ते चले जाते। तिथि, सच पूछो तो मेरी भी हार्दिक इच्छा है कि तुम अमेरिका चले जाओ और इस नरक से निकलकर सुखमय जीवन जी सको। तितकी उसके गले लगकर जार जार रोने लगी। हिचकियों के मध्य उसने कहा, मेरे जीवन को बचाने के लिए तुम एक बार तो खुद को बर्बाद कर चुके, दोबारा मुझे नया जीवन देने के नाम पर एक बार फिर अपने बचे खुचे को भी खत्म कर लेना चाहते हो। इतना प्यार मुझे मत करो प्रमोद, मैं तुम्हारे त्याग का इतना बड़ा बोझ लेकर कैसे खुश रह सकती हूँ। मैं सच कहती हूँ प्रमोद, तुमने अगर ऐसा कोई कदम उठाया तो मैं भी उसी नक्शे कदम पर चल पड़ूंगी। तुम्हारे बिना मुझे नहीं जीना। प्रमोद एक अलौकिक सम्मोहन से उसे अपलक देखता रह गया। कहना चाहता था कि भला उसके बिना अब वह भी जीने की कहां चाह रखता है।
1: मोहपाश। अभी आप सुन रहे थे जयनंदन की कहानी और ये था आज की साहित्यिक यात्रा का अंतिम पड़ाव। इस अंक के संपादक एवं प्रस्तुतकर्ता थे राजेश कुमार राय। अब मुझे यानी शिखा खोरी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

साहित्यिक पत्रिका स्वर्ण रेखा अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 10:31 हुए हैं। प्रस्तुत कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। आइए श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में सुनते हैं उस्ताद अल्लाह रखा और उस्ताद जाकिर हुसैन का तबला लहरा 3 ताल में।

तीन ताल पेशकार पंजाब में कैसे खुलता है, उस तरीके से शुरुआत करेंगे इसकी। बोल कैसे खुलते हैं? दा दा ती दा कन्या दा कथिन गिन्ना दा कन्या दा कथिन दाती दा कन्या दा कथिन गिन्ना दा दा तिन्ना दा दा तिन्ना दा दा तिन्ना किन्ना दाती दा कन्या दा कथिन दा कन्या दा कथिन दाती दा कन्या दा कथिन गिन्ना दा दा तिन्ना दा दा तिन्ना दा दा तिन्ना।

0: अब हम तीन ताल में खंड जाति तकसीम करेंगे कि जो हर मात्रा में पांच मात्रा आएगा, एक मात्रा में ए दो तीन चार, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच।
1: दिस प्रोसेस ऑफ प्लेइंग फाइव नोट्स इन वन बीट और थ्री इन वन बीट और सेवन इन वन बीट एंड बेसिंग इट इन एनी रिदम साइकिल, इन आवर केस टुडे इट विल बी तीन ताल, दिस प्रोसेस इज नोन एज प्लेइंग ऑफ छंद। So you will hear the Khand Jati Chhand based in Teen Taal of 16 beats.

0: There are many fixed traditional compositions that have been handed down from teacher to student and then from his student to his student over the past many hundred years of tabla tradition. And these fixed compositions have special names like Gat, Paran, Toda, Tihai, Chakkardar, Bedam Chakkardar. And there are many types of Gats and Parans that are first recited or sung to give their beauty and then they are played on the tabla.
1: Gat chota palla ka bhi hota hai, jo sam to sam bhi gat hoti hai. Aur tihaiya bhi hota hai sam to sam. Phir chakkardar bhi tihaiya bhi sam to sam hota hai. अब मैं चौपली आपके सामने पेश करता हूँ। दान का तक दिन तक तक धंधा दिन तक तक धित धित धित का तक दिगिन था ता दान का तक दिगिन धात धात धा का तक दिगिन धात धात धा दान कतक धिन तक तक धन धिन तक तक धित धित धित कतक दिगिन धात धात धा कतक दिगिन धात धात धा कतक दिगिन धात धात धा दान कतक धिन तक तक धन धन तक धिन तक तक धित धित धित कनक दि धात धात धान कतक दिगिन धात धात धा कतक दिगिन धात धात धा वा दान कतक धिन तक तक धन धन तक धित धित धित धात धात धा कतक धात धात धा

0: tak tak tak dhane hina na tak tak tak dhane hina na dhane hina hane tak tak tak dhane hina hane tak gata gata gita tadhi dadra kata kata dhane dadra kata kata dadra kata kata dha kata dha gita tadha dadra kata kata dhane dadra kata kata dha dha kata dha gita tadhi na dhe dadra kata kata dha kata dha tak tak tak dhane hina na tak tak tak dhane hina dhane hina tak tak tak dhane hina hane tak gata gata gita tadha
1: धा गेत तथा न धड़ धड़ धड़ धड़ धड़ धड़ धड़ धड़ धड़ धड़ धड़ धड़ धड़ धड़ धड़ धड़ धड़ धड़ धड़ धड़ धड़ धड़ धड़ धड़ धड़ धड़ धड़ धड़ धड़ धड़ धड़ धड़ धड़ धड़ धड़ धड़ धड़ धड़ धड़ धड़ धड़ धड़ धड़ धड़ धड़ धड़ धड़ धड़ धड़ धड़ धड़ धड़ धड़ धड़ धड़ धड़ धड़ धड़ धड़ धड़ धड़ धड़ धड़ धड़ धड़ धड़ धड़ धड़ धड़ धड़ धड़ धड़ धड़ धड़ धड़ धड़ धड़ धड़ धड़ धड़ धड़ धड़ धड़ धड़ धड़ धड़ धड़ धड़ धड़ धड़ धड़ धड़ ध

Dagger,

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक और बस को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2,00,000 ट्रक और 16,000 बस BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
1: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है। और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
0: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा का समय लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। आग पर काबू पा लिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
2: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिया में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धरमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉक्टर जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री डीके शिवकुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत में आवागमन वाहन पारितंत्र अब किसी एक तकनीक पर निर्भर नहीं रहेगा। नई दिल्ली में हीरो मोटोकॉर्प की पहली फ्लेक्स फ्यूल मोटरसाइकिल बाजार में उतारे जाने के अवसर पर उन्होंने कहा कि भविष्य का वाहन पारितंत्र इलेक्ट्रिक वाहनों, जैव ईंधन, हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा को भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप एकीकृत करेगा। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स्ड डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष ने चीन के वेंग होंगयांग को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।